0: आज की ताजा।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में एक और बड़ी सफलता हासिल की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज सुबह श्रीहरिकोटा से जीएसएलवी F-17 रॉकेट के माध्यम से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-5 का सफल प्रक्षेपण किया। प्रक्षेपण के लगभग 18 मिनट बाद भारत के पहले इमेजिंग उपग्रह को जियोसिंक्रोनस कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया। EOS-5 से वास्तविक समय में तस्वीरें मिलेंगी, इससे कृषि और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में मदद मिलेगी। इसरो के अध्यक्ष वी नारायण ने कहा कि ये मिशन भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को और मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाख द वेवर से कल नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों देशों ने मजबूत रणनीतिक भागीदारी का आह्वान किया। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विश्व इस समय अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है और विश्व के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थितियां बनी हुई हैं। बावजूद इसके भारतीय अर्थव्यवस्था ने अपनी गति बनाए रखी है। उन्होंने कहा कि पिछली तिमाही में भारत की वृद्धि दर 7.8% रही।
2: दुनिया के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। फूड, फ्यूल या सप्लाई चेन, हर क्षेत्र में अनिश्चितता का प्रभाव पड़ रहा है। इस चुनौतीपूर्ण माहौल में भी भारत की इकोनॉमी ने अपनी गति बनाए रखी है। पिछले क्वार्टर में हमने 7.8% की ग्रोथ दर्ज की है। आज भारत की ग्रोथ स्टोरी दुनिया के लिए विश्वास और नए अवसरों का स्रोत बन रही है।
1: भारत और बेल्जियम के बीच कल कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। गृह मंत्रालय नेपाल में आई बाढ़ के बाद लापता हुए भारत के व्यक्तियों की डीएनए प्रोफाइलिंग कराएगा। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत में रहने वाले संबंधी कुछ सुविधाओं पर अपने जैविक नमूने एकत्र करवाकर डीएनए प्रोफाइल तैयार करवा सकते हैं।

0: इस संबंध में हेल्पलाइन नंबर है 9779814616095। डीएनए प्रोफाइल नेपाली अधिकारियों द्वारा आवश्यक प्रारंभिक जानकारी के साथ अज्ञात शवों से प्राप्त डीएनए प्रोफाइल से तुलना के लिए dnacodis@nepalpolice.gov.np पर ईमेल द्वारा भेजी जा सकती है। भारत ने दो और विमानों से नेपाल के लिए राहत सामग्री की नई खेप भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल के लिए 21.5 टन राहत सामग्री लेकर 2C-130J विमान काठमांडू पहुंच गए हैं, जिसे नेपाल के विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार मंत्री महावीर पुन को सौंप दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश मंच की मेजबानी करेगा। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों और भागीदार देशों के मुख्य न्यायाधीश तथा वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत रूस, चीन, मिस्र, इंडोनेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, बेलारूस, कजाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान के न्यायिक प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों से द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि यूक्रेन संघर्ष का समाधान तेल, खनिज या एल्यूमिना खरीदने या ना खरीदने जैसे फैसलों से नहीं बल्कि बातचीत और कूटनीति के जरिए ही संभव है। कीव में यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिबिहा के साथ बैठक के बाद उन्होंने कहा कि भारत की प्राथमिकता 140 करोड़ लोगों के लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना है। उन्होंने ये भी कहा कि रूस से ऊर्जा खरीदने के फैसले पर भारत के प्रति जो यूक्रेन का दृष्टिकोण है उसका देश सम्मान करता है और उम्मीद करता है कि दूसरे देश भी भारत के इस रुख का सम्मान करेंगे। विदेश मंत्रालय के सचिव विक्रम मिश्री ने कल नई दिल्ली में क्वाड शेरपाओं की बैठक की मेजबानी की। मंत्रालय ने बताया कि चर्चा में क्वाड सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों को शामिल किया गया है, जिनमें समुद्री और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक समृद्धि, उभरती प्रौद्योगिकियां और मानवीय सहायता शामिल हैं। शेरपाओं ने हिंद प्रशांत क्षेत्र, व्यापक क्षेत्रीय और वैश्विक संदर्भ में हो रहे घटनाक्रमों पर भी विचार किया। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का पर्व जन्माष्टमी आज देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मंदिरों और घरों में सजावट की गई है। उत्तर प्रदेश में भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा वृंदावन में जन्माष्टमी के भव्य आयोजन की तैयारियां पूरी हो गई हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मथुरा में जन्माष्टमी समारोह में शामिल होंगे। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जन्माष्टमी पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि भगवद्गीता कर्तव्य, नैतिकता, न्याय, साहस और जीवन में संतुलन का मार्ग दिखाती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय नीना रखेल। Indian Space Research Organization ISRO has successfully launched its Earth Observation Satellite EOS-05 on board GSLV F-17 rocket from Sriharikota in Andhra Pradesh early this morning. After a 27-hour countdown, GSLV F-17 rocket with satellite EOS-05 lifted off at 2:55 a.m. from the second launch pad at Satish Dhawan Space Center. EOS-05 is a state-of-the-art Earth observation satellite and India's first imaging satellite from geosynchronous orbit, enabling advanced imaging across visible, infrared, multispectral and hyperspectral bands. The satellite will provide real-time imagery and help the nation in areas including agriculture and disaster management. ISRO said that the state-of-the-art satellite was successfully placed into sub-geosynchronous orbit about 18 minutes after it lifted off from the spaceport. ISRO Chairman V. Narayanan said the mission will further strengthen India's Earth observation capabilities and improve the delivery of Earth observation services. Government has constituted a 31-member Joint Committee of Parliament on Foreign Contribution Regulation Amendment Bill 2026. Lok Sabha MP Sanjay Jaiswal will head the joint panel to examine the FCRA Amendment Bill. Prominent names from Lok Sabha in the committee include Bhartruhari Mahtab, Tejaswi Surya, Nishikant Dubey, A. Raja and Supriya Sule. From Rajya Sabha, Harshvardhan Shringla, Sanjay Kumar Jha, Praful Patel and Menaka Guruswamy have been included in the committee. Both houses of parliament on 12th

हालात के कदमों में कलंदर नहीं गिरता, हालात के कदमों में कलंदर नहीं गिरता, टूटे भी जो तारा वो ज़मीं पर नहीं गिरता। गिरते हैं समंदर में बड़े शौक से दरिया, गिरते हैं समंदर में बड़े शौक से दरिया, लेकिन किसी दरिया में समंदर नहीं गिरता। जी श्रोतियों, प्रोग्राम सजरी सवेर लैके हाजिर हो चुकी हूँ मैं आप सब दी रेडियो दोस्त सुखदीप। मेरे वालों सारे ही श्रोतियों नूं प्यार भरी नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल ते वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। ते अज दे प्रोग्राम सजरी सवेर दे तहत तुहाडे नाल सांझा करांगे अज दा विचार, अज दे दिन दीआं कुछ घटनावां ते नाल ही होवेगा जी सिलसिला फिल्मी अफसाने और तराने, जो कि आधारित होवेगा अदाकारा ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਕਪੂਰ ਤੇ। ਵਾਚਕ ਹੋਣਗੇ ਸੀਮਾ ਮਹਿਰਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਅਖਬਾਰੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ।

0: दादू एक केड़ा पौधा है?
1: टेंजरीन बहुत मीठा होता है, तोड़ी ना। हाँ, फ्री फॉरेन ट्रिप लिंक ते क्लिक करो, हुणे कर दा।
0: दादू रुको, लिंक ते क्लिक ना करना।
1: क्यों?
0: ए एसएमएस स्कैम है, क्लिक करोगे तो तुम्हारे बैंक डिटेल्स होवेंगे चोरी।
1: ओ थैंक्स गप्पू, बचा लिया। हाँ, आले तेरी समझदारी दा फल।
2: आरबीआई कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
3: आकाशवाणी ਦੇ ਸੂਝਵਾਨ ਨੇ ਸਰੋਤਿਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਮਿਤੀ 4 ਸਤੰਬਰ 2026 ਦਿਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਜਿੱਤ ਦਾ ਭਰੋਸਾ।

प्रोग्राम फिल्मी अफसाने और तराने सुनने वाले तमाम श्रोतियां नूं सीमा मेहरा वल्लों प्यार भरी नमस्कार। श्रोतियो, अज दा प्रोग्राम लैके मैं हाजिर हो चुकी हां ते तुहाडे नाल अज दे इस प्रोग्राम दे विच असी गल करांगे भारतीय फिल्मां दी मशहूर अदाकारा करिश्मा कपूर दी। करिश्मा कपूर हिंदी सिनेमा दियां उन्हां अदाकारावां विचों इक ने जिन्हां ने 1990 दे दहाके विच अपनी खूबसूरती, अदाकारी, डांस अते कॉमेडी टाइमिंग नाल दर्शकां दे दिलां विच खास थां बनाई। फिल्मी परिवार नाल संबंधित होण दे बावजूद करिश्मा ने अपने करियर विच कई चुनौतियां दा सामना कीता अते अपनी मेहनत नाल इक वखरी पछाण बनाई। उन्हां ने रोमांटिक, कॉमेडी, परिवारक अते गंभीर हर तरह के किरदार निभा के अपनी अदाकारी दी रेंज साबित कीती।

0: नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का सफल प्रक्षेपण किया। विदेशी योगदान को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए सरकार ने विदेशी अंशदान संशोधन विधेयक 2026 की जांच के लिए 31 सदस्यों की संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया। सर्वोच्च न्यायालय आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीशों के मंच की मेजबानी करेगा। भारत ने नेपाल में बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों के लिए राहत सामग्री से भरे दो और विमान भेजे। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का पर्व जन्माष्टमी आज देशभर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। और क्रिकेट में भारतीय महिला टीम हांगकांग को 137 रन से हराकर T20 एशिया कप के सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में एक और बड़ी सफलता हासिल की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज तड़के श्रीहरिकोटा से GSLV-F17 रॉकेट के माध्यम से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का सफल प्रक्षेपण किया। इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा कि ये मिशन भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को और मजबूत करेगा।
1: I am very happy to announce that
2: मुझे यह घोषणा करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही

0: है कि जीएलएसवी F-17 वाहन ने उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 5 को सफलतापूर्वक और सटीक रूप से उसकी निर्धारित और आवश्यक कक्षा में स्थापित कर दिया है और हमने इस प्रक्षेपण वाहन का उपयोग करके सबसे भारी उपग्रह को स्थापित किया है। एक बार पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 5 के चालू हो जाने के बाद यह भू कक्षा से भारत का पहला समर्पित इमेजिंग उपग्रह बन जाएगा जो हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण रणनीतिक डेटा प्रदान करेगा।
1: इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक डेटा फॉर आवर कंट्री।
2: सरकार ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर संसद की 31 सदस्यीय संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया है। एक रिपोर्ट।
3: इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य किसी गैर सरकारी संगठन या संस्थान द्वारा विदेशी योगदान के उपयोग को अधिक पारदर्शी बनाना और संस्थाओं के पदाधिकारियों की जवाबदेही तय करना है। लोकसभा सांसद संजय जायसवाल संशोधन विधेयक की जांच के लिए गठित एक संयुक्त पैनल का नेतृत्व करेंगे। समिति में लोकसभा के प्रमुख नामों में भर्तहरि मेहताब, तेजस्वी सूर्या, निशिकांत दुबे, ए राजा और सुप्रिया सुले शामिल हैं। राज्यसभा से हर्षवर्धन श्रृंगला, संजय कुमार झा, प्रफुल्ल पटेल और मेनका गुरुस्वामी को इस समिति में शामिल किया गया है। संसद के दोनों सदनों ने 12 अगस्त को विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को आगे की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजने की मंजूरी दी थी। इस विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में और संशोधन करना है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
2: सर्वोच्च न्यायालय आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश मंच की मेजबानी करेगा। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों और भागीदार देशों के मुख्य न्यायाधीश तथा वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत रूस, चीन, मिस्र, इंडोनेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, बेलारूस, कजाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान के न्यायिक शिष्टमंडलों के प्रमुखों से द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। भारत ने दो और विमानों से नेपाल के लिए राहत सामग्री की नई खेप भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि नेपाल के लिए 21.5 टन राहत सामग्री लेकर दो C-130J विमान काठमांडू पहुंच गए हैं, जिसे नेपाल के विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार मंत्री महावीर पुन को सौंप दिया गया है। गृह मंत्रालय नेपाल में आई बाढ़ के बाद लापता हुए भारतीय व्यक्तियों की पहचान के लिए उनके निकटतम जैविक रिश्तेदारों की डीएनए जांच करवाने की सुविधा उपलब्ध कराएगा। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि रिश्तेदारों के जैविक नमूने कुछ निर्धारित केंद्रों पर लिए जा सकते हैं और प्रोफाइल तैयार की जा सकती है। फिर इस प्रोफाइल का मिलान नेपाल में मिले मृतकों के अवशेषों के डीएनए से कराया जाएगा। ये जांच नेपाल के अधिकारियों की तकनीकी आवश्यकताओं के अनुरूप की जाएगी। इस संबंध में हेल्पलाइन नंबर है 9779841616095। इस बीच नेपाल में विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,259 हो गई है। आपदा के एक सप्ताह से अधिक समय के बाद भी 5,000 से अधिक लोग लापता हैं। नेपाल पुलिस के अनुसार चितवन में सबसे अधिक 355 शव बरामद किए गए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
5: Update रहे, आगे रहे. Expert at AIR News Hindi और Instagram पर AIR News Alerts को follow करें.
6: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
7: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
6: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री

0: पीयूष गोयल ने मोटर वाहन उद्योग से स्थानीयकरण को बढ़ावा देने, निर्यात बढ़ाने और वैश्विक बाजारों की जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार रहने का आह्वान किया है। श्री गोयल ने कल नई दिल्ली में सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के वार्षिक सम्मेलन में कहा कि आने वाले वर्षों में ऑटोमोटिव क्षेत्र भारत की विकास गाथा का सबसे महत्वपूर्ण वाहक होगा। उन्होंने उद्योग से भारत की बढ़ती व्यापारिक साझेदारियों, बढ़ते घरेलू बाजार और विनिर्माण में वैश्विक बदलावों से उत्पन्न अवसरों का लाभ उठाने का आग्रह किया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि यूक्रेन संघर्ष का समाधान तेल, खनिज या एल्यूमिना खरीदने या न खरीदने जैसे फैसलों से नहीं बल्कि बातचीत और कूटनीति के जरिए ही संभव है। कीव में यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सीबिहा के साथ बैठक के बाद उन्होंने कहा कि भारत की प्राथमिकता 140 करोड़ लोगों के लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना है। उन्होंने ये भी कहा कि रूस से ऊर्जा खरीदने के फैसले पर भारत के प्रति जो यूक्रेन का दृष्टिकोण है उसका देश सम्मान करता है और उम्मीद करता है कि दूसरे देश भी भारत के इस रुख का सम्मान करेंगे। भारत ने बेल्जियम की राजधानी ब्रसल्स में रक्षा अताशे नियुक्त करने का फैसला किया है। विदेश मंत्रालय के अनुसार इससे दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग और रक्षा उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। बेल्जियम ने इस वर्ष की शुरुआत में नई दिल्ली में रक्षा अताशे नियुक्त किया था। विदेश मंत्रालय में पश्चिम मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाख द वेवर ने अगले 5 वर्षों में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। वर्तमान में दोनों देशों के बीच व्यापार करीब 13 अरब डॉलर का है। विदेश मंत्रालय के सचिव विक्रम मिश्री ने कल नई दिल्ली में क्वाड शेरपाओं की बैठक की मेजबानी की। मंत्रालय ने बताया कि चर्चा में क्वाड सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों को शामिल किया गया है जिनमें समुद्री और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक समृद्धि, उभरती प्रौद्योगिकी और मानवीय सहायता शामिल हैं। शेरपाओं ने हिंद प्रशांत क्षेत्र, व्यापक क्षेत्रीय और वैश्विक संदर्भ में हो रहे घटनाक्रमों पर भी विचार विमर्श किया। अमरीकी रक्षा क्षेत्र की दिग्गज कंपनी जीई एरोस्पेस ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को F404IN20 इंजनों की एक नई खेप भेजी है जिससे देश के घरेलू तेजस MK-1A लड़ाकू विमान कार्यक्रम को महत्वपूर्ण बढ़ावा मिला है। F404 इंजन HAL और GE एरोस्पेस के बीच 2021 में हुए एक अनुबंध के तहत 99 पावर प्लांटों की आपूर्ति की जा रही है।
1: अपडेट रहे, आगे रहें। एक्स पर @AIRNewsHindi और इंस्टाग्राम पर AIRNewsAlerts को फॉलो करें।
0: भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव जन्माष्टमी आज देशभर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है।

0: उत्तर प्रदेश में भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा वृंदावन में जन्माष्टमी का भव्य आयोजन किया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मथुरा में जन्माष्टमी समारोह में शामिल होंगे।
1: हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की। भगवान कृष्ण की भक्ति में डूबी मथुरा वृंदावन की गलियों में हर तरफ आज यही शोर है। आज भगवान कृष्ण का जन्मदिन है और शानदार जन्मोत्सव की तैयारी पूरे शहर में हो रही है। समूचे ब्रजमंडल समेत प्रदेश भर में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव बड़ी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। भगवान कृष्ण की जन्मभूमि को दुल्हन की तरह सजाया गया है और हर तरफ रंग बिरंगी रोशनी की छटा बिखरी हुई है। इस अवसर पर लाखों श्रद्धालु भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर अभिभूत हो रहे। यहाँ के प्रमुख मंदिर मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि द्वारिकाधीश मंदिर, वृंदावन के विश्व प्रसिद्ध ठाकुर बिहारी जी मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की जबरदस्त तैयारियां हैं, जहाँ रात में जन्मोत्सव मनाया जाएगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: उधर जन्माष्टमी का पर्व गुजरात में भी धूमधाम से मनाया जा रहा है।
2: पवित्र नगरी द्वारका में भगवान द्वारकाधीश के दर्शन के लिए देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़ पड़े हैं। तड़के मंगला आरती के साथ शुरू हुआ पूजा अर्चना का क्रम पूरे दिन विविध भोग दर्शन और धार्मिक अनुष्ठानों के साथ जारी रहेगा। उत्सव का मुख्य आकर्षण आज मध्यरात्रि की महाआरती होगी, जब बाल गोपाल के जन्म लेते ही पूरा मंदिर परिसर हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की के जयकारों से गुंजायमान

0: उठेगा। वही प्रभु श्री हरि की प्रतिमा का नयनाभिराम श्रृंगार कर उन्हें दिव्य आभूषणों से अलंकृत किया गया है। पूरे परिसर में भजन कीर्तन और कृष्ण लीला की मधुर स्वर लहरियां गूंज रही है। द्वारका के अलावा राज्य के डाकोर के रणछोड़ राय जी और अरवली के श्यामला जी मंदिर में भी जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। अपर्णा खोंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन्माष्टमी के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। क्रिकेट में भारतीय महिला टीम हांगकांग को 137 रन से हराकर टी20 एशिया कप के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय टीम ने स्मृति मंधाना की शतकीय पारी की बदौलत 5 विकेट खोकर 193 रन बनाए। जवाब में हांगकांग की टीम 17वें ओवर में मात्र 56 रन पर सिमट गई। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
2: धन्यवाद प्रियंका। भारत की प्रगति दुनिया के लिए विश्वास का स्रोत, बेल्जियम के साथ समझौते के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को जनसत्ता सहित कई अखबारों ने प्रमुखता दी है। लोकसत्ता ने लिखा है, डायमंड से डिफेंस तक पहुंचा भारत बेल्जियम का रिश्ता। बकौल नवभारत टाइम्स, समझौते में रॉकेट, गोला बारूद, ड्रोन और एयर डिफेंस जैसी कई तकनीकें शामिल। अमर उजाला की सुर्खी है, अमरीका से द्विपक्षीय व्यापार समझौते के लिए अन्य से बेहतर टैरिफ पर अड़ा भारत। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने साफ किया, प्रतिस्पर्धी देशों से कम टैरिफ मिलने पर ही समझौता अंतिम रूप लेगा। दैनिक जागरण सहित अधिकांश अखबारों ने सर्वोच्च न्यायालय के इस बयान को प्रकाशित किया है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास कानून के छात्रों का आचरण नियंत्रित करने का अधिकार नहीं। नालसर विवाद में अदालत ने कहा, अनुशासन का अधिकार शिक्षण संस्थान के पास। बकौल हिंदुस्तान ने संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी यूनिसेफ के हवाले से लिखा है, पिछले एक वर्ष में 2 करोड़ बच्चों का हुआ ऑनलाइन यौन उत्पीड़न, 11 लाख बच्चों की एआई जनरेटेड तस्वीरें साझा हुई। एआई को नहीं किसी रचना का रचयिता बनने का हक। राजस्थान पत्रिका ने भारतीय कॉपीराइट ने एआई सिस्टम दाबूस को रचयिता मानने से इनकार किया। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर राजस्थान पत्रिका ने उनके जीवन के विभिन्न प्रसंगों का उल्लेख करते हुए लिखा है, भगवान कृष्ण के हर रूप में छिपी है जिंदगी की एक खूबसूरत सीख।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का सफल प्रक्षेपण किया। विदेशी योगदान को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए सरकार ने विदेशी अंशदान संशोधन विधेयक 2026 की जांच के लिए 31 सदस्यीय संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया। सर्वोच्च न्यायालय आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीशों के मंच की मेजबानी करेगा। भारत ने नेपाल में बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों के लिए राहत सामग्री से भरे 2 और विमान भेजे। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव जन्माष्टमी आज देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। और क्रिकेट में भारतीय महिला टीम हांगकांग को 137 रन से हराकर टी20 एशिया कप के सेमीफाइनल में पहुंची। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. ISRO successfully launches its Earth Observation Satellite EOS-05 on board GSLV-F17 rocket from Sriharikota in Andhra Pradesh. Government forms 31-member Joint Parliamentary Committee to examine Foreign Contribution Regulation Amendment Bill 2026. Supreme Court of India to host BRICS Chief Justices Forum in New Delhi beginning today. India sends 2 more aircraft with relief materials to Nepal to support ongoing relief and rescue efforts in flood-affected areas. Festival of Janmashtami, which marks birth of Lord Krishna, being celebrated across the country today. And in women's cricket, India storm into semi-final of 2020 Asia Cup, beating Hong Kong by 137 runs in their second Group A match in Dubai. And now the news in detail. Indian Space Research Organization ISRO has successfully launched its Earth Observation Satellite EOS-05 on board GSLV-F17 rocket from Sriharikota in Andhra Pradesh early this morning. After a 27-hour countdown, GSLV-F17 rocket with satellite EOS-05 lifted off at 2:55 a.m. from the second launch pad at Satish Dhawan Space Center. ISRO Chairman V. Narayanan said the state-of-the-art satellite was successfully placed.

0: S-17 वाहन ने उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 5 को सफलता पूर्वक और सटीक रूप से उसकी निर्धारित और आवश्यक कक्षा में स्थापित कर दिया है, और हमने इस प्रक्षेपण वाहन का उपयोग करके सबसे भारी उपग्रह को स्थापित किया है। एक बार पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 5 के चालू हो जाने के बाद यह भू कक्षा से भारत का पहला समर्पित इमेजिंग उपग्रह बन जाएगा, जो हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण रणनीतिक डेटा प्रदान करेगा।
1: इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक डेटा फॉर आवर कंट्री।
2: सरकार ने विदेशी चंदा नियम सोध बिल 2026 की जांच लिए 31 मैंबरी सांझी संसदीय कमेटी का गठन किया है। लोक सभा मैंबर संजय जायसवाल कमेटी के प्रधान होंगे। कमेटी बिल के उपबंधा ते तजवीज सुधा सोधा बारे विचार वटांदरा करेगी। कमेटी विच लोक सभा के प्रमुख नामों में भरतू हरी महताब, तेजस्वी सूर्या, निशिकांत दुबे, ए राजा ते सुप्रिया शुल शामिल ने। राज्यसभा तो हर्षवर्धन श्रृंखला, संजय कुमार चाह, प्रफुल पटेल ते मेनका गुरुस्वामी कमेटी विच शामिल ने। संसद के दोवें सदनों ने 12 अगस्त को विदेशी चंदा नियम सोध बिल 2026 को होर जांच लिए संयुक्त संसदीय कमेटी को भेजने लिए अपनी प्रवानगी दी सी। नेपाल विच आए तबाकू हड़ां विच मरण वाले की गिणती 1,269 हो गई है, जदों के 5,000 तो वध लोग हालां भी लापता ने। नेपाल पुलिस अनुसार सब तो वध 355 लाशां चितवन च मिली ने। इस तो बाद नवलपरासी पूर्व विच 218 ते नवलपरासी पश्चिम विच 212 लाशां बरामद होईयां ने। इस तरह नेपाली फौज की अगुवाई विच सांझियां बचाव टीमां अपने भाल कार्य जारी रख रही ने। भारतीय बचाव टीमां ने राहत ते बचाव कार्य करन लई चिलीमे पावर हाउस विखे नेपाली टीमां नाल एक बेस स्थापित कीता है। इस दौरान भारत ने 21.5 टन राहत समगरी, फोरेंसिक किटा ते डॉक्टरी सप्लाई नाल दो होर जहाज कल नेपाल भेजे ने। एक सोशल मीडिया पोस्ट विच विदेश मंत्रालय ने कहा कि वादू सहायता चल रहे राहत ते बचाव कार्यों नूं होर मजबूत करेगी। गृह मंत्रालय नेपाल विच हड़ां तों बाद लापता होए भारतीय नागरिकां लई DNA प्रोफाइलिंग करेगा। इसलिए केंद्रीय ते राज फोरेंसिक प्रयोगशालावां ते राष्ट्रीय फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी दीआं प्रयोगशालावां दीआं सेवावां लईआं जाणगीआं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत विच रहण वाले रिश्तेदार निर्धारित केंद्रां ते जैविक नमूने प्रदान करके अपने DNA प्रोफाइल तैयार करवा सकते ने। भारत ने ब्रसल्स विच एक रक्षा ताशे नियुक्त करन दा फैसला कीता है। विदेश मंत्रालय अनुसार इस कदम नाल भारत ते बेलजियम विचकार रक्षा सहयोग ते रक्षा उत्पादन नूं हुलारा मिलेगा। बेलजियम ने इस साल दे शुरू विच नवी दिल्ली विच एक रक्षा ताशे नियुक्त कीता सी। विदेश मंत्रालय विच पछम बारे सकत्तर CB जॉर्ज ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ते बेलजियम दे प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर ने अगले 5 सालां विच दोहां देशां विचकार दवल्ले व्यापार नूं दुगणा करन दा टीचा रख्या है। श्री जॉर्ज ने कहा कि भारत बेलजियम संबंधां दे संदर्भ विच व्यापार, तकनोलॉजी ते हुनर ते विशेष जोर दिता जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने बेलजियम दीआं यूनिवर्सिटियां ते प्रमुख विद्यक संस्थावां नूं भारत विच कैंपस स्थापित करन दा सद्दा दिता है। ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਤੋਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਐਕਸ ਹੈਂਡਲ ਹੈ @ARNU ਜਲੰਧਰ। ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਹੈ RNU-AIR ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਯੂਟਿਊਬ ਤੇ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਹੈ @AIR ਜਲੰਧਰ। ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੰਦਰਾਂ ਤੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

0: श्री कृष्ण जन्माष्टमी दे पावन मौके ते भगती श्रद्धा अते उत्साह नाल भरपूर एक खास पेशकश लेके आ रहा है आकाशवाणी FM बठिंडा। तुसी सुनोगे प्रोग्राम घर परिवार दे तहत श्री कृष्ण जन्माष्टमी नु समर्पित यह विशेष प्रोग्राम अज दोपहर 12:03 ते। इस प्रोग्राम दे वाचक रहेंगे ममता अरोड़ा अते बलजीत शर्मा, निर्माता निर्देशक बलजीत शर्मा। ता तैयार हो जाओ भगवान श्री कृष्ण दे जन्म उत्सव दियां खुशियां अते भक्ति दे रंग विच रंगन दे लई। सुनना ना भुलना प्रोग्राम घर परिवार दे तहत यह विशेष पेशकश।
1: जिस तरह ते प्रोग्राम चल रहा है महक पंजाब दी तुसी आनंद मान रहे हो प्रदेशिक संगीत दा स्टूडियो दी घड़ी ते समा हो चुके 8:45 अते 12 सेकंड दा। ते आओ हुण सुनदे आ प्रोग्राम दे तहत अगला हिमाचली गीत जिस नूं आवाज दित्ती है देवाशीष दास गुप्ता अते साथियां ने।

0: हिवड़ा से दूर थाने कैया कर स्या हिवड़ा से दूर थाने कैया कर स्या परदेसा में गोरी थारी ओड़ू आसी थारी चूड़िया ये थारी चूड़िया खनक ये खनक जासी
1: मारा पायलड़ा

आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और आपने अपने दोस्त राजेश के साथ प्रोग्राम चित्रलोक में लीजिए सुनिए अरिजीत सिंह की आवाज में ओ रोमियो। इस फिल्म का गाना गुलजार के हैं बोल और विशाल भारद्वाज की है तर्ज।

दोस्तों, आज 4 सितंबर है। आज है ऋषि कपूर जी का जन्मदिवस। हालांकि भौतिक रूप से वह हमारे बीच नहीं है, लेकिन अपनी कला के माध्यम से हमारे दिलों में बसते हैं और हमेशा बसते रहेंगे। ऋषि कपूर जी एक सदाबहार अभिनेता थे और सिने जगत में सदा प्रासंगिक रहे थे और रहेंगे भी। तो चलिए, उन्हीं की फिल्म का एक गाना आपको सुनवा रहे हैं। फिल्म का नाम है 102 नॉट आउट। अमिताभ बच्चन और ऋषि कपूर की आवाजें, अमिताभ भट्टाचार्य के बोल, और अमिताभ बच्चन ने संगीतबद्ध किया है इस गाने को।

0: टेलीविजन के जाने माने नाम, जिनके लिए अभिनय एक काम नहीं समर्पण है।
1: जब मैं तैयारी करना शुरू करता हूँ, वहीं से मेरे अंदर एक नया इंसान जन्म लेता है। वो एक एक्टर विनीत रैना है। जैसे ही वो मेकअप अपने ऊपर चढ़ाता है तो वो किरदार बन जाता है जो आज पूरा दिन उसको प्ले करना है। उसका विनीत रैना से कोई लेना देना नहीं।
0: कभी चॉकलेटी हीरो, कभी खूंखार विलेन, तो कभी परम दिव्य साईं।
1: साईं बाबा तक पहुंचना मेरे ख्याल से किसी के बस में नहीं है।
0: विविध भारती पर आ रहे हैं अपने अभिनय और जीवन की कहानी लेकर जाने माने अभिनेता विनीत रैना। जरूर सुनिए सेल्युलॉइड के सितारे मंगलवार 8 सितंबर शाम 4 बजे और 9 सितंबर सुबह 10 बजे देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन और कार्यक्रम चल रहा है चित्रलोक। दोस्तों, आज संगीतकार आदेश श्रीवास्तव जी का जन्मदिवस है। वे अपने सुरीले संगीत के लिए जाने जाते थे और उनका संगीत सुरीला भी होता था और अनूठा भी। आइए उनकी ही फिल्म का एक गाना सुनते हैं, आपको सुनवा रहे हैं राजनीति फिल्म का गाना। आदेश श्रीवास्तव, रोजाली निकलसन और शशि ने गाया इसे। समीर के बोल हैं और तर्ज बनाई है आदेश श्रीवास्तव ने।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: श्रोताओ, आज के चित्रलोक कार्यक्रम की आखिरी पेशकश विशाल मिश्रा, नीति मोहन, साहिल अख्तर और शहनाज अख्तर की आवाजों में गदर 2 फिल्म से सईद कादरी के हैं बोल और मिथुन की है तर्ज़।

श्रोताओं, गदर टू फिल्म के इस गाने के साथ ही आज का चित्रलोक कार्यक्रम संपन्न होता है। अपने दोस्त राजेश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

आप सुन रहे हैं विविध भारती। आज के फनकार, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे कुछ ही पलों के बाद।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: कहानी के किसी सीन के रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया।
0: जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन, कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत?
1: डायरेक्टर ने आओ देखना ना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। तो बस सिर्फ दिल बहलाने गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ठेलों में, सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में पल्लम कोई करता चमर होगा। वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन साथी।

0: सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। आज के फनकार कार्यक्रम में आज बातें एक सजीले बांके नौजवान की।
1: बाहर से कोई अंदर ना आ सके।

4 सितंबर 1952 को राज कपूर के घर जन्मे। पिता राज कपूर और दादा पृथ्वीराज कपूर रजतपट को पहले ही सुनहरा बना चुके थे। दोनों नामी कलाकार थे। महज 3 बरस की उम्र में ऋषि कपूर ने पिता राज कपूर की फिल्म श्री 420 के इस गाने में काम किया था। हमें पता है कि जब आप ये गाना सुनेंगे, आपके मन में रजतपट पर 3 बच्चों की छवि जगमगा जाएगी।

0: ऋषि कपूर ने बताया था कि जब श्री 420 की शूटिंग चल रही थी तो उनके पिता ने सोचा कि उनके तीनों भाई बहनों को एक साथ इस गाने में दिखाया जाए, पर पानी में चलते हुए आंखों पर जब पानी की धार पड़ती थी तो ऋषि कपूर रोने लगते थे, इसलिए वो शूटिंग को आनाकानी कर रहे थे। तभी नरगिस जी को आइडिया आया और उन्होंने चॉकलेट का लालच दिया। 3 बरस के ऋषि कपूर चॉकलेट के लालच में इस गाने में चलते रहे। इसके बाद सन 1970 में ऋषि कपूर ने फिल्म मेरा नाम जोकर में एक छोटी सी भूमिका निभाई। इसके लिए उन्हें मिला सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार का राष्ट्रीय पुरस्कार।
1: एक किस्सा दादाजी ने सुनाया था, जोकर के लिए मुझे नेशनल अवार्ड मिला था, तो मैं तो बच्चा था 70 में, 18 साल का था, तो अवार्ड मिला तो मैं पापा के पास गया, पापा को मैंने दे दिया अवार्ड, तो उन्होंने बोला तुम जा दादा के पाँव में रख दो। तो मैं गया दादाजी को मिलने, दादाजी ने बहुत प्यार किया, मैंने वो बोला मैंने ये जीता है और मैंने उनके पाँव में रख दिया। दादाजी वहाँ फूट फूट के रोने लगे। मुझे उस वक्त उस सेंटेंस की गहराई का मतलब मुझे समझ नहीं आया था, जो मुझे बाद में समझ में आया। तो उन्होंने सिर्फ मुझे चूमा माथे पर, कहा कि राज कपूर ने मेरा कर्जा उतार दिया।
0: बतौर हीरो ऋषि कपूर सन 1973 में फिल्म बॉबी के जरिए रजत पट पर आए थे, पर यह कोई सोचा समझा प्लान नहीं था। यकीन मानिए ये सब अचानक हुआ था।
1: जोकर पिक्चर नहीं चली, फर्स्ट पार्ट लोगों ने बहुत पसंद किया, तो वो मैं उसमें एक एडोलेसेंट बॉय था, तो पापा बना रहे थे एक यंग स्टोरी, लव स्टोरी, सही मानू में टीनेज लव स्टोरी बॉबी के रूप में। तो उन्हें एक बॉबी अपनी हीरोइन की तलाश थी, तो जब डिंपल को शॉर्टलिस्ट किया तो मुझे भी कहा गया कि भाई तुम भी रिड्यूस करो, तुम भी वेट कम करो, मैं तुम्हें लूंगा हीरो। पिक्चर बन रही थी बॉबी, बॉबी कौन था, डिंपल। मेरे लिए जैसे आज की तारीख में जैसे जो भी हीरो के बच्चे होते हैं तैयार किया जाता है फिल्म में हीरो बनने का, तो वो घोड़े में एंट्री करते हैं या मोटरसाइकिल पे एंट्री करते हैं, वो वैसे कुछ नहीं था। मैं बाय डिफॉल्ट हीरो था, पिक्चर तो टाइटल रोल तो डिंपल की थी, डिंपल वाज द हीरो ऑफ द फिल्म। मैं बाय चांस मुझे लिया गया, मेरी किस्मत अच्छी थी कि राज कपूर साहब ने घर में बैठा बैठा के वो ले लिया पिक्चर में। उन बीच में पिक्चर खत्म हुई, डिंपल की शादी हुई, वो इंडस्ट्री छोड़ गई, पिक्चर रिलीज हुई, सुपर डुपर हिट हो गई, पूरा क्रेडिट मैंने खा गया, मैं हो गया बन गया एक्टर।

किसे पता था कि बॉबी के जरिए सिनेमा के पर्दे पर अपना पहला कदम रखने वाला ये क्यूट सा लड़का आगे चलकर एक लंबी और रूमानी पारी खेलेगा। दरअसल ऋषि कपूर भारतीय सिनेमा के पहले सबसे लंबी पारी वाले रूमानी हीरो बने। कमाल की बात ये भी है कि ऋषि कपूर की फिल्मोग्राफी की धारा एकदम अलग है, पर उन पर जो गाने फिल्माए गए आज भी रेडियो पर उन गानों की रुपहली यात्रा जारी है। जैसे ऋषि कपूर की दूसरी ही फिल्म जहरीला इंसान का ये गाना।

जी हाँ, सबसे हिट और सबसे रूमानी गानों की दौलत ऋषि कपूर को मिली। हिंदी सिनेमा को हर दौर में एक चॉकलेटी हीरो की जरूरत होती है, एक ऐसे नायक की जरूरत जो दुनिया की तमाम जुल्मतों और परेशानियों के पार हमें सपनों की दुनिया में ले जाए, प्यार के फूल खिलाए। भारतीय सिनेमा उद्योग की इन जरूरतों के लिए ऋषि कपूर 70 के दशक में वरदान बन गए थे। सन 1975

दिलचस्प बात यह है कि डिंपल के साथ फिल्म यात्रा शुरू करने वाले ऋषि कपूर की सबसे शानदार जोड़ी नीतू सिंह के साथ जमी। दोनों ने एक साथ तकरीबन 12 फिल्में की, जहरीला इंसान, जिंदा दिल, खेल खेल में।

0: से क्या?
1: ऋषि कपूर और नीतू सिंह लव आजकल, दो दूनी चार और बेशरम जैसी फिल्मों में साथ में नजर आए। दोनों में शुरुआती फिल्मों के समय दोस्ती हो गई थी। दोनों के बीच बहुत बातें होती थीं। एक बार ऋषि कपूर मुंबई से बाहर कहीं शूटिंग कर रहे थे, नीतू की इतनी याद आई कि उन्होंने एक टेलीग्राम भेजा, तुम्हारी बहुत याद आती है। आखिरकार लंबी दोस्ती के बाद 26 बरस के ऋषि कपूर और 21 बरस की नीतू सिंह 22 जनवरी 1980 को परिणय सूत्र में

1980. सुभाष खई की फिल्म कर्ज।

0: और कोई, रोग का नहीं है इलाज दुनिया में और कोई। तो गाओ हो शांति ओ शांति शांति ओ।
1: बॉबी के 9 बरस बाद 1982 में एक बार फिर से ऋषि कपूर ने अपने पिता के निर्देशन में काम किया। फिल्म थी प्रेम रोग। अरे कुछ नहीं।

इसके बाद राज साहब की अधूरी छूटी फिल्म हिना में उन्होंने काम किया, जिसे उनके बड़े भाई रणधीर कपूर ने निर्देशित किया था।

बीच में एक लंबा दौर आया जब ऋषि कपूर फिल्मों में काम तो करते रहे पर वो असरदार फिल्में नहीं थीं। पर इसके बाद आई यश चोपड़ा की चांदनी।

0: सेतु सिंह हूँ या टीना मुनीम।
1: तू कितने बरस का,
2: तू कितने बरस की,
1: मैं 16 बरस की,
2: तो मैं 17 बरस का।
1: 16 17 17 16
0: हीना की हीरोइन जेबा बख्तियार हूँ।

अपने लंबे करियर में हीरोइनों की कई पीढ़ियों के साथ चॉकलेटी हीरो के रूप में अपने सजीले स्वेटर्स में नजर आते रहे ऋषि कपूर। सोचेंगे

0: तकरीबन साल 2000 से ऋषि कपूर चरित्र अभिनेता के रूप में रुपहले पर्दे पर आने लगे। साल 2004 फिल्म हम तुम, साल 2006 फिल्म फना, इसके बाद नमस्ते लंदन, लव आजकल और पटियाला हाउस जैसी फिल्में आईं, जिनमें उन्होंने सहायक भूमिकाएं निभाई।
1: ये मातम क्यों मनाया हुआ है? मैं महारानी में जिंदा हूं, जाओ जाओ उसे देखो खेलते हुए, जाओ जाओ जाओ तुम सब जाओ, ये ऐसे मुंह मत लटकाओ, तुम जाओ जाओ देखो उसे खेलते हुए, आखिर मेरे नाम मेरी इज्जत से तो खेल रहा है वो, जाओ तुम लोग सब जाओ यहां से, जाओ जाओ। कहते इनसे मेरा खुद का बेटा मेरा नहीं, ये लोग भी मेरे नहीं, लेकिन ये घर मेरा है, जमीन पे नहीं पीठ पे खड़ा किया इसे, और इन्हें कोई हक नहीं के मेरे सीने पे पैर रखे। दफा कर इन सबको।
0: साल 2012 में उन्होंने करण मल्होत्रा और करण जौहर के अग्निपथ के रीमेक में रऊफ लाला की शानदार भूमिका निभाई थी।
2: हाँ, यही कमरा है जहां सुनाई गई थी कहानी, और यही मैंने उनसे कहा था कि तुम पागल हो, दिमाग खराब है तुम्हारा, तुम पिक्चर फ्लॉप करा दोगे मुझे लोग ऐसे रोल में, मेरी इमेज क्या है, मेरी छाप क्या है, और तुम मुझे क्या देना चाहते हो? नहीं नहीं सर, आप तो बेहतरीन करें, बेहतर करें, ऐसे वो करूंगा तो सही, मुझे भी मालूम है अच्छा एक्टर मैं करूंगा सही, लेकिन उसे एक्सेप्ट भी तो करना चाहिए। तो मैंने ना ना करके उसे नकार दिया, मैंने बोला चले जाओ ऐसे, देखो मैंने, उन्होंने हार नहीं मानी। एक महीने लगातार करण जौहर साहब और करण मल्होत्रा जो डायरेक्टर थे पिक्चर के, लगातार मेरे पीछे बने रहे कि

0: आपको तो करना ही पड़ेगा। सही बात यह कमल जी, मेरे में एक्चुअली साहस यानी कि हिम्मत नहीं थी, मेरे पास कॉन्फिडेंस नहीं था ऐसे रोल करने का। मैंने सोचा कहीं मैं कर लूं और मेरे कारण पिक्चर ना चले तो लोग बोलेंगे देखो पिक्चर फ्लॉप हो गई ऋषि कपूर की वजह से, और मैं ये कभी नहीं चाहता कि मेरी वजह से कोई किसी को नुकसान हो। मैं जानता हूं कि एक्टर मैं थोड़ा बहुत ठीक हूं, मैं निभा लूंगा, लेकिन उसे एक्सेप्ट करना बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। आप तो मैं एक्चुअली सही मानो में उससे डर रहा था, मेरा कॉन्फिडेंस नहीं था। तो जब बहुत दबाव आया तो मैंने उनसे सजेस्ट किया कि अच्छे काम करते हैं, एक लुक टेस्ट लेते हैं, यानी देखते हैं वो कैसा दिखेगा मेरे में। तो एक कच्चा पक्का हमने लुक टेस्ट लिया, जिससे मेरा थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ा, मैंने थोड़ी हिम्मत बनी, थोड़ा मैंने कहा अच्छा तो मुझे कुछ सीन्स वीन सुनाएंगे, फिर मैंने थोड़ा बहुत हिम्मत की और फिर मैंने बोला चलो भाई करते हैं देखते क्या होता है। अब जब फिल्म मुकम्मल हो गई, पिक्चर चल गई, हिट भी हो गई, कुछ बहुत लोगों ने हमारी भी तारीफ की, एक आध अवार्ड भी मिल गया, तो ये मैं कहना चाहता हूं कि इसका जो क्रेडिट है ये दोनों करण जौहर और करण मल्होत्रा का है। अगर उनका दबाव नहीं होता, अगर उनका कॉन्फिडेंस नहीं होता कि ऋषि कपूर ही कर सकता है रोल, तो ये मुझे कभी रोल नहीं मिला होता। ये मैं उल्टा उनकी सोच को मैं दाद देता हूं कि उनने कैसा सोचा कि ऋषि कपूर कर सकता है।
1: लाला मेरा नाम है, रौफ लाला, ये तो तू भूलेगा नहीं कि एक पल के लिए मैंने तुझे जहन्नम की याद दिला दी थी।
0: तो ये अवार्ड सही मानों में उनका है, मेरा नहीं। हाँ मेरी मेहनत थी, उनका कॉन्फिडेंस था, उनकी एक फोरसाइट थी, आगे की एक सोच थी कि ऋषि कपूर सही है। मेरी तरफ से किसी का नुकसान हो जाए ये तो मैं कभी भी नहीं चाहूंगा।
2: साल 2018 में उन्होंने उमेश शुक्ला की फिल्म 102 नॉट आउट में काम किया। इस फिल्म में वो अमिताभ बच्चन के साथ नजर आए। लगभग इन्हीं दिनों में आई थी फिल्म डी डे, एक ऐसी फिल्म जिसमें इरफान खान और ऋषि कपूर एक साथ नजर आते हैं।
0: एक बात बताओ, कैप्टन कौन है तुम दोनों में, ये या तुम? ये तो फौजी है, अकल से ज्यादा हाथ पैर चलाता है, तुम समझदार लगते हो। बात करते हैं चलो, वो एक फोन करना था।
3: हम में से कोई सौदा करने वाला दिखता है?
0: अरे बिकते तो सभी हैं, कुछ पैसों से तो कुछ जज्बात से।
3: अगर ये बात झूठ है, खुदा की कसम मैं यहाँ पे गोली मारूंगा।
4: वली तू इसके बातों में मत आया, झूठ बोल रहा है।
2: इस दौर में भी ऋषि कपूर ने कई फिल्में की। 2016 में आई फिल्म कपूर एंड सन्स में उनका अभिनय लाजवाब था। 2018 में फिल्म मुल्क में उनके किरदार की खूब तारीफ हुई। साल 2017 में ऋषि कपूर की आत्मकथा आई खुल्लम खुल्ला, ऋषि कपूर अनसेंसर्ड। जैसा कि हमने आपको बताया, सन 1970 में फिल्म मेरा नाम जोकर में भूमिका के लिए ऋषि कपूर को सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। सन 1974 में अपनी पहली ही फिल्म बॉबी में उन्होंने जीता सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार। साल 2008 में फिल्म फेयर ने उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया था। इसके अलावा ऋषि कपूर को फिल्म फेयर का क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड मिला था साल 2011 में फिल्म दो दूनी चार के लिए, और सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार 2017 में उन्हें मिला फिल्म कपूर एंड सन्स के लिए। 30 अप्रैल 2020 का दिन था जब मुंबई में 67 बरस की उम्र में ऋषि कपूर ने अपनी आखिरी सांस ली। वो अपने पीछे अपने परिवार, अपनी फिल्मों, अपने गानों और अपने दीवानों को छोड़कर चले गए। जमाना उन्हें एक खुशनुमा और चंचल अभिनेता के तौर पर हमेशा याद करेगा।

0: भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: हम जो गाना बनाते हैं उसमें 50% 50% हाथ जो है सिर्फ सॉन्ग राइटर का है।
0: संगीतकार ओ पी नैयर।
1: ये हकीकत है, इसको बाकी लोग नहीं मानेंगे। जिगरा चाहिए ये मानने के लिए कि ओ पी नैयर कुछ नहीं बगैर सॉन्ग राइटर के। मैं दूसरों की बात नहीं करता, आप 50% तो शायर हो गए और 25% जो काम है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है ऑर्केस्ट्रेशन में और सिंगर में। बाकी आप 25% अगर बोले तो क्रेडिट कंपोजर का है, ज्यादा कुछ है।
0: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती
2: हुणे तुसी सुन रहे सी विविध भारती मुंबई दे प्रसारण। आकाशवाणी एफ एम बठिंडा एफ एम 101.1 मेगाहर्ट्ज़ दे स्टूडियो दी घड़ी ते समां हो रहा 10:15 का ते हुण वेला ए प्रोग्राम गीत पिटारा दा।

जी श्रोतियों, प्रोग्राम गीत पिटारा लेके हाजिर हो चुकी हूं मैं आप सब दी रेडियो तो सुखदीप। मेरे वालों सारे ही श्रोतियों नु प्यार भरी नमस्कार। अज दे प्रोग्राम गीत पिटारा दे तहत सुनवावांगे तुहानू सदा बहार पंजाबी गीत। ते प्रोग्राम दा आगाज हमेशा दी तरह धार्मिक गीतां दे नाल, ते आओ फिर सुनदे आं प्रोग्राम दे विच पहला धार्मिक गीत जसदेव यमला दी आवाज़ दे विच। गीत रचना काला निजामपुरी दी, संगीत दित्ता लाल कमल ने।

0: श्री कृष्ण जन्माष्टमी दे पावन मौके ते भगती श्रद्धा अते उत्साह नाल भरपूर एक खास पेशकश लेके आ रहा है आकाशवाणी FM बठिंडा। तुसी सुनोगे प्रोग्राम घर परिवार दे तहत श्री कृष्ण जन्माष्टमी नु समर्पित यह विशेष प्रोग्राम अज दोपहर 12:03 ते। इस प्रोग्राम दे वाचक रहेंगे ममता अरोड़ा अते बलजीत शर्मा, निर्माता निर्देशक बलजीत शर्मा। ता तैयार हो जाओ भगवान श्री कृष्ण दे जन्म उत्सव दियां खुशियां अते भगती दे रंग विच रंगन दे लई। सुनना ना भुलना प्रोग्राम घर परिवार दे तहत यह विशेष पेशकश। मन मंदिर में सजे बिहारी मनमोहन तेरी छवि।
1: जी श्रोतियो प्रोग्राम चल रहा है गीत पिटारा ते तुसी आनंद मान रहे हो सदाबहार पंजाबी गीतां दा मेरे नाल यानी कि अपने रेडियो तो सुखदीप दे नाल। ते आओ हुण सुनदे आ प्रोग्राम दे तहत अगला गीत अमर सिंह शौंकी दी आवाज़ दे विच।

प्रोग्राम गीत पिटारा दे तहत हुणे तुसीं सुन रहे सी कुलदीप माणक दी आवाज़ दे विच एक गीत। हरदेव दिलगीर दे लिखे इस गीत नूं संगीतबद्ध कीता सी KS नरूला ने। ते आओ हुण सुणदे हां प्रोग्राम दे विच अगला गीत सुरिंदर छिंदा दी आवाज़ दे विच। गीत रचना हरदेव दिलगीर दी ते संगीत दित्ता चरणजीत आहूजा ने।

प्रोग्राम पैगाम दी रिकॉर्डिंग संबंधी सूचना मिति 6 सितंबर दिन एतवार नूं सवेरे 7 बजे सर्जरी सवेर दे तहत प्रसारित कीते जाण वाले सिलसिले पैगाम दी रिकॉर्डिंग 4 सितंबर दिन शुक्रवार नूं शाम 4 बजे कीती जाएगी।

सौरा मैनू दे वे झिड़का निक्का देवर मेरे बनी दुध रिड़का ते मज्जा चोवा मैं आपे ही कर दी सनी दुध पीण नू जेठ जठाणी दुध पीण नू जेठ जठाणी मैं समझा।

0: परवाने दे मैं मर्दवा चिर तड़के नी मेरी वारी आई पतीला नी मेरी वारी आई पतीला नी मेरी वारी आई पतीला फड़के नी मेरी वारी आई पतीला फड़के।
1: श्रोतियों मिती 6 सितंबर दिन एतवार सवेरे 10:30 बजे तुसी सुनोगे अदबी प्रोग्राम सुखन दे वारस। इस प्रोग्राम दे विच साडे मेहमान होणगे कवित्री शायरा गीतकारा कुलविंदर कौर ढिल्लों।

pagão, ela

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में एक और बड़ी सफलता हासिल की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज तड़के श्रीहरिकोटा से GSLV F-17 रॉकेट के माध्यम से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का सफल प्रक्षेपण किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो की इस उपलब्धि पर कहा कि ये राष्ट्र के लिए गर्व का क्षण है। श्री मोदी ने कहा कि ये सफलता भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र की उत्कृष्टता, नवाचार और बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भी इसके सफल प्रक्षेपण की सराहना की है। इसरो अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा कि ये मिशन भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को और मजबूत करेगा।
1: I am very happy to announce that GSLV.
2: मुझे यह घोषणा करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि GSLV F-17 वाहन ने उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 5 को सफलतापूर्वक और सटीक रूप से उसकी निर्धारित कक्षा में स्थापित कर दिया है। हमने इस प्रक्षेपण वाहन का उपयोग करके एक बार पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 5 के चालू होने के लिए महत्वपूर्ण रणनीतिक डेटा प्रदान करेगा।
1: जियो ऑर्बिट प्रोवाइडिंग इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक डेटा फॉर आवर कंट्री।
0: सरकार ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर संसद की 31 सदस्यीय संयुक्त समिति का गठन किया है। एक रिपोर्ट।
3: इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य किसी गैर सरकारी संगठन या संस्थान द्वारा विदेशी योगदान के उपयोग को अधिक पारदर्शी बनाना और संस्थाओं के पदाधिकारियों की जवाबदेही तय करना है। लोकसभा सांसद संजय जायसवाल संशोधन विधेयक की जांच के लिए गठित एक संयुक्त पैनल का नेतृत्व करेंगे। समिति में लोकसभा के प्रमुख नामों में भर्तृहरि मेहताब, तेजस्वी सूर्या, निशिकांत दुबे, ए राजा और सुप्रिया सुले शामिल हैं। राज्यसभा से हर्षवर्धन श्रृंगला, संजय कुमार झा, प्रफुल्ल पटेल और मेनका गुरुस्वामी को इस समिति में शामिल किया गया है। संसद के दोनों सदनों ने 12 अगस्त को विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को आगे की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजने की मंजूरी दी थी। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: सर्वोच्च न्यायालय आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश मंच की मेजबानी कर रहा है। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों और भागीदार देशों के मुख्य न्यायाधीश तथा वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत रूस, चीन, मिस्र, इंडोनेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, बेलारूस, कजाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान के न्यायिक प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों से द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। भारत ने दो और विमानों से नेपाल के लिए राहत सामग्री की नई खेप भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल के लिए 21.5 टन राहत सामग्री लेकर दो C-130J विमान काठमांडू पहुंच गए हैं। इस बीच नेपाल में विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,259 हो गई है। आपदा के एक सप्ताह से अधिक समय के बाद भी 5,000 से अधिक लोग लापता हैं। नेपाल पुलिस के अनुसार चितवन में सबसे अधिक 355 शव बरामद किए गए हैं। अमेरिकी रक्षा क्षेत्र की दिग्गज कंपनी जीई एयरोस्पेस ने हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड को F-404 IN-20 इंजनों की एक नई खेप भेजी है। इससे देश के घरेलू तेजस MK-1A लड़ाकू विमान कार्यक्रम को महत्वपूर्ण बढ़ावा मिलेगा। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ने कहा है कि जो मतदाता 30 जून से 17 अगस्त के बीच गणना प्रपत्र जमा नहीं कर पाए हैं, वे 30 सितंबर तक फॉर्म 6 और निर्धारित घोषणा पत्र जमा कर सकते हैं। फॉर्म 6 के जरिए अंतिम मतदाता सूची में नाम शामिल कराने का अनुरोध किया जा सकता है। अंतिम मतदाता सूची 4 नवंबर को प्रकाशित होगी। देश भर में आज जन्माष्टमी का पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है।

0: उत्तर प्रदेश में भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा वृंदावन में जन्माष्टमी का भव्य आयोजन किया जा रहा है। वहीं गुजरात में भी धूमधाम से ये पर्व मनाया जा रहा है। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। क्रिकेट में भारतीय महिला टीम हांगकांग को 137 रन से हराकर T20 एशिया कप के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय टीम ने स्मृति मंधाना की शतकीय पारी की बदौलत 5 विकेट खोकर 193 रन बनाए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: बहुत सारे बॉलीवुड म्यूजिक के साथ बने रहिए बस मेरे साथ यहाँ, क्योंकि कुछ ही देर में पूछूंगी बॉलीवुड सरताज बनने का वो बड़ा ही खास सवाल।

What a beautiful and energetic start of the day. दोस्तों, एक कहानी जो OTT पर शुरू हुई और धीरे धीरे पॉप कल्चर का हिस्सा बन गई, अब वो पहुंच गई है बड़े पर्दे पर. वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं बॉलीवुड ट्रेल्स विद मी ज्योतिका, ओनली ऑन FM रेनबो. तो फ्रेंड्स, बात हो रही है यहाँ पर मिर्जापुर द मूवी की, जो आज 4 सितंबर 2026 को थिएटर्स में रिलीज हो गई है. जी हाँ, आज कृष्ण जन्माष्टमी के दिन इस मूवी ने दे दी है आपके नजदीकी सिनेमाघरों में दस्तक. छुट्टी का दिन है, चेक करो कहाँ शो अवेलेबल है. तब तक मैं आपको कुछ और बताती हूँ. देखिए, पंकज त्रिपाठी हमारे कालीन भैया, अली फजल हमारे गुड्डू, और दिव्येंदु जो मुन्ना के नाम से बड़े फेमस हुए, हम सबके फेवरेट बन गए. ये आपको बिग स्क्रीन पर भी बहुत अच्छे लगेंगे, बड़ा मजा आएगा. और इंटरेस्टिंग बात यह है कि रवि किशन और जितेंद्र कुमार भी फिल्म की कास्ट का हिस्सा है. वैसे देखा जाए तो OTT से थे

तक का ये जो ट्रांजिशन अपने आप में काफी इंटरेस्टिंग है, जिन कैरेक्टर्स को ऑडियंस ने अपने फोन्स पर, टेलीविजन स्क्रीन पर इतना प्यार दिया है, अब उन्हीं को लार्जर देन लाइफ बिग स्क्रीन एक्सपीरियंस में देखना फैंस के लिए डेफिनेटली एक नया एक्सपीरियंस होगा। और जब बात हो पावर, एटीट्यूड और थोड़े से स्वैग की, तो अगला गाना भी इसी मूड में है। बने रहिए सिर्फ यहां मेरे साथ बॉलीवुड ट्रेल्स में।

0: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses, and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: Dil ke tarane, gaane naye purane. Non-stop film music, rozana subah 9 se 10 baje tak. Rainbow 102.6 par.
0: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses, and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
2: आज फिर लेट हो गए।
3: अरे यार वो रवि मिल गया था, फिर बाहर ही बैठ गए थे।
2: क्यों बैठे थे बाहर?
3: क्यों ना बैठूं? बस इसीलिए क्योंकि उसे एड्स है। एड्स गले मिलने, साथ बैठने से और एक साथ खाना खाने से नहीं फैलता।
2: मुझे पता है, HIV एड्स असुरक्षित संबंध, संक्रमित सुई या संक्रमित महिला से उसके बच्चे को होता है। इसीलिए तो कह रही हूं, बाहर क्यों बैठे थे? रवि भैया को घर ही ले आते।
3: एड्स से पीड़ित व्यक्ति को दूर नहीं, हमारे साथ की जरूरत है। इसलिए ध्यान रखें और याद रखें कि एड्स छूने से, बात करने से, एक साथ खाना खाने से बिल्कुल नहीं फैलता। एड्स से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए 1097 पर कॉल करें। हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
5: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

वेलकम बैक आफ्टर द स्मॉल एड ब्रेक. आप सुन रहे हैं बॉलीवुड ट्रेल्स विद मी ज्योतिका. देखिए, आप इमेजिन करो, एक तरफ अरशद वारसी और ऊपर से डबल रोल का ट्विस्ट. बॉलीवुड ट्रेल्स में आप सोच नहीं सकते आज क्या क्या होने वाला है. जी हाँ, बॉलीवुड में डबल रोल्स का तो अपना मजा होता ही है. कभी कॉमेडी, कभी कंफ्यूजन और कभी सस्पेंस. आज 4 सितंबर को, जी हाँ, आज हॉलिडे के दिन, कृष्ण जन्माष्टमी के दिन रिलीज हुई है जीवन भीमा योजना, जिसमें अरशद वारसी लीड रोल में नजर आ रहे हैं. फिल्म को अभिषेक डोगरा ने डायरेक्ट किया है और कास्ट में संजीदा शेख भी हैं. फिल्म कॉमेडी, ड्रामा और थ्रिलर एलिमेंट्स को एक साथ लेकर आई है. और अरशद वारसी की एक खासियत तो हमेशा से रही है कि वो सीरियस सिचुएशन हो या कॉमिक मोमेंट, उनकी डायलॉग डिलीवरी और टाइमिंग जो होती है ना स्क्रीन पर, एक अलग एनर्जी ले आती है. इसीलिए जब स्टोरी में कंफ्यूजन और अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस हो, तो अरशद का जो प्रेजेंस है नेचुरली क्यूरियोसिटी बढ़ा देता है. अब इसी लाइट को और इसी केयरफ्री मूड को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं. इमेजिन करो ना यार, बड़ा पर्दा, अरशद वारसी और डबल रोल. आर यू सीरियस?

कितना सच कहा है ना, बॉलीवुड की भी एक्चुअली यही स्टोरी है। एक कहानी खत्म तो दूजी, मतलब एक फिल्म खत्म होती है तो दूजी आ जाती है, कहानी भी डिफरेंट होती है ना। वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं बॉलीवुड ट्रेगल्स, और अब बात एक ऐसे पेयरिंग की जो नेचुरली क्यूरियोसिटी ना क्रिएट कर ही देती है। अक्षय कुमार के साथ इमेजिन करो सैफ अली खान, ओ हो, सोच के ही मजा आ जाता है ना। दोनों हैवान में साथ नजर आने वाले हैं, जो 11 सितंबर इसी महीने रिलीज होगी वर्ल्ड वाइड। फिल्म को प्रियदर्शन डायरेक्ट कर रहे हैं और कास्ट में बोमन ईरानी, सयामी खेर, श्रेया पिलगोंकर और शारिब हाशमी भी हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात, प्रियदर्शन ने कहा है कि इस फिल्म में वो अक्षय कुमार को एक डार्कर और मोर विलेनियस अवतार में प्रेजेंट कर रहे हैं। मतलब हमेशा तो हम अक्षय कुमार को देखते हैं ना उछलते कूदते या तो एक्शन करते हुए या हमें हंसाते हुए। इमेजिन यहां पर अगर अब वो विलन का किरदार निभा रहे हैं तो ओहो मजा ही आ जाएगा। और अक्षय जो ये सैफ है, इनकी पेयरिंग भी काफी वक्त बाद स्क्रीन पर वापस आ रही है। दोनों की प्रीवियस कोलैबोरेशन आपको अगर याद हो, सो इट वाज टशन 2008 में।

जो आई थी, है ना। फिल्म के सॉन्ग जो थे आपकी रंगीरिया सैफ के कैरेक्टर का एक कंपैरेटिवली कलरफुल और म्यूजिकल साइड भी इस मूवी में सामने आएगा। तो एक तरफ नॉस्टैल्जिया है और दूसरी तरफ कंप्लीटली डिफरेंट कैरेक्टर्स। देखना इंटरेस्टिंग होगा कि ये रीयूनियन स्क्रीन पर क्या लेकर के आ रहा है। आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि बहुत जल्द पूछूंगी वो सवाल जो आपको बना सकता है बॉलीवुड सरताज। सुनते रहिए बॉलीवुड ट्रेल्स विद मी ज्योतिका।

दोस्तों, एक्टर से डायरेक्टर बने कुणाल खेमू अब अपनी नेक्स्ट डायरेक्टोरियल फिल्म वाइब लेकर आ रहे हैं, जो 18 सितंबर को थिएटर्स में रिलीज होने वाली है। कुणाल ने फिल्म को लिखा है, डायरेक्ट किया है और वो खुद भी आपको यहाँ एक्टिंग करते नजर आएंगे। फिल्म में कुणाल के साथ प्रीति जिंटा, स्पर्श श्रीवास्तव और वंशिका धीर जैसे नाम जुड़े हैं, लेकिन यहां पर प्रीति जिंटा को मेंशन करना पर्टिकुलरली इंटरेस्टिंग है, क्योंकि वाइब में वो

एडम एच का कैरेक्टर प्ले कर रही हैं। एक कमांडिंग फिगर हैं जो हार्दिक और बग्स को एक डेंजरस मिशन में लेकर आती हैं। अगर आपने इसका ट्रेलर देखा है तो आई एम प्रिटी श्योर आप इस मूवी का बहुत ज्यादा इंतजार कर रहे होंगे। देखिए, प्रीति को हमने रोमांस, ड्रामा और कॉमेडी में तो बहुत बार देखा है, लेकिन एक्शन उनके लिए कंपैरेटिवली अनएक्सप्लोर्ड टेरिटरी रही है। कुणाल खेमू ने भी ट्रेलर लॉन्च पर कहा कि कास्टिंग के वक्त उन्हें लगा कि ऑडियंस ने प्रीति को एक एक्शन करते हुए पहले कभी नहीं देखा है, और इसी अनएक्सपेक्टेड क्वालिटी ने कास्टिंग को और इंटरेस्टिंग बनाया। प्रीति ने ये भी बताया कि फिल्म के एक्शन सीक्वेंसेस फिजिकली डिमांडिंग थे और उन्होंने इसका क्रेडिट फिल्म की एक्शन टीम को दिया है। तो एक फेमिलियर मच लव्ड फेस को एक बिल्कुल डिफरेंट अंदाज में देखना फैंस के लिए डेफिनेटली स्पेशल होगा। प्रीति जिंटा की वो फेमिलियर स्क्रीन एनर्जी तो है ही, लेकिन इस बार उसके साथ एक्शन और अथॉरिटी का एक नया फ्लेवर भी जुड़ चुका है, और टाइटल भी आपको समझ आया होगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है, वाइब। तो अब बॉलीवुड ट्रेल्स की वाइब को भी थोड़ा अपबीट करते हैं एक प्यारे से गाने के साथ, और इस धुन के उस पार मैं आपसे पूछूंगी वो सवाल जो आपको बनाएगा बॉलीवुड सरताज।

दोस्तों, अब वक्त है आपको ये जानने का कि सिर्फ आप बॉलीवुड सुनने के लिए थोड़ी आए हैं यहाँ पर, है ना। अपनी बॉलीवुड नॉलेज को टेस्ट करने भी तो आए हैं, क्योंकि बॉलीवुड ट्रेल्स में अब बारी है हमारे बॉलीवुड सरताज सवाल की। तो बड़े ही ध्यान से सुनना, आज का सवाल जुड़ा है अरशद वारसी से। इस महीने यानी सितंबर 2026 में उनकी एक फिल्म रिलीज हो रही है, जिसमें वो डबल रोल में नजर आएंगे, दो अलग कैरेक्टर्स लेकिन एक ही चेहरा। और ये फिल्म सितंबर, जी हाँ, जैसे मैंने कहा, इस महीने रिलीज हो रही है। मेरा सिंपल सा सवाल है कि इस फिल्म का क्या नाम है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है मेरा, अगर आपको जवाब पता है तो देर मत कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए अपना करेक्ट आंसर एफएम रेनबो को 9868107070। इस नंबर, क्या है उस फिल्म का नाम जिसमें अरशद वारसी डबल रोल में इस महीने नजर आएंगे। और सही जवाब देने वाले लकी लिसनर को मिलेगा आज का टाइटल, बॉलीवुड सरताज। चलिए देखते हैं बॉलीवुड के असली सरताज कौन है भाई।

0: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
1: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.

वेलकम बैक आफ्टर दिस वेरी स्मॉल ब्रेक. और बॉलीवुड ट्रेल्स का सफर अब यहां से जारी करते हैं. एक ऐसी फिल्म की बात करेंगे जिसकी कॉम्बिनेशन ही काफी इंट्रीगिंग है. करीना कपूर खान और पृथ्वीराज सुकुमारन, और डायरेक्टर है मेघना गुलजार. फिल्म है दायरा, एक इन्वेस्टिगेटिव क्राइम थ्रिलर जो 18 सितंबर को इस महीने वर्ल्ड वाइड थिएटर्स में रिलीज होने के लिए तैयार है. करीना और पृथ्वीराज फिल्म में पुलिस ऑफिसर्स के रोल्स में आपको नजर आएंगे. और ये करीना कपूर खान और पृथ्वीराज सुकुमारन की पहली ऑन ऑन स्क्रीन पेयरिंग भी है. मेघना गुलजार के सिनेमा में जनरली कैरेक्टर्स और सिचुएशंस को काफी लेड ट्रीटमेंट मिलता है, तो एक इन्वेस्टिगेटिव थ्रिलर में इन दोनों को परफॉर्म करते देखना किसी ट्रीट से कम तो नहीं लग रहा है. कभी कभी फिल्म की एक्साइटमेंट सिर्फ स्टोरी से नहीं बल्कि उस क्रिएटिव टीम से भी आती है जो उस कहानी को स्क्रीन तक लेकर आ रही होती है. और दायरा डेफिनेटली उन्हीं फिल्मों में से एक लगती है. बने रहिए सिर्फ यहां बॉलीवुड सरताज के सवाल का जवाब. ओहो हो, बहुत ज्यादा मिल रहा है मुझे.

इस म्यूजिक को सुनते ही लगता है करीना कपूर खान की ये फिल्म एक बार दोबारा देखी जाए। बॉलीवुड में हमेशा ऐसे ही होता है ना। अब एक और फिल्म की आपसे बात करते हैं। फोकलोर इंस्पायर्ड स्टोरीज का स्पेस काफी इंटरेस्टिंग होता जा रहा है और इसी दुनिया में आ रही है द वन, द फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट। फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया लीड रोल्स में आपको नजर आएंगे। ये फिल्म 25 सितंबर, जी हाँ 25 सितंबर इस महीने थिएटर्स में रिलीज होगी। ये आपकी फैंटेसी, एडवेंचर और मिस्ट्री जैसे एलिमेंट्स को एक साथ लेकर आती है। सिद्धार्थ ने अपनी प्रिपरेशन के बारे में ये भी बताया है कि उनके लिए ट्रेनिंग सिर्फ फिट दिखने तक लिमिटेड नहीं थी। कैरेक्टर किस तरह मूव और रिएक्ट करेगा उस फिजिकैलिटी पर भी उन्होंने काम किया है। और उनके मुताबिक जो ये होता है ना फंटास्टिकल फैंटेसी वाला जो वर्ल्ड है, उसके बावजूद कैरेक्टर को बिलीवेबल, जी हाँ आप तक रियलिस्टिक पहुंचाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये फिल्म एक फेमिलियर बॉलीवुड सेटिंग से थोड़ा हटकर हमें लेजेंड्स, मिस्ट्री और फैंटेसी की दुनिया में लेकर जाने के लिए तैयार है। तब तक के लिए सिद्धार्थ मल्होत्रा का कुक्कड़ सिर्फ और सिर्फ आपके लिए।

देखिए कुकर तो कमाल का होता ही है, लेकिन आज जो बॉलीवुड सरताज का सवाल था ना, उसका जवाब भी बड़ा ही कुकर जैसा मिला है मुझे। देखिए आपके आंसर्स आ चुके हैं और क्या कमाल का रिस्पांस रहा है, बहुत सारे लिसनर्स ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। जी हाँ, द करेक्ट आंसर इज जीवन बीमा योजना। सबके नाम लेना तो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल सा हो जाएगा, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगी मैं आप सभी के नाम यहाँ पर शामिल कर सकूं, क्योंकि मैसेजेस की लिस्ट काफी लंबी है, लेकिन कुछ नाम मैं जरूर लेना चाहूंगी। सबसे पहले मैं नाम लेना चाहूंगी तरुण कोहली साहब का, सूरजकुंड से लिखते हैं। योजना सलीम मलिक लिखते हैं हमें यहां से, कान्हा जी लिखते हैं मेरठ, और मेरठ से ये बात कर रहे हैं। सबने सही जवाब दिए हैं। विनर का नाम मैं बस अब थोड़ी देर में लेने वाली हूँ। अरुण सेन ये लिखते हैं मध्य प्रदेश से। पंकज जी लिखते हैं हमें अमरावती महाराष्ट्र से। गुड मॉर्निंग, आपको भी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। विनोद सोनी लिखते हैं हमें मेहना चौक भटिंडा से। और पूजा कोमल हमें हरिनगर नई दिल्ली से सुन रही हैं। इरशाद

हमें लिखते हैं, आप कहाँ से लिखते हैं? हाँ जी, नागौर राजस्थान से। और बहुत सारे मैसेजेस हैं, रमन भी लिखते हैं हमें हरियाणा से। गुड मॉर्निंग मैम, ये वैभव जायसवाल हमें सुन रहे हैं, हमें आपने अपनी जगह नहीं लिखी है यहाँ पे। तनुजा जी हमें महाराष्ट्र से सुन रही हैं। थैंक यू सो मच एवरीबडी, जिन लोगों ने हमें यहाँ पे मैसेजेस दिए हैं, हमसे बातें करी हैं, और अपने यहाँ पर आपने हमें सही जवाब दिया है। द करेक्ट आंसर इज जीवन बीमा योजना एंड द विनर इज निकिता पारिकर। जी हाँ, ये हमें पुणे से लिखती हैं और इन्होंने एकदम सही जवाब दिया है। बहुत बहुत मुबारक हो, आज के बॉलीवुड सरताज का आपने सही सवाल, आपने सही जवाब दिया है। और इसी के साथ आज के बॉलीवुड का ये जो क्वेश्चन था, हम यहीं पे खत्म करते हैं। मैं हूं ज्योतिका और आप सुन रहे हैं बॉलीवुड ट्रेल्स आकाशवाणी FM रेनबो पर। चलिए सेलिब्रेशन का म्यूजिक कंटिन्यू रखते हैं ना फिर।

देखिए फर्स्ट क्लास तो मैं भी हूँ, फर्स्ट क्लास तो आप भी हैं, और मैं चाहती हूँ कि आज का ये जो छुट्टी वाला दिन है, कृष्ण जन्माष्टमी का जो दिन है, आपके लिए एकदम फर्स्ट क्लास रहे। इसी के साथ आज की बॉलीवुड ट्रेल्स की जर्नी को यहीं एक छोटा सा हम पॉज देते हैं। आज हमने देखा कि बॉलीवुड का सितंबर कितने डिफरेंट कलर्स लेकर आ रहा है, और मुझे लगता है कि सिनेमा की सबसे खूबसूरत बात भी यही है, स्टोरीज बदलती रहती हैं, चेहरे बदलते हैं, फिल्म मेकिंग का अंदाज बदलता है, लेकिन फिल्मों के साथ हमारा कनेक्शन कहीं नहीं जाता। कभी एक डायलॉग याद रह जाता है, तो कभी कोई कैरेक्टर, और कभी एक गाना हमारी कोई बहुत ही प्यारी याद बन जाता है। हर फ्राइडे एक नई कहानी, हर फिल्म के साथ एक नई दुनिया, और हर एक गाने के साथ आपकी वो स्पेशल मेमोरी। अब मैं लेना चाहूंगी आपसे इजाजत, मिलूंगी आपसे 1 बजे लेकर के मेरा वाला सॉन्ग, जहां पर होगी आपकी रिक्वेस्ट और उसे प्ले करूंगी मैं। तब तक के लिए मैं ज्योतिका आपसे इजाजत लेती हूँ। नमस्कार, विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश मंच आज से नई दिल्ली में शुरू हो गया। सर्वोच्च न्यायालय इस मंच की मेजबानी कर रहा है। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों और भागीदार देशों के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालयों के न्यायिक प्रमुख और वरिष्ठ न्यायिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत रूस, चीन, मिस्र, इंडोनेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, बेलारूस, कजाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान के न्यायिक प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इन बैठकों में आपसी न्यायिक हित के मुद्दों पर चर्चा होगी और न्यायपालिकाओं के बीच सहयोग मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा। इस दौरान न्याय वितरण, अंतर्राष्ट्रीय विवाद समाधान, प्रौद्योगिकी और सतत विकास जैसे समकालीन मुद्दों पर भी विचार विमर्श होगा। भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में एक और बड़ी सफलता हासिल की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज तड़के श्रीहरिकोटा से जीएसएलवी F-17 रॉकेट के माध्यम से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का सफल प्रक्षेपण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो की इस उपलब्धि पर कहा कि ये राष्ट्र के लिए गर्व का क्षण है। श्री मोदी ने कहा कि ये सफलता भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र की उत्कृष्टता, नवाचार और बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि EOS-05 भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को मजबूत करता है और इसके अंतरिक्ष कार्यक्रम की बढ़ती आधुनिकता को दर्शाता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भी सफल प्रक्षेपण की सराहना की है। इसरो अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा कि ये मिशन भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को और मजबूत करेगा।
1: I am very happy to announce that GSLV.
2: मुझे यह घोषणा करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि GSLV F-17 वाहन ने उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 5 को सफलतापूर्वक और सटीक रूप से उसकी निर्धारित कक्षा में स्थापित कर दिया है। हमने इस प्रक्षेपण वाहन का उपयोग करके एक बार पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 5 के चालू हो जाने के बाद यह भूकक्षा से भारत का पहला समर्पित इमेजिंग उपग्रह बन जाएगा, जो हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण रणनीतिक डेटा प्रदान करेगा।
1: जियो ऑर्बिट प्रोवाइडिंग इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक डेटा फॉर आवर कंट्री।
0: नेपाल और तिब्बत में अचानक आई भीषण बाढ़ से अब तक 1,282 लोगों की मौत हो गई है। नेपाल पुलिस के अनुसार चितवन में सबसे अधिक 359 लोगों की मौत हुई। राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार कल शाम तक 5,053 लोग लापता थे। पीड़ितों की पहचान के लिए नेपाल में डीएनए जांच भी शुरू की गई है। इस बीच भारत ने 2 और विमानों से नेपाल के लिए राहत सामग्री की नई खेप भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल के लिए 21.5 टन राहत सामग्री लेकर 2 C-130J विमान काठमांडू पहुंच गए हैं। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ने कहा है कि जो मतदाता 30 जून से 17 अगस्त के बीच गणना प्रपत्र जमा नहीं कर पाए हैं, वे 30 सितंबर तक फॉर्म 6 और निर्धारित घोषणा पत्र जमा कर सकते हैं। फॉर्म 6 के जरिए अंतिम मतदाता सूची में नाम शामिल कराने का अनुरोध किया जा सकता है। अंतिम मतदाता सूची 4 नवंबर को प्रकाशित होगी। गोवा सरकार कल से गोवा उज्ज्वला योजना शुरू करेगी। योजना के अंतर्गत पात्र घरेलू एलपीजी और पीएनजी उपभोक्ताओं को प्रतिवर्ष 3 घरेलू एलपीजी सिलेंडरों के मूल्य के बराबर वित्तीय सहायता दी जाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने बताया कि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के जरिए 3,000 रुपए सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में डाले जाएंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्यभर में रेस्तरां, मिठाई की दुकानों और अन्य खाद्य प्रतिष्ठानों की जांच के लिए विशेष अभियान शुरू किया है। इसके तहत 13 खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को बंद किया गया है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर सरद्वत मुखोपाध्याय ने बताया कि अभियान के दौरान अब तक कुल 1,730 खाद्य प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की गई है। देश भर में आज जन्माष्टमी का पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है।

0: श्री कृष्ण जन्माष्टमी दे पावन मौके ते भक्ति श्रद्धा अते उत्साह नाल भरपूर एक खास पेशकश लेके आ रहा है आकाशवाणी FM बठिंडा। तुसी सुनोगे प्रोग्राम घर परिवार दे तहत श्री कृष्ण जन्माष्टमी नु समर्पित यह विशेष प्रोग्राम अज दोपहर 12:03। इस प्रोग्राम दे वाचक रहेंगे ममता अरोड़ा अते बलजीत शर्मा, निर्माता निर्देशक बलजीत शर्मा। ता तैयार हो जाओ भगवान श्री कृष्ण दे जन्म उत्सव दियां खुशियां अते भक्ति दे रंग विच रंगन दे लई। सुनना ना भुलना प्रोग्राम घर परिवार दे तहत यह विशेष पेशकश। मन मंदिर में सजे बिहारी
1: मनमोहन तेरी छवि। प्रोग्राम पैगाम दी रिकॉर्डिंग संबंधी सूचना। मिति 6 सितंबर दिन एतवार नु सवेरे 7 बजे सर्जरी सवेर दे तहत प्रसारित कीते जान वाले सिलसिले पैगाम दी रिकॉर्डिंग 4 सितंबर दिन शुक्रवार नु शाम 4 बजे कीती जाएगी। जेकर तुसी भी चाहुंदे हो के तुहाडे पैगाम प्रोग्राम विच शामिल कीते जान तां भेज दियो अपने पैगाम साडे व्हाट्सएप नंबर 7173 73146 ते 4 सितंबर दिन शुक्रवार शाम 4 बजे तो पहला। प्रोग्राम दे मेजबान होंगे विजय लक्ष्मी, निर्माता निर्देशक मनदीप रजौरा।

प्रोग्राम दी वाचक मैं यानी गुरदीप गिल, निर्माता निर्देशक श्री बलजीत शर्मा। सुनना ना भूलना शनिवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम हर अकाल उस्तत।

0: प्रोग्राम कर परिवार दे तहत आओ हुण सुनदिआं श्री कृष्ण जन्माष्टमी नूं समर्पित आकाशवाणी FM बठिंडा दी विशेष पेशकश वाचक ममता अरोड़ा ते बलजीत शर्मा प्रोग्राम दे निर्माता निर्देशक श्री बलजीत शर्मा
1: वसुदेव सुतम देवम कंस चानूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगतगुरु। मैं वासुदेवानंदन जगतगुरु श्री कृष्ण चंद्र जी नूं नमस्कार करदा जिन्हां ने कंस ते चानूर नूं मार दिता सी। देवकी जी का आशीर्वाद। वृंदावनेश्वरी राधा कृष्णो वृंदावनेश्वर जीवनेन धने नित्यम राधा कृष्णन गतिर्मम। श्री राधा राणी वृंदावन दी स्वामनी है अते श्री कृष्ण वृंदावन दे स्वामी। मेरे जीवन दा शौक श्री राधा कृष्ण दे सहायक दे रूप विच होवे। अता सत्यम यतो धर्मो मतो हिरार जवम यतर ततो भवति गोविंदो यथा कृष्ण सततो जय। जिथे सच धर्म लज्जा ते सरलता दा वास है उथे श्री कृष्ण जी निवास करदे ने ते जिथे श्री कृष्ण निवास करदे ने उथे हमेशा विजय हुंदी है। आकाशवाणी FM बठिंडा दे प्यारे सरोतियो आप सब भैणा भरावां ते बच्चियां नू श्री कृष्ण जन्माष्टमी दियां बहुत बहुत मुबारकां। श्री कृष्ण जन्माष्टमी दे दिन आकाशवाणी FM बठिंडा आप दे सन्मुख हाजिर है एक विशेष प्रोग्राम लैके। आज दे दिन मैं बलजीत ते मेरे नाल आकाशवाणी बठिंडा दी कोयल वांग कूक दी मिठी आवाज मैडम ममता जी मेरे नाल स्टूडियो च हाजिर ने। मैडम ममता जी आप जी दा मैं बलजीत अपने वल्लों ते समूह स्रोत्या वल्लों दिल दियां गहराइयां तो स्वागत करदा हां।
2: बलजीत सर बहुत बहुत शुक्रिया मेरे वल्लों तुहानू ते सारे स्रोत्या नू कृष्ण जन्माष्टमी दियां बहुत बहुत मुबारकां।
1: ममता जी आप जी नू ते आप दे सारे घर परिवार बच्चियां बुजुर्गां नू कृष्ण जन्माष्टमी दियां बहुत बहुत मुबारकां। श्री कृष्ण जी दे चरणा अगे अरदास करदे हां कि आप जी दा सारा परिवार बच्चे सारे बुजुर्ग चढ़दी कला च रहन तंदुरुस्त रहन तरक्कियां मानन। ममता जी हुण आपां विषय ते गल करिए ते स्रोतियां दे रूबरू होइए।
2: बिल्कुल लैन्ने आं फिर श्री कृष्ण जी दा आशीर्वाद।

हर देश चाहे कोई भी देश है वो एक रुत्तां ते त्योहारां दा देश है। इन्हां रुत्तां ते त्योहारां नाल कोई ना कोई महत्वपूर्ण घटना जां कोई इतिहासिक पिछोकड़ जरूर जुड़िया हुंदा है। इत्थे एक रुत्त तो बाद दूजी रुत्त ते दूजी तो फिर तीजी जां चौथी रुत्त दे त्योहार आउंदे ने। इन्हां चों त्योहारां दा ज्यादातर संबंध अच्छाई दी बुराई ते जित नाल हुंदा है। इन्हां त्योहारां दा

0: फिर सारी संगत भी इको लै विच आके बिहारी चले आएंगे बिहारी चले आएंगे दा रटन करदे ने। इस तरह ए जन्माष्टमी दा त्योहार हिंदुआं दा एक बहुत ही महत्वपूर्ण अते उत्साह भरिया त्योहार है, जिस नू उत्तरी भारत दे लोक बड़ी श्रद्धा भावना नाल ते उत्साह नाल मनांदे ने। रब करे दुनिया दा हर एक त्योहार हर एक लई खुशियां ते खेड़े लेके आवे।
1: भारतीय सभ्यता दुनिया दियां सब तो प्राचीन सभ्यतावां चों एक है, इसलिए इत्थों दे लोकां दे मनां च देवी देवतियां मिथिहास पुराण कथावां ते अवतारवाद दा विशेष स्थान है। हिंदू धर्म जो भारत दा सब तो वड्डा ते दुनिया दा सब तो पुराना धर्म है, दे पैरोकार अवतारां विच डूंगी श्रद्धा रखदे ने। सिख धर्म दे पवित्र ग्रंथां विच भी हिंदू अवतारां दा खास तौर ते जिक्र आउंदा है। इन्हां अवतारां विच श्री भगवान कृष्ण जी दा उभरवां ते विशेष स्थान है। धर्म दियां मानतावां अनुसार श्री कृष्ण जी भगवान श्री विष्णु दे अवतार ने। लोक श्री कृष्ण जी नूं भगवान वजों पूजदे ने ते उन्हां उत्ते बेहद श्रद्धा रखदे ने। भगवान श्री कृष्ण दे जन्म दिवस उत्ते मनाया जान वाला पावन पूर्व जन्माष्टमी भारत दी भूमि उत्ते मनाया जान वाला अजिहा त्योहार है, जिस नू हुण सिर्फ भारत विच नहीं सगों विदेशां विच भी कई स्थानां उत्ते बड़ी धूमधाम नाल मनाया जांदा है। ए अवतार भगवान विष्णु दे वैवस्वत मनवंत्र दे 28वें द्वापर विच श्री कृष्ण जी दे रूप विच माता देवकी दी कुखों मथुरा दे कारागर विच तारिया गया सी। जदों उन्हां ने अवतार तारिया उदों चारे पासे पाप हो रहे सी, धर्म नाम दी कोई चीज नहीं रह गई सी। धर्म नू मुड़ स्थापित करन लई श्री कृष्ण

अष्टमी तिथि नू रोहिणी नक्षत्र दे अखिल ब्रह्मंडा दे स्वामी भगवान श्री कृष्ण कंस दे बंदी खाने च माता देवकी अते पिता वासुदेव जी तो प्रगट होए। श्रीमद भागवत महापुराण दे दसवें स्कंद च श्री कृष्ण जन्म दा बहुत ही सुंदर वृतांत मिलदा है। पिता वासुदेव जी भगवान श्री कृष्ण जी नू उन्हां दे जन्म दी रात नू नंद भवन च यशोदा मैया दे कोल छड आए ते पुत्री रूप च जन्मी साक्षात मां आदि शक्ति नू ले आए। गोकल ते नंद गांव च भगवान दियां लीलावां भव सागर पार कराउण वालियां ने। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन दे प्रति श्री गीता जी विच

0: ममता जी मेनू लगदा है घड़ी दियां सुइयां आपां नूं आग्या नहीं दे रहियां। हुण आपां अपने स्रोतियां तों लईए आग्या
1: जी बल जी
0: ते ममता जी स्रोतियां नूं फिर मिलन दी आस नाल ते अज दे पवित्र दिहाड़े ते दिन उन्हां दे संपूर्ण परिवार नूं बहुत बहुत मुबारकां दिंदे होए आपां लैने हां आग्या। जय श्री कृष्ण। आलेख ममता ते सतपाल, पेशकश ममता जी ते बलजीत, तकनीकी प्रबंधन इंजीनियर मुखी सरदार मलकी सिंह, विशेष सहयोग समूह, तकनीकी स्टाफ निर्माता।

प्रोग्राम दी वाचक मैं यानी गुरदीप गिल, निर्माता निर्देशक श्री बलजीत शर्मा। सुनना ना भूलना शनिवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम हर अकाल उस्तत।

प्रोग्राम पैगाम दी रिकॉर्डिंग संबंधी सूचना मिति 6 सितंबर दिन एतवार नूं सवेरे 7 बजे सर्जरी सवेर दे तहत प्रसारित कीते जाण वाले सिलसिले पैगाम दी रिकॉर्डिंग 4 सितंबर दिन शुक्रवार नूं शाम 4 बजे कीती जाएगी। जेकर तुसी भी चाहुंदे हो कि तुहाडे पैगाम प्रोग्राम विच शामिल कीते जाण तां भेज दिओ अपने पैगाम साडे व्हाट्सएप नंबर 77173 73146 ते 4 सितंबर दिन शुक्रवार शाम 4 बजे तों पहला प्रोग्राम दे मेजबान होणगे विजय लक्ष्मी, निर्माता निर्देशक मनदीप रजौरा।

0: छोटा वृंदावन वेयर ऑल टेम्पल्स आर डेक्ड अप फॉर मिडनाइट सेलिब्रेशन. फ्लावर पेटल्स एंड कलरफुल लाइट्स आर डेकोरेटेड एवरीवेयर. ऑन दिस ओकेजन मिलियंस ऑफ डिवोटीज आर ऑलरेडी डूइंग दर्शन्स ऑफ लॉर्ड कृष्णा. इन व्यू ऑफ द ह्यूज क्राउड ऑफ डिवोटीज कमिंग फ्रॉम इंडिया एंड अब्रॉड, एक्सटेंसिव सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हैव बीन मेड इन द एंटायर मथुरा सिटी एंड पुलिस आर ऑल्सो गियरिंग देमसेल्फ फॉर ट्रैफिक मैनेजमेंट. फॉर द फर्स्ट टाइम इन मथुरा ऑन जन्माष्टमी टूडे 500 ड्रोन्स विल ब्रिंग लॉर्ड कृष्णा's बर्थ एंड हिज वेरियस पास्ट टाइम्स टू लाइफ इन द स्काई. सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी न्यूज, लखनऊ.
1: The Intermeteorological Department, IMD, has issued an orange warning for heavy to very heavy rainfall over Madhya Pradesh till tomorrow. Heavy rainfall is also expected over Haryana, Chandigarh, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Western Uttar Pradesh, Bihar, Jharkhand and the northeastern part of the country for the day. Heavy rain has once again created flood-like conditions in several parts of Madhya Pradesh. The Met Department has issued a warning for heavy to very heavy rainfall in many districts over the next 48 hours.
2: In Chhatarpur, the Mandakini River has reached close to the danger mark and around 100 people have been moved to safer places. In Mandla, the water level of the Narmada River has risen and the river is in spate. Continuous rain has affected normal life in several districts including Chhatarpur, Satna, Mandla and Mehar. 5 gates of the Bargi Dam in Jabalpur have been opened to release water, while water is also being released from the Kutni Dam in Chhatarpur. The Weather Department has issued an orange alert for very heavy rainfall in several districts including Shivpuri, Guna, Chhatarpur, Sagar, Damo and Narmadapuram. Heavy rain is likely to continue in many parts of the state over the next 2 days. Abhinav Goyal, Akashwani News, Bhopal.
1: 10 major rivers including the Ganga, Punpun, Gandak and Kosi are in spate in Bihar. Flood conditions prevail in 16 districts of the state.
3: In Bihar, 8 rivers including the Ganga are flowing above the danger mark. The water level of the Ganga in Patna continues to rise. With increasing backwater pressure in the Punpun and Dardha rivers, surveillance of the protective embankments has been intensified. Instructions have been issued to keep all 108 gates of the Patna flood protection wall closed. Floodwaters are rapidly spreading into low-lying areas of the affected districts, disrupting road connectivity in rural areas. Breaches in embankments at Asthava in Nalanda district and Dhanrua in Patna district have submerged hundreds of acres of crops. In view of the rising water levels of the rivers, the Disaster Management Department has directed Patna and 7 other districts to remain on high alert. In view of the seriousness of the situation, Chief Minister Samrat Chaudhary will conduct an aerial survey of the flood affected areas today. Savita Parikh, Akashwani News, Patna.
1: At the China Masters Badminton, the Indian pair of Sattvik Sairaj, Ranki Reddy and Chirag Shetty will take on Danish pair of Kemah Stroop and Anders Karup Rasmussen this evening for a place in the semi-finals in Shenzhen, China. The match is estimated to begin at 4:10 p.m. IST. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Country gets first sub-geosynchronized Earth observation satellite. Prime Minister Narendra Modi says successful launch reflects growing capabilities of India's space sector. BRICS Chief Justices Forum begins in New Delhi to deliberate upon contemporary issues concerning justice delivery and dispute resolution. Center to make available DNA profiling services for first-degree relatives of missing persons in Nepal. Death toll due to devastating floods rises to 1,282. Festival of Janmashtami being celebrated across the country. IMD predicts heavy to very heavy rainfall over Madhya Pradesh till tomorrow. With that, we end the midday news.
4: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा. देश के पहले पृथ्वी अवलोकन उपग्रह का सफल प्रक्षेपण. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा यह सफलता भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है. न्याय व्यवस्था और विवाद समाधान से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीशों का मंच नई दिल्ली में शुरू. सरकार नेपाल में लापता व्यक्तियों के निकटतम परिजनों के लिए डीएनए प्रोफाइलिंग सेवाएं उपलब्ध कराएगी. बाढ़ से मरने वालों की संख्या 1,282 हुई. श्री कृष्ण जन्माष्टमी आज देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। मध्य प्रदेश में कल तक मूसलाधार बारिश का अनुमान और चाइना ओपन बैडमिंटन में भारतीय जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का मुकाबला आज शाम क्वार्टर फाइनल में डेनमार्क की जोड़ी से होगा। अब समाचार विस्तार से। भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में एक और बड़ी सफलता हासिल की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज तड़के श्री हरिकोटा से जीएसएलवी F-17 रॉकेट के माध्यम से देश के पहले पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का सफल प्रक्षेपण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो की इस उपलब्धि पर कहा कि ये राष्ट्र के लिए गर्व का क्षण है। श्री मोदी ने कहा कि ये सफलता भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र की उत्कृष्टता, नवाचार और बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि EOS-05 भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को मजबूत करता है और इसके अंतरिक्ष कार्यक्रम की बढ़ती आधुनिकता को भी दर्शाता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसके सफल प्रक्षेपण की सराहना की है। इसरो अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा कि ये मिशन भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को और मजबूत करेगा।
5: I am very happy to announce that GSLV.
6: मुझे यह घोषणा करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि GSLV F-17 वाहन ने उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 5 को सफलतापूर्वक और सटीक रूप से उसकी निर्धारित कक्षा में स्थापित कर दिया है। हमने इस प्रक्षेपण वाहन का उपयोग करके एक बार पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 5 के चालू हो जाने के बाद यह भू कक्षा से भारत का पहला समर्पित इमेजिंग उपग्रह बन जाएगा, जो हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण रणनीतिक डेटा प्रदान करेगा।
4: ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश मंच आज से नई दिल्ली में शुरू हो गया। सर्वोच्च न्यायालय इस मंच की मेजबानी कर रहा है। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों और भागीदार देशों के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालयों के न्यायिक प्रमुख और वरिष्ठ न्यायिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। एक रिपोर्ट।
7: भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत रूस, चीन, मिस्र, इंडोनेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, बेलारूस, कजाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान के न्यायिक प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इन बैठकों में आपसी न्यायिक हित के मुद्दों पर चर्चा होगी और न्यायपालिकाओं के बीच सहयोग को मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा। इस दौरान न्याय वितरण, अंतर्राष्ट्रीय विवाद समाधान, प्रौद्योगिकी और सतत विकास जैसे समकालीन मुद्दों पर भी विचार विमर्श होगा। इस दौरान प्रतिनिधियों को अनुभव और विचारों के आदान प्रदान का भी अवसर मिलेगा। यह 3 दिवसीय मंच न्याय व्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय विवाद समाधान, प्रौद्योगिकी और सतत विकास जैसे मुद्दों पर चर्चा का अवसर देगा। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को इटली में युद्ध बाद के इतिहास में सबसे लंबे समय तक लगातार प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये उपलब्धि उनके नेतृत्व में इटली के लोगों के भरोसे और विश्वास को दर्शाती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी दोस्ती ने भारत इटली रणनीतिक भागीदारी को मजबूत करने में मुख्य भूमिका निभाई है। श्री मोदी ने कहा कि वे दोनों देशों के लोगों के लिए एक समृद्ध भविष्य बनाने के लिए करीबी सहयोग जारी रखने को लेकर उत्साहित हैं। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
8: अपडेट रहे, आगे रहे, X@AIR News हिंदी और इंस्टाग्राम पर AIR News अलर्ट्स को फॉलो करें।
4: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। नेपाल और तिब्बत में अचानक आई विनाशकारी बाढ़ से अब तक 1,282 लोगों की मृत्यु हो गई है। नेपाल पुलिस के अनुसार चितवन में सबसे अधिक 359 लोगों की मौत हुई। एक रिपोर्ट।
9: नवलपरासी पूर्व में 218, नवलपरासी पश्चिम में 208, नुआकोट में 185, रसुआ में 140, गोरखा में 72, थाडिंग में 60 और तनहू में 38 लोगों की मृत्यु हुई है। काठमांडू के अस्पतालों में 2 और लोगों की मौत हुई। राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार कल शाम तक 5,053 लोग लापता थे। पीड़ितों की पहचान के लिए नेपाल में DNA जांच भी शुरू कर दी गई है। इस बीच एक बचाव अभियान में त्रिशूली नई एजल विद्युत परियोजना की सुरंग से दो लोगों को जीवित बचाया गया। ये लोग फोटे कोशी नदी में आई अचानक बाढ़ के बाद 10 दिनों से सुरंग में फंसे हुए थे। आपातकालीन दल ने अब तक 12,000 से अधिक लोगों को बचाया है। 26 अगस्त को नेपाल तिब्बत सीमा के पास बर्फ और चट्टानों के हिमस्खलन के कारण अचानक बाढ़ आई थी। इससे उत्तरी और मध्य नेपाल के कई कस्बों और गाँवों में भारी तबाही हुई। समाचार कक्ष से

0: अनीशा खन्ना।
1: इस बीच भारत ने दो और विमानों से नेपाल के लिए राहत सामग्री की नई खेप भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल के लिए 21.5 टन राहत सामग्री लेकर दो C-130J विमान काठमांडू पहुंच गए हैं। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ने कहा है कि जो मतदाता 30 जून से 17 अगस्त के बीच गणना प्रपत्र जमा नहीं कर पाए हैं, वे 30 सितंबर तक फॉर्म 6 और निर्धारित घोषणा पत्र जमा कर सकते हैं। फॉर्म 6 के जरिए अंतिम मतदाता सूची में नाम शामिल कराने का अनुरोध किया जा सकता है। अंतिम मतदाता सूची 4 नवंबर को प्रकाशित होगी। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने देशव्यापी अभियान के दौरान 3,800 से अधिक बच्चों को बाल श्रम से मुक्त कराया है। अभियान के दौरान 572 क्षमा करें कृपया इसको दोबारा सुन लें अभियान के दौरान 575 से अधिक प्राथमिकी भी दर्ज की गई। महिला और बाल विकास मंत्रालय के अनुसार ये अभियान 12 जून से 31 अगस्त तक चलाया गया। आयोग ने राज्य सरकारों, पुलिस और अन्य संबंधित एजेंसियों के साथ मिलकर बच्चों के बचाव और पुनर्वास के लिए काम किया, साथ ही बाल श्रम के खिलाफ जागरूकता अभियान भी चलाया गया। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य भर में रेस्तरां, मिठाई की दुकानों और अन्य खाद्य प्रतिष्ठानों की जांच के लिए विशेष अभियान शुरू किया है। इसके अंतर्गत 13 खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को बंद किया गया। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर सरदवत मुखोपाध्याय ने बताया कि अभियान के तहत अब तक कुल 1,730 खाद्य प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की गई है। गोवा सरकार कल से गोवा उज्ज्वला योजना शुरू करेगी। योजना के अंतर्गत पात्र घरेलू एलपीजी और पीएनजी उपभोक्ताओं को प्रतिवर्ष 3 घरेलू एलपीजी सिलेंडरों के मूल्य के बराबर वित्तीय सहायता दी जाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने बताया कि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के जरिए ₹3,000 सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में डाले जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव जन्माष्टमी आज देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उत्तर प्रदेश में भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा वृंदावन में जन्माष्टमी का भव्य आयोजन किया जा रहा है।
2: आज भगवान कृष्ण का जन्मदिन है और शानदार जन्मोत्सव की तैयारी पूरे शहर में हो रही है। समूचे ब्रजमंडल समेत प्रदेश भर में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव बड़ी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। भगवान कृष्ण की जन्मभूमि को दुल्हन की तरह सजाया गया है और हर तरफ रंग बिरंगी रोशनी की छटा बिखरी हुई है। इस अवसर पर लाखों श्रद्धालु भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर अभिभूत हो रहे हैं। यहाँ के प्रमुख मंदिर मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि, द्वारिकाधीश मंदिर, वृंदावन के विश्व प्रसिद्ध ठाकुर बिहारी जी मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की जबरदस्त तैयारियां हैं, जहां रात में जन्मोत्सव मनाया जाएगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: गुजरात में भी धूमधाम से जन्माष्टमी पर्व मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने देशवासियों को इस अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं और संदेश से भारतीय संस्कृति और दर्शन में जीवंतता आती है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भगवान कृष्ण का जीवन और संदेश मानवता को सत्य, धर्म, कर्तव्य और सदाचार के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि मानवता का निरंतर मार्गदर्शन करने वाले भगवान श्री कृष्ण के दिव्य संदेशों में निस्वार्थ कर्म की प्रेरणा निहित है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR हिंदी न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में तेज बारिश से फिर बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे में कई जिलों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। एक रिपोर्ट।
3: चित्रकूट में मंदाकिनी नदी खतरे के निशान के करीब पहुंच गई है और करीब 100 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। मंडला में नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ने से नदी उफान पर है। छतरपुर, सतना, मंडला और मेहर सहित कई जिलों में लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने आज शिवपुरी, गुना, छतरपुर, सागर, दमोह और नर्मदापुरम सहित कई जिलों के लिए अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: बिहार में गंगा, पुनपुन, गंडक और कोसी समेत कई प्रमुख नदियां उफान पर हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राज्य के 16 जिलों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है।
4: बिहार में

0: गंगा समेत 8 नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। पटना में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। पटना सुरक्षा दीवार के सभी 108 गेट बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। प्रभावित जिलों के निचले इलाकों में बाढ़ का पानी तेजी से फैल रहा है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन प्रभावित हुआ है। नालंदा के अस्थावा और पटना के धनरुआ में तटबंध टूटने से सैकड़ों एकड़ फसल जलमग्न हो गई है। नदियों के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग ने पटना समेत 8 जिलों में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
1: इस बीच मौसम विभाग ने हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पूर्वोत्तर में भी आज तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, राजस्थान, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कल तक आंधी तूफान और बिजली चमकने की स्थिति बनी रहेगी। दिल्ली में कुछ स्थानों पर आज रात हल्की बारिश के साथ आंधी तूफान और बिजली चमकने का अनुमान है। चीन के शेंजन में चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज क्वार्टर फाइनल में भारतीय जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का मुकाबला डेनमार्क के किम एस्ट्रुप और एंडर्स स्कारूप रास्मुसेन से होगा। मैच भारतीय समयानुसार लगभग शाम 4 बजे शुरू होगा। सात्विक और चिराग ने कल फ्रांस के टोमा जूनियर पोपोव और क्रिस्टो पोपोव को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई थी। वहीं पुरुष सिंगल्स में क्वार्टर फाइनल में हांगकांग के ली चेक यू से हार के साथ ही किदांबी श्रीकांत की चुनौती समाप्त हो गई। महिला सिंगल्स में भी भारत की चुनौती कल समाप्त हो गई। तन्वी शर्मा को जापान की तोमोका मियाजाकी से हार का सामना करना पड़ा। वियतनाम में जारी पिकल बॉल विश्व कप की टीम स्पर्धा में भारत ने शानदार प्रदर्शन किया है। भारत ने एंटीगुआ और बारबुडा, इजराइल और चेक गणराज्य को हराया। टूर्नामेंट 6 सितंबर तक चलेगा। विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो एएआईबी ने एयर इंडिया की फुकेत दिल्ली उड़ान से जुड़ी शुरुआती रिपोर्ट जारी कर दी है। दिल्ली आ रही इस उड़ान को रास्ते में टर्बुलेंस का सामना करना पड़ा था, जिसमें कुछ यात्रियों को चोटें आई थीं। रिपोर्ट के अनुसार उड़ान के दोनों क्रू सदस्यों का साइको एक्टिव पदार्थों की जांच की गई। पायलट इन कमांड का प्रारंभिक नमूना नॉन नेगेटिव पाया गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि तकनीकी और अन्य पहलुओं पर विस्तृत जांच चल रही है। एयर इंडिया ने जांच में पूरा सहयोग देने की बात कही है। एयरलाइन ने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। नियमों के किसी भी उल्लंघन के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाती है और जरूरत पड़ने पर उचित कार्रवाई भी की जाती है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक आज दोपहर में तेजी के साथ कारोबार कर रहे थे। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 526 अंक के उछाल से 76,680, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 64 अंक बढ़कर 23,938 पर कारोबार कर रहा था। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश के पहले पृथ्वी अवलोकन उपग्रह का सफल प्रक्षेपण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ये सफलता भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। न्याय व्यवस्था और विवाद समाधान से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीशों का मंच नई दिल्ली में शुरू। सरकार नेपाल में लापता व्यक्तियों के निकटतम परिजनों के लिए डीएनए प्रोफाइलिंग सेवाएं उपलब्ध कराएगी। बाढ़ से मरने वालों की संख्या 1,282 हुई। श्री कृष्ण जन्माष्टमी आज देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। मध्य प्रदेश में कल तक मूसलाधार बारिश का अनुमान। और चाइना ओपन बैडमिंटन में भारतीय जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का मुकाबला आज शाम क्वार्टर फाइनल में डेनमार्क की जोड़ी से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ। ਐਫਐਮ ਬੈਂਡ 101.1 ਮੈਗਾਹਰਟਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਐਪ ਨਿਊਜ਼ ਔਨ AIR ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਐਫਐਮ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ। ਸਟੂਡੀਓ ਦੀ ਘੜੀ ਤੇ ਸਮਾਂ 2:30 ਤੇ 31 ਸਕਿੰਟ ਤੇ ਹੁਣ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਰੀਲੀ ਦੁਪਹਿਰ।

प्रोग्राम पैगाम दी रिकॉर्डिंग संबंधी सूचना मिती 6 सितंबर दिन एतवार नूं सवेरे 7 बजे सर्जरी सवेर दे तहत प्रसारित कीते जाण वाले सिलसिले पैगाम दी रिकॉर्डिंग 4 सितंबर दिन शुक्रवार नूं शाम 4 बजे कीती जाएगी। जेकर तुसी भी चाहुंदे हो कि तुहाडे पैगाम प्रोग्राम विच शामिल कीते जाण तां भेज दिओ अपने पैगाम साडे व्हाट्सएप नंबर 77173 73146 ते 4 सितंबर दिन शुक्रवार शाम 4 बजे तों पहला प्रोग्राम दे मेजबान होणगे विजय लक्ष्मी, निर्माता निर्देशक मनदीप रजौरा।

0: आज का ये सफर आपने तय किया अपनी दोस्त मंदाकिनी जोशी के साथ।
1: यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम। हेलो सहेली, बस कुछ ही पलों में।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: सखियों के दिल की जुबान। हेलो सहेली।

0: सखियों सहेलियों नमस्कार, हम आ गए आपका मनपसंद कार्यक्रम लेकर। हेलो सहेली, मैं हूँ आपकी अपनी सहेली सोनाली पाठक। इंतजार कर रही हूँ आपके फोन कॉल का। मेरा इंतजार हुआ खत्म, ये आ गया पहला फोन कॉल। हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली।
0: बताइए हमारी कौन सी सहेली ने फोन लगाया है
1: हम नीता मिश्रा बोल रहे हैं
0: जी। कहाँ से फोन लगाया आपने
1: जी। हम रहते थे लखीमपुर खीरी में, लेकिन इस समय अपने भाई के यहाँ आए हैं, शाहजहां के पास में ही है।
0: भाई के यहाँ आए हैं, रक्षाबंधन मनाने आए
1: जी
0: हैं आप
1: जी जी
0: जी। बताइए नीता जी, अपने बारे में बताइए।
1: हमारे 6 भाई हैं, तो वही बात, सभी भाई तो पहुंच नहीं सकते हमारे घर, इसलिए हम यहाँ पर आया था कि सारे भाइयों के राखी बन जाती है, रिचना हो जाता है,
0: अरे वाह,
1: इसलिए ज्यादातर हम ही आते हैं यहाँ।
0: क्या बात है, ये बहुत अच्छे हैं। आपके जीवन में अभी
1: हाँ
0: खुशियों के दिन आ रहे हैं, जब हम भाई के घर जाके रक्षाबंधन मना रहे हैं, तो इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है। और आज आपका पहला फोन कॉल भी लग गया है, तो इसमें यानी सोने पे सुहागा हो गया है ना।
1: जी,
0: अपने बारे में बताइए
1: मैं हाउस वाइफ हूँ,
0: जी।
1: मेरे हस्बैंड हैं, मेरे ससुर हैं हम,
0: जी
1: और मेरी ननद है, उनकी शादी हो चुकी है। फिलहाल हम 3 लोग रहते हैं घर पे।
0: जी और बताइए आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं।
1: हम सुनना चाहते हैं काजल फिल्म का गाना है, मेरे भैया मेरी चंदा मेरे अनमोल रतन।
0: चलिए सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली, बताइए
1: हेलो सहेली, बड़ोदा
0: हमारी कौन सी सहेली ने फोन लगाया है?
1: से शारदा बेन नागरेचा ने। हाँ,
0: बड़ौदा से शारदा बेन बात कर रही है। बताइए
1: बहुत
0: शारदा बेन, आप क्या करती हैं?
1: सारी एक्टिविटी करती हूँ, गाना गाती हूँ, म्यूजिक का बहुत शौक है, रसोई का, और एक्टिविटी में फ्लावर बनाती हूँ, तेज
0: अरे वाह वाह।
1: पत्ते में से, पिस्ता में से, और जो
0: यानी
1: आचार के गुंदे आते हैं ना, गुंदा आता ना, वो भी ईसा वाला त्रोफान, लीला नारियल आता है ना, लीला नारियल ऊपर वाला ईसा,
0: जी
1: उसका फ्लावर बनाता है, उसमें कलर पुरते हैं।
0: वाह वाह वाह। यानी जो हम लोग जो इस्तेमाल करके जो बची हुई चीजें होती है जिसे हम फेंकते हैं, उन्हें आप
1: हाँ
0: फेंकती नहीं है, उन चीजों से सुंदर सुंदर आप फ्लावर पॉट बनाती हैं, फूल बनाती हैं, है ना?
1: और होलसेल मैडम राखी आते हैं, राखी के सब सामान मैं रख देती हूँ, इसका भी मैं इस्तेमाल करती हूँ।
0: क्या बात है, ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी आदत है आपकी कि
1: हाँ
0: जिन
1: हाँ हाँ
0: चीजों से हम कुछ और भी क्रिएटिव कर सकते हैं वो आप कर रही हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। और
1: गाना गाना भजन कीर्तन सब आता है मैडम।
0: जी, तो कुछ गाकर सुनाइए।

0: हो रे।
1: क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर आपकी आवाज है और इतनी सुर में आप गाती हैं, तो ऐसे ही गाते गुनगुनाते रहिए। और आप जो क्रिएटिव काम करती है ना, वो भी करती रहिए, व्यस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। चलिए बताइए,
0: नन्हे
1: कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
0: मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है। हाँ
1: बहुत सुंदर गाना आपने चुना है, सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली
0: बताइए हमारी कौन सी सहेली ने फोन लगाया है?
1: जी, मैं उत्तर प्रदेश अलीगढ़ से बोल रही हूँ, शहनाज अख्तर।
0: शहनाज जी नमस्ते, क्या हाल चाल है?
1: बस बहुत बढ़िया है।
0: और बताइए आप क्या करती हैं?
1: होम गृहिणी हूँ, घर पर ही रहती हूँ।
0: जी
1: 3 बच्चे हैं मेरे, 2 बेटी है, एक बेटा है।
0: अच्छा, तो ये बताइए कि
1: जी
0: घर में छोटे छोटे बच्चे हैं आपके, तो हर साल हम 1 सितंबर से 7 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण
1: जी
0: सप्ताह मनाते हैं, तो पोषण को लेकर आपके जीवन में क्या महत्व है, यानी कि आप बच्चों को पोषक भोजन किस तरह से देती है, जरा बताइए ना।
1: बच्चों को सुबह में जैसे हलवा नाश्ते में और जूस वगैरह।
0: ये आप बहुत अच्छी बात बताई आपने।
1: पोषण को लेकर मैं यही कहना चाहती हूँ मैडम कि पोषण हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही जरूरी चीज है, क्योंकि जिंदगी में जान है तो जहान है, तो हम अपने स्वास्थ्य का हम खुद ही ध्यान रख सकते हैं।
0: बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। और बताइए कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं आज?
1: जी मैं मैडम, अगर जिंदगी हो तेरे संग हो, खास करके मैं अपने हस्बैंड के लिए डेडिकेट करना चाहती हूँ।
0: क्या बात है, अपने पति के लिए ये गाना समर्पित है, तो सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं। कार्यक्रम है हेलो सहेली। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली जी, नमस्ते।
0: नमस्ते, बताइए हमारी कौन सी सहेली ने फोन लगाया है?
1: जी मैं रंजना कुमारी, बिहार शरीफ मगरा, मेरा गांव का नाम हुआ। जी मैं नालंदा जिला से बात कर रही हूँ।
0: क्या बात है, बताइए रंजना जी आप क्या करती हैं?

0: मैं हाउसवाइफ हूँ
1: जी, ऐसा होता है ना कि सावन भादो का महीना जैसे ही आता है तो हमारे जीवन में उमंग और उत्साह के दिन आने लगते हैं, क्योंकि बहुत सारे त्योहार होते हैं, त्योहारों में बहुत सारी मिठाइयाँ बनती हैं। तो आप कौन सी मिठाइयाँ बनाती हैं?
0: जी, हम लोग के यहाँ ये घर में ही ठकुरबाड़ी बना हुआ, कृष्ण भगवान का ये मंदिर बना हुआ है घर में,
1: जी।
0: तो उसमें हम लोग का 56 भोग लगता है। उसमें से कुछ बाहर से मिठाइयाँ आती है दुकान से, कुछ घर में भी जैसे हलवा वगैरह होता है, मूंग का हलवा, उड़द का हलवा, वही लगता है भगवान में भोग में जन्माष्टमी के दिन में। तो उस दिन भी हम लोग के यहाँ बहुत उत्साह होगा, पूरे घर सब मिल के जन्माष्टमी मनाते हैं हम लोग।
1: तो आजकल ऐसे हो रहा है कि लोग अपनी स्वास्थ्य को लेकर जागरूक हो रहे हैं, चीनी का कम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप ऐसा कुछ करती हैं कि चीनी के बजाय उसमें गुड़ का इस्तेमाल करना है?
0: जी जी हम लोग के हलवा में तो गुड़ ही पड़ता है, चीनी कम गुड़, और ये हम लोग मीठा बोलते हैं, गुड़ से पहले मीठा बनता है
1: जी।
0: जी। जो गन्ने का रस जब निकलता है ना, तो पहले मीठा बनता है,
1: ओहो
0: उसके बाद गुड़ गुड़ बनता है। तो वो जो मीठा है वो ज्यादा यूज करते हैं हम लोग मीठा।
1: जी, तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप इन्हें अपने स्वास्थ्य को लेकर बहुत जागरूक है और पूरे परिवार का ध्यान रख रही है। आपसे बात
0: जी
1: करके बहुत अच्छा लगा। बताइए आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
0: ये छोटी बहू फिल्म का गाना है, कन्हैया तू किसको कहेगा मैया।
1: जी, सुनवाते हैं आपके पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली, बताइए
1: हेलो सहेली,
0: हमारी कौन सी सहेली ने फोन लगाया है?
1: मैं रुचि भट्ट बोल रही हूँ, इंदौर से, मध्य प्रदेश से। नमस्ते।
0: जी रुचि जी, नमस्ते। बताइए अपने बारे में बताइए।
1: मैं इंदौर से रहती हूँ, जैसे कि मैंने आपको भी बताया। और मैं पहले बिजनेस में हुआ करती थी, मल्टी लेवल मार्केटिंग टाइम बिजनेस में, और अभी कुछ सालों से लाइफ एंजॉय कर रही हूँ।
0: जी, यानी
1: लाइफ
0: जिंदगी का लुत्फ उठा
1: ठीक
0: रही है।
1: है, बिल्कुल बिल्कुल।
0: जी देखिए, इंदौर की जब भी बात चलती है तो खान पान आंखों के सामने आ जाता है, तो किस तरह के खाने आप एंजॉय करती हैं या बनाती हैं घर में?
1: इंदौर के पानी में ही स्वाद है ऐसा कहा जाता है, और मुझे भी, जैसे मैं रह रही हूँ और यहाँ के खाने का लुत्फ उठा रही हूँ, तो वाकई स्वाद है। और चाहे वो आप चाट पकौड़ी ले लें, या किसी भी किस्म का स्वाद आप लें, चाहे आप सदर में भुट्टे का किस खाने चले जाएं, या हर तरीके के खान पान में स्वाद है।
0: जी, और अभी यानी हम राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मना रहे हैं 1 से 7 सितंबर तक, तो पोषण को आप
1: जी,
0: कितना महत्व देती हैं?
1: मेरी समझ से पोषण, मेरे जैसे शरीर के लिए पोषण का काम जो खान पान से मिलता है, उसको मैं चाहूंगी कि मैं इंदौर के खान पान से जोड़ूं। यहाँ पे जैसा कि आपने पूछा कि चलन क्या है खाने का, तो अभी चलन भी बदल रहा है, मिलेट्स को ज्यादा शामिल किया जा रहा है, चाहे वो चाट पकौड़ी हो या किसी भी टाइप की रेसिपीज हो उसमें, क्योंकि हेल्थ कॉन्शियस है यहाँ के लोग, इसलिए उस चीज के ऊपर भी फोकस बढ़ रहा है और लोगों का खानपान भी बदल रहा है उसी के हिसाब से।
0: जी, मिलेट्स को बहुत महत्व देना चाहिए, कि जैसे ज्वार का आटा है, फिर बाजरा है, फिर यानी मैदे को हमें अवॉइड करना है और मिलेट्स को महत्व देना है। साथ ही इंदौर की एक और खासियत है स्वच्छता, साफ सफाई। तो ये क्या संदेश आप लोगों को देना चाहेंगी साफ सफाई को लेकर?
1: मेरी तरफ से एक ही, अगर घर से शुरुआत करेंगे, गीला कचरा, सूखा कचरा और की शुरुआत से आदत डालेंगे, तो हर घर और हर शहर इंदौर जैसा ही स्वच्छ बन सकता है, और हम कर सकते हैं। शुरुआत हमें घर से ही करनी है।
0: ये बात आपने बहुत सही कही, और घर से तो हम लोग शुरुआत करते हैं, पर सार्वजनिक स्थल पर जाकर हम थोड़े से ना लापरवाह हो जाते हैं, इधर उधर चीजें फेंकने लगते हैं।
1: जब हम सार्वजनिक स्तर पर बात करते हैं, तो वहाँ पे सेल्फ डिसिप्लिन होना ज्यादा जरूरी लगता है मुझे। और सेल्फ डिसिप्लिन एक माँ, एक लेडी का एक बहुत बड़ा रोल होता है। वो खुद सेल्फ डिसिप्लिन रहेगी तो उसकी फैमिली भी सेल्फ डिसिप्लिन रहेगी, और एक एक अच्छा सोसाइटी और एक अच्छा साफ सुथरा शहर हम हर जगह, हर पूरे देश में बना सकते हैं।
0: जी, यानी कि बच्चों के संग जब हम बाहर जाते हैं तो बच्चों को इस तरह की आदत लगाएं कि बस चॉकलेट खाया के रैपर नहीं फेंकना है, उसे हमें डस्टबिन में ही डालना है। तो बच्चे अगर बचपन से इन आदतों को अपनाते हैं तो बड़े होके एक बहुत अच्छे नागरिक बन सकते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही बोला आपने।
0: जी बताइए रुचि जी, आज कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: मैं कारवां फिल्म का पिया तू अब तो आ जा।
0: तो सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: モニーボ
1: ール。वो आ गया, देखो, देखो वो आ गया।

0: ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं। कार्यक्रम है हेलो सहेली। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, नमस्ते।
0: नमस्ते, बताइए हमारी कौन सी सहेली ने फोन लगाया है?
1: मैं सुचित्रा पंडित हूँ, उज्जैन से बात कर रही हूँ, उज्जैन मध्य प्रदेश।
0: जी सुचित्रा जी, बताइए क्या करती हैं आप?
1: मैं संगीत की कक्षाएं भी लेती हूँ, जॉब भी किया हुआ है।

0: अभी मेरी उम्र 69 है और बचपन से ही विविध भारती सुन रहे हैं।
1: क्या बात है,
0: मेरे यहाँ रोज दिन भर रेडियो चलता रहता है।
1: क्या बात है। और आपने जैसे बताया कि आपकी उम्र 69 साल की है, पर आपकी आवाज से ऐसा लगता है कि कोई 20-25 साल की युवती हमसे बात कर रही
0: बहुत
1: है।
0: बहुत अच्छा लग रहा है, तो कॉम्प्लीमेंट है मेरे लिए मैडम।
1: नहीं, और आपने कहा है कि आप संगीत की शिक्षा देती हैं, तो कुछ सुनाइए आप।
0: 13

0: बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत
1: सडनली तो याद आ गया वो गा दिया मैडम, कोई पहले से तैयारी नहीं थी
0: नहीं नहीं बहुत सुंदर आपकी
1: जी
0: आवाज भी है और बहुत सुर में गाती हैं आप। और जैसे
1: जी
0: आपने कहा कि आप
1: धन्यवाद
0: संगीत की शिक्षा देती हैं, तो
1: जी जी
0: किस उम्र के बच्चे आपसे शिक्षा लेते हैं, ने कुछ ग्रहण?
1: मैं प्रायः जो दूसरी पास हो ऐसे बच्चों से शुरू करती हूँ, ताकि वो थोड़ा कम, जिनको अक्षर ज्ञान हो तब से शुरू करती हूँ। अक्सर बचपन से ऐसा लगता है लोगों को कि छोटेपन से एकदम से बहुत बड़े कुछ गायक बन जाए, वो संभव नहीं है। धीरे धीरे ये सारी चीजें बच्चों में आती हैं, पहले उनका अपने को रुचि किस चीज में है ये देखना बहुत जरूरी रहता है। आजकल क्या हो गया, ये रियलिटी शोज के कारण ना हर पेरेंट को लगता है कि हमारा बच्चा एकदम स्टेज पे जाके और गाने लगे। कुछ चीजें तो जैसे बोलते हैं ना, इनहेरेंट होती हैं, आपके अंदर वो ताल और सुर होना चाहिए, तभी वो उभर के बाहर आ सकता है
0: और आप रियाज के
1: ऐसा।
0: माध्यम से, अपनी शिक्षा के माध्यम से बच्चों को तराशते हैं।
1: जी।
0: ये आपने बहुत सही बात कही है, ये एक संदेश है। और संगीत को
1: हाँ
0: लेकर आप छोटे बच्चों को या पेरेंट्स को क्या संदेश देना चाहेंगी?
1: हाँ यही देना चाहूंगी मैं, क्योंकि पहले ना उनकी रुचि किस चीज में है वो देखिए पहले आप। जबरदस्ती अगर किसी को ड्राइंग में रुचि है तो उसे ड्राइंग करवाइए, उसे अगर किसी संगीत में रुचि है तो कराइए, या उसे स्पोर्ट्स में कोई रुचि है तो वो स्पोर्ट्स उसे करवाना चाहिए। मतलब आपकी इच्छा है कि वो अच्छा गायक बन जाए तो वो संभव नहीं है, उसमें वो चीज अंदर होनी भी चाहिए ना, ईश्वर प्रदत्त भी कुछ चीजें होती है।
0: पेरेंट्स को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारी इच्छाएं बच्चों पर लादना नहीं चाहिए।
1: हाँ थोड़ा धैर्य रखना पड़ता है, उसके लिए बहुत साधना करनी पड़ती है, तभी बच्चा आगे जाकर के कुछ कर सकता है। तो दौड़ में हम ना दौड़े, वास्तव में अगर कलाकार बनाना है तो उसके साथ धैर्य, साधना, ईश्वर कृपा, ये सारी चीजें बहुत मायने रखती हैं ऐसा मुझे लगता है
0: जी, बहुत अच्छा संदेश आपने दिया। और
1: जी।
0: बताइए कौन सा गीत आज आप सुनना चाहती हैं?
1: बंदिनी का अब के बरस भेजो भैया को बाबुल, अभी सावन भी है
0: जी
1: और बहुत ही प्यारा, आशा जी ने बहुत अच्छा गाया है वो गीत, वो बहुत मेरे दिल के करीब है वो गाना
0: जी सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हूँ, घर पे ही रहती हूँ। आज सोनाली पाठक बोल रही है ना?
1: जी हाँ, मैं सोनाली बात कर रही हूँ।
0: मुझे आपसे बात करने का बहुत अच्छा लगा,
1: जी
0: बहुत
1: हाँ
0: खुशी हो रही है।
1: जी हाँ मैं भी बहुत खुशी हो रही है, आपका फोन लग गया है। और चलिए बताइए, अपनी रुचियां क्या हैं आपकी, कौन से शौक हैं आपके? जी
0: मुझे रेडियो सुनने का बहुत अच्छा लगता है, गाने
1: जी
0: सुनने का।
1: जी
0: और मुझे ना सैटरडे के सितारे, आज के मेहमान, ये सब इंटरव्यू वाला प्रोग्राम बहुत अच्छे लगते हैं।
1: बताइए कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
0: एक रिश्ता फिल्म का गाना सुनना चाहती हूँ। तुझे प्यार से देखने वाला, तुझे अपना समझने वाला, एक दिल ही तो है। और दीदी, मुझे पूजा दीदी की आवाज बहुत अच्छी लगती है, और
1: जी
0: सलमा दीदी की आवाज भी।
1: जी सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली मैम, साइबर
0: बताइए हमारी कौन सी सहेली ने फोन लगाया है?
1: रानी ने फोन लगाया मैम। सारा
0: जी साइबा रानी, कहाँ से फोन लगाया है आपने?
1: सारा
0: जी साइबा रानी, कहाँ लगाया आपने?
1: सहारनपुर से फोन लगाया
0: जी साइबा रानी, बताइए
1: जी मैम। मैं तो पढ़ाई कर रही हूँ,
0: क्या
1: बीए
0: पढ़ रही हैं आप?
1: कर रही हूँ।
0: तो आपके कुछ भविष्य के कुछ प्लान्स हैं बाद में क्या कर?
1: अपने खुद के लिए टीचर बनना सोचती हूँ जी
0: टीचर बनना चाहती हैं?
1: मैम।
0: जी, तो ये बहुत अच्छी बात है। हर किसी का सपना होता है और आपका सपना है टीचर बनना, तो आप यानी टीचर क्यों बनना चाहती है? इसके पीछे भी कोई कारण होगा?
1: जी मैम, मेरे को अच्छा लगता है जी
0: जी हाँ, देखिए आप
1: हाँ।
0: टीचर बनना चाहती हैं, तो बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगी आप इस कॉल के माध्यम से?
1: बच्चों का मैं कहना चाहूंगी, जिसके भी बच्चे हैं अपने अच्छे बच्चे को अच्छी तरह पढ़ाइए, आगे आने वाले भविष्य में उनकी जिंदगी अच्छी बने
0: जी, तो चलिए बताइए
1: जी।
0: कहाँ जाना चाहते हैं।
1: फिल्म पहली पहली बार वहां।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली।
0: बताइए हमारी कौन सी सहेली ने फोन लगाया है।
1: उज्जैन से अनिता जोशी ने।
0: अनिता जी, क्या हाल चाल है?
1: बढ़िया, महाकाल का बाबा कृपा है।
0: जी बताइए, क्या करती हैं आप?
1: मैं हाउसवाइफ हूँ।
0: जी, और आज जन्माष्टमी का त्योहार है, तो आप जन्माष्टमी का त्योहार कैसे मनाती हैं?
1: हम कान्हा जी का अभिषेक करते हैं, उनको श्रृंगार करते हैं, झूला झुलाते हैं, उनको माखन मिश्री का भोग लगाते हैं, भजन कीर्तन करते हैं
0: जी, अच्छा,
1: सब
0: अपने
1: लोग
0: शहर
1: का।
0: के बारे में बताइए।
1: जी, हमारे शहर में कृष्ण भगवान, उन्होंने शिक्षा प्राप्त करी थी यहाँ पे। सांदीपनि आश्रम है उनका, महाकाल
0: जी, उज्जैन।
1: का मंदिर भी है, 12 ज्योतिर्लिंग में आता है वो।
0: बताइए,
1: संजोग
0: कौन सा गीत आज आप सुनना चाहती हैं?
1: फिल्म का, यशोदा का नंदलाला।
0: जी, संजोग फिल्म का गीत आपको सुनवाते
1: जी।
0: हैं।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली,
0: बताइए हमारी कौन सी सहेली ने फोन लगाया है?
1: मैं सुहाना भानो बात कर रही हूँ। सहेली,
0: बताइए हमारी कौन सी सहेली ने फोन लगाया है?
1: मैं सुहाना भानो बात कर रही हूँ, गुजरात अहमदाबाद से।
0: जी बताइए, आप क्या करती हैं?

0: लगाया है
1: मैं सुवाना भानो बात कर रही हूँ, गुजरात अहमदाबाद से। बेटा
0: जी। बताइए आप क्या करती हैं।
1: मैं घर भी रहना पसंद करती हूँ, थोड़ा बहुत कभी टाइम मिला है तो सिलाई विलाई कर लेती हूँ कपड़ों में, कपड़े में सिलती हूँ। मैडम
0: जी यानी सिलाई करने का आपको शौक है।
1: मुझे आपके कार्यक्रम भी सुनना बहुत पसंद है।
0: कौन से कार्यक्रम पसंद है आपको।
1: मैडम मुझे हिलो फरमाइश आता है वो भी बहुत पसंद है, और आज के कंचार और बम्बे टॉकीज भी मुझे बहुत अच्छा लगता है।
0: चलिए आज कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं
1: मैडम हमको दीवाना कर गए का डायरेक्टर सॉन्ग।
0: जी। सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हमारे टेलीफोन नंबर इस तरह से हैं 400-24662 यानी 400-24662। दूसरा नंबर है 2867-0288 यानी 28670288। और मुंबई का STD कोड है 022 यानी 022। आज के हेलो सहेली कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग इंजीनियर है किरण बंग, संपादन सहयोग मिला नम्रता टिकोड़े का। विविध भारती की ओर से हेलो सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक। आज के हेलो सहेली कार्यक्रम को यहीं समेटते हैं। दीजिए आपकी अपनी सहेली सोनाली पाठक को इजाजत। नमस्कार।
1: सखियों के दिल की सुबह हेलो सहेली।

सखियों, आपसे की गई बातें, आपके अनुभव दिल को छू गए। आज हमसे जुड़ने वाली सभी सखियों को धन्यवाद। और वे सखियां जिनकी कॉल नहीं लग पाई, उन्हें निराश नहीं होना चाहिए, अगली बार जरूर कोशिश कीजिएगा, क्या पता पहली बार में ही आपकी कॉल कनेक्ट हो जाए। साथ ही जिन सखियों ने आज हमसे बात की, उनसे ये करबद्ध अनुरोध है कि आप अगले 2 महीने तक कॉल ना करें, ताकि अन्य सखियों को भी मौका मिल सके। और हमारे पुरुष श्रोताओं से अनुरोध है कि मंगलवार को हेलो सहेली की रिकॉर्डिंग के समय वे कॉल ना करें, क्योंकि इससे लाइन व्यस्त हो जाती है और हमारी सखियों को कॉल कनेक्ट करने में परेशानी हो सकती है। सखियों, आपसे अब मुलाकात होगी हेलो सहेली के अगले प्रोग्राम में। हमारी सखियों को बता दें कि हेलो सहेली की रिकॉर्डिंग होती है हर मंगलवार के दिन सुबह 11 बजे से।

0: गीतों भरी कहानी। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे साहित्य जगत में रश्मि रविजा के नाम से प्रसिद्ध लेखिका रश्मि वर्मा की कहानी आखिर कब तक।
1: स्नेहा घर में सबसे छोटी थी, तितली की तरह सबके आसपास मंडराती रहती, चिड़िया की तरह फुदक कर कभी घर के अंदर आती तो कभी बाहर। घर वालों की ही नहीं पड़ोसियों की भी बड़ी प्यारी थी। उसके कॉलेज से घर आते ही शर्मा चाची अक्सर कभी गरम हलवे कभी गरम पोहे की प्लेट भेज देती। जब स्नेहा पूछती, आपको कैसे पता चल जाता है मैं घर आ गई? अरे तेरे पंचम सुर के आलाप से पता चल जाता है, जितनी देर घर में तू होती है तेरे गाने की मीठी आवाज आती रहती है। कहीं मेढक भी ना आ जाए कि यही मेरी मेढकी कहाँ गा रही है। ये उससे 2 साल बड़े भाई की आवाज थी। भैया कहकर स्नेहा झपटी तो भैया के हाथों में उसकी चोटी आ गई। बोल और झपटेगी कटखनी बिल्ली कहीं की? वह उसकी चोटी थोड़ी और खींचता और वो चिल्ला पड़ती, माँ। माँ की आवाज सुनते ही भैया चोटी छोड़ किताब में आंखें गड़ा लेता। शर्मा चाची के बच्चे बड़े थे और नौकरी पर दूसरे शहर चले गए थे। उन्हें उन सब की ये शरारत बड़ी भली लगती। माँ दोनों को डांटती तो शर्मा चाची उन्हें समझाती, जाने दो शिवानी की माँ, रौनक बनी रहती है, एक दिन मेरे जैसे तरसोगी कि लड़ने को ही सही, बच्चे पास तो होते। स्नेहा भैया को जीप चढ़ाकर भाग जाती तो भैया फिर से किताबें फेंक उसके पीछे भागता। माँ सर पर हाथ रख लेती, ओह कोई किसी से कम नहीं। भैया हमेशा चढ़ाता खिजाता रहता, पर स्नेहा को कॉलेज के लिए देर होती तो बाइक से झट कॉलेज छोड़ाता। रात में उसके साथ बैठकर उसे मैथ समझाता, अगर भैया की पेन उसके हाथों गुम हो गई तो पापा जी से शिकायत कर देता। पापा की यूं तो वो सबसे लाडली थी, पर न्याय करने के लिए पापा उसे झूठ मूठ का भी डांट देते तो भैया को ही बुरा लग जाता, फिर उसके लिए चॉकलेट जरूर लेकर आता।

तो जैसे उसकी फ्रेंड फिलोसफर गाइड ही थी। बचपन से ही स्नेहा की किताबों पर कवर लगा देना, उसकी किताबों की रैप ठीक कर देना, अपने दुपट्टे से उसकी गुड़िया की सुंदर साड़ी बना देना, होमवर्क में मदद करना, उसकी शैतानियों को हमेशा छुपाना। दीदी ये सारा कुछ उसके लिए करती। सहेली से लड़ाई हो जाए तो आंसू भी दीदी ही पोंछती। बुआ जब भी यहाँ आती माँ को समझाती, सुनीता इसे भी कुछ रसोई का काम सिखाओ, कल को पराए घर जाएगी, क्या कहेंगे सब कि घर वाले ने कुछ सिखाया ही नहीं है, खानदान का नाम कटवा देगी लड़की। माँ बुआ की बात रखने को उसे किचन में भेज देती और दीदी को आवाज लगाते, शिवानी आज सारा काम गुड़िया से ही करवाना। उसका अच्छा भला नाम था स्नेहा, पर सब गुड़िया ही कहते। जब दोस्त उसे चढ़ाते तो उसे बहुत गुस्सा आता, पर घर वालों को कौन समझाए, कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की को भी कोई गुड़िया बुलाता है। वो किचन में जाती तो जरूर, पर दरवाजे की ओट में नॉवल पढ़ती रहती और दीदी भी मुस्कुराकर कुछ नहीं कहती, बल्कि माँ की आहट सुनते ही उसे आगाह कर देती और स्नेहा झूठ मूठ बर्तन उठाने रखने लगती। माँ को कुछ दाल में काला नजर आता, वो स्नेहा को अविश्वास से देखती तो स्नेहा पलट कर पूछती, क्या हुआ, तुमने कहा ना किचन में काम करने को, तो कर रही हूँ, कल मैथ्स का क्लास टेस्ट है, प्रैक्टिस करनी है, पर जाने दो, कम नंबर आए तो क्या, किचन का काम सीखना ज्यादा जरूरी है ना, आखिर खानदान की नाक का सवाल है। माँ कहती, अच्छा बाबा जा, बहुत काम कर लिया, जा तू पढ़, शिवानी तू भी जा, अब किचन मैं देखती हूँ। स्नेहा चुपके से नॉवल उठा दीदी की तरफ एक मुस्कुराहट फेंक भाग जाती। दीदी की शादी हो गई तो जैसे स्नेहा पर प्यार न्योछावर करने वाले एक और जन की बढ़ोतरी हो गई। जीजा जी की कोई छोटी बहन नहीं थी, वे अपनी छोटी बहन का सारा शौक उसके जरिए ही पूरी करते। अब कॉलेज में सहेलियां उसका नया बैग, नई सैंडल, नई ड्रेस सब हैरानी से देखती और वो इतरा कर कहती, मेरे जीजा जी लाए हैं बंबई से।

अभी एमए के फाइनल ईयर ही में थी कि बुआ एक रिश्ता ले आई। बड़े अच्छे लोग हैं, लड़का अफसर है, ज्यादा मांग नहीं उनकी, बस देखे भाले घर की लड़की चाहते हैं। मुझसे बरसों का परिचय है। मैंने गुड़िया की बात चलाई तो झट मान गए। पिताजी को लगता था अभी बहुत छोटी है, भैया उसे और आगे पढ़ने देने, किसी नौकरी के बाद ही शादी के पक्ष में था। पर बुआ पिताजी से बड़ी थी, माँ की तरह उन्हें पाला था, पिताजी की एक न चली उनके सामने। दीदी की तो शादी होते ही मानो उसके लिए यह घर पराया हो गया। यहाँ के मामलों में वह मुंह नहीं खोलती। नेहा ने जब थोड़ा डरते हुए दीदी को फोन किया, दीदी वहां सबसे बड़ी हो जाऊंगी मैं, कैसे संभालूंगी सब? संभालना क्या है, कोई छोटे बच्चे थोड़े ही हैं वे सब। अच्छा साथ रहेगा, खुश रहेगी तू। यहाँ पर मुंबई में देख, तेरे जीजा जी ऑफिस चले जाते हैं तो सारा दिन मैं अकेले पड़ी रहती हूँ, खाना तक खाने का मन नहीं होता। ज्वाइंट फैमिली में समय अच्छा कट जाता है। फिर दीदी अपने ही अकेलेपन का रोना रोने लगती। दीदी के समझाने पर उसके मन का डर भी जाता रहा। कहीं ये भी लग रहा था, क्या रौब होगा, बड़ी भाभी बनेगी वह, यहाँ तो सबसे छोटा समझ सब बस लाड प्यार ही लुटाते हैं, कोई गंभीरता से लेता ही नहीं। पर ससुराल वालों की गंभीरता का अंदाजा उसे एंगेजमेंट से ही होने लगा। पास में बैठे अजनबी ने जैसे बस एक उचटती सी नजर डाली उस पर, वरना कई कजिन्स को देख चुकी थी, लड़के जैसे बात करने के बहाने ही ढूंढते रहते। शादी की रस्मों में भी होने वाले

पति को गंभीर मुखमुद्रा में ही देखा, सहेलियों को ज्यादा मजाक करने की हिम्मत भी नहीं हुई।

माँ ने समझाया था, ससुराल में जल्दी से उठकर सबके लिए चाय बना देना, यहाँ की तरह 8 बजे तक मत सोती रहना। स्नेहा को भी दिखाना था, वह अपने घर की छोटी लाडली है तो क्या, जिम्मेवारियां संभालना उसे खूब आता है। सुबह ही उठ नहा धो किचन में पहुंच गई, चाय बनाकर ट्रे लेकर निकल ही रही थी कि सासू माँ ने टोक दिया, बहू पल्ला रखो सर पर। अब थोड़ी देर वो इसी में उलझी रही, माथे पर पल्लू रख जैसे ही ट्रे थामे पल्लू गिर जाए, फिर से पल्लू संभाले। सासू माँ गौर से यह सब देखती रही पर कहा नहीं कि रहने दो। आखिरकार उसने पल्लू ठुड्डी से दबाया और किसी तरह आगे बढ़ी तो लगे कि साड़ी अभी पांव में उलझ जाएगी और वो गिर जाएगी। बड़ी मुश्किल से मैनेज किया, ससुर जी के सामने ट्रे रखी, सोचा ससुर जी खुश हो जाएंगे और 2 घड़ी पास बिठा बातें करेंगे। पर उन्होंने अखबार उठाकर एक बार देखा और फिर अखबार में नजरें गड़ा ली। जब स्नेहा ने बड़ी नम्रता से पूछा, चीनी कितनी चम्मच, सपाट स्वर में उत्तर मिला, 1 चम्मच। स्नेहा निराश सी बाहर चली आई, फिर भी उसने कोशिश नहीं छोड़ी, खाने के समय पास खड़ी रहती, पूछती रहती, और सब्जी दूं, रायता दूं, कोई ना कोई बात शुरू कर देती। आज गर्मी बहुत है, आपको ऑफिस से आते वक्त ज्यादा ट्रैफिक तो नहीं मिला? एक दिन ससुर जी ने रूखे स्वर में कह दिया, कुछ चाहिए तो कह दूंगा। स्नेहा का मन बुझ गया, शायद ससुर जी को अपने रूटीन में बदलाव पसंद न था। वे घर में किसी से भी बहुत कम बातें किया करते थे। ससुर जी की आदत उनके बड़े बेटे को भी थी, घर में सिर्फ खाने कपड़े से ही मतलब था। दोनों बाप बेटे टीवी पर समाचार देखते और जैसे ही सासू जी के सीरियल देखने का वक्त होता, दोनों उठकर अपने अपने कमरे में चले जाते। वह असमंजस में पड़ जाती, पति के साथ कमरे में बैठे या सासू माँ के साथ सीरियल देखे। पति तो अपने लैपटॉप पर दफ्तर

शादी से पहले इतनी खुश थी स्नेहा। हम उम्र देवर और ननद हैं, उसने सोचा था बढ़िया वक्त कटेगा, ननद की कोई बहन नहीं, वो सारा प्यार उड़ेल देगी। पर ननद कॉलेज से सीधी अपने कमरे में जाती और मोबाइल से चिपक जाती। एक आध बार स्नेहा ने कमरे में जाकर बात करने की कोशिश भी की तो ननद ने बड़े अनमने भाव से उत्तर दिया और वो पलटकर दरवाजे तक भी नहीं पहुंची थी कि ननद पीठ फेरे किसी को फोन पर कह रही थी, अरे भाभी थी कॉलेज से आओ नहीं कि बहाने से आ जाती हैं कमरे में, इत्मीनान से फोन पर बात भी ना कर सको। स्नेहा ने ननद से दोस्ती बढ़ाने की कोशिश छोड़ ही दी। उसे लगा था देवर हमेशा भाभियों के प्यारे होते हैं। एक दिन देवर अपने दोस्त के साथ सिनेमा देखने गए थे। सास और पति के मना करने के बावजूद वो उसका इंतजार करती रही, ड्राइंग रूम में चैनल बदलकर समय काटती रही। देवर ने अपनी चाबी से दरवाजा खोला और उसे ड्राइंग रूम में देख एक मिनट के लिए हेडफोन निकाला और पूछा, अरे

अभी नींद नहीं आ रही आपको? या भैया से लड़ाई हो गई? हाँ, और फिर कान में हेडफोन लगाए, गाने पे झूमते, सर हिलाता अपने कमरे में चला गया। स्नेहा ने ही कमरे के दरवाजे पर जाकर पूछा, खाना गर्म करती हूँ, जल्दी से हाथ मुंह धोकर आ जाइए। ओह क्या भाभी, आप कितनी ओल्ड फैशन है, मुझे खाना होगा तो माइक्रोवेव में गर्म कर लूंगा, वैसे अक्सर मैं खाना खाकर ही आता हूँ। गुड नाइट भाभी एंड थैंक्स फॉर आस्किंग, कहकर वापस हेडफोन लगा, झूमना शुरू कर दिया। इस घर का रंग ढंग ही निराला था। सब एक छत के नीचे रहते थे, पर सबकी दुनिया अलग थी। स्नेहा सबकी दुनिया में कदम रखने की कोशिश करती, पर दरवाजा बंद पाती, और फिर बंद दरवाजे से टकरा बार बार उसका मन लहूलुहान हो जाता। स्नेहा के पति को घूमने फिरने का कोई शौक नहीं था, उनका देखा जाना अपना शहर था, उन्हें कहीं भी जाने का कोई उत्साह नहीं रहता। शुरू शुरू में स्नेहा ही जिद कर बाहर जाने पर मजबूर करती। पति बड़े बेमन से गंभीर चेहरा बनाए साथ हो लेते, पर हर जगह कोई ना कोई परिचित मिल जाता, और फिर तो पति की मुखमुद्रा बिल्कुल बदल जाती। इतने गर्मजोशी से मिलते और बातों का वो सिलसिला शुरू होता कि स्नेहा की उपस्थिति ही भूल जाते। वो उपेक्षित सा महसूस करती, स्नेहा को गुस्सा भी आता, इन सब से कैसे इतना घुल मिलकर बातें कर रहे हैं, उससे बातें करते जुबान पर ताले पड़ जाते हैं। धीरे धीरे बाहर घूमने जाने का उसका सारा उत्साह ठंडा पड़ गया।

बस एक सहारा दीदी और सहेलियों के फोन का रहता। फोन पर बात करते वो अपने आसपास का पूरा परिवेश भूल जाती। लगता वही कॉलेज का लॉन है या फिर घर की छत। ऐसे ही एक रविवार की सुबह देर तक बातें की थी दीदी से। दीदी ने उन्हें मुंबई बुलाया था और पतिदेव ने भी हामी भर दी थी। स्नेहा का मन इतना खुश-खुश था कि बाथरूम में देर तक गुनगुनाते हुए नहाती रही। बाहर निकली तब भी गीले बालों को झटकते गाना जारी रहा। कुछ देर बाद जब लंबे बाल पीछे की तरफ फेंक सामने देखा तो पाया दरवाजे पर खड़े पति उसे गौर से देख रहे थे। एक सल्लज मुस्कान फैल गई उसके चेहरे पर। ये ध्यान भी आया यहाँ आकर तो वह गाना ही भूल गई है। पति ने पहली बार उसका गाना सुना है। शायद अभी आकर बाहों में भर लेंगे और कहेंगे कितनी मीठी आवाज है तुम्हारी, हरदम क्यों नहीं गाती। इंतजार में जैसे उसकी सांसें भी रुक गई थी पर कोई आहट नहीं हुई। नजरें उठाकर देखा तो पति अखबार उठा कुर्सी की तरफ जा रहे थे। उसे अपनी तरफ देखता पाकर बोले, इतनी जोर से गा रही हो, बगल के कमरे में ही माँ पापा हैं, कुछ तो सोचा करो, और अखबार फैला लिया सामने। स्नेहा का मन हुआ वो भी पैर पटकती हुई बाहर चली जाए, पर फिर सोचा आज इतवार है और दिन बस शुरू ही हुआ है, सारा दिन अबोला रह जाएगा। किसी तरह आंसू जज्ब करते हुए स्वर को सामान्य बनाते हुए पूछा, दीदी ने बुलाया है, आपने भी हाँ कहा है, कब चलेंगे मुंबई? छुट्टी कहाँ है, इतना काम है दफ्तर में, कैसे जा सकता हूँ? अब वो हाँ तो कहना ही पड़ता है ना, बाद में कोई बहाना बना देंगे, और ये कहते हुए अखबार में डूब गए। स्नेहा जैसे आसमान से गिरी। कितनी खुश थी वह, कितनी सारी योजनाएं बना डाली, अब अपने आंसू रोकना मुश्किल हो गया। किचन में जाकर ढेर सारे प्याज काट डाले। सास ने आश्चर्य से पूछा, इतने सारे प्याज? आंखें नाक पोछते हुए इतना ही कहा, हाँ आज सोचा आलू दो प्याजा बना दूं।

उसने तय कर लिया, अगर घर वालों की अपनी दुनिया है तो वो भी अपनी अलग दुनिया बसा लेगी और खुश रहेगी उसमें। और खाली वक्त में अखबारों के कॉलम देखने लगी, या तो नौकरी करेगी या फिर कोई बढ़िया सा कोर्स। अभी यह तलाश जारी ही थी कि उसे माँ बनने की खुशखबरी मिली। लगा अब घर का माहौल बदल जाएगा। नन्हे बेटे की किलकारी ने घर में रौनक तो ला दी, पर स्नेहा की दिनचर्या में ज्यादा बदलाव नहीं आया, बल्कि नई जिम्मेवारियां और शुमार हो गईं। बेटे को तो सब खूब खिलाते, सारा दिन घर का कोई न कोई सदस्य बेटे को गोद में उठाए फिरता, पर काम सारा स्नेहा के जिम्मे था। स्नेहा जरा इसके कपड़े बदल दो, दूध का टाइम हो गया है, दूध पिला दो, लगता है नींद आ रही है, सुला दो। वो नींद में ही उसके पास आता। कभी कभी स्नेहा को लगने लगता कहीं बड़ा होकर ये ना सोचे माँ सिर्फ काम के लिए ही होती है और बाकी सब लोग साथ खेलने को। मितभाषी पति भी बेटे के साथ खूब खेलते। एक दिन प्रैम खरीद कर ले आए, वो बहुत खुश हुई। अब प्रैम में बेटे को लेटा दोनों पति पत्नी पार्क में उसे घुमाने के लिए ले जाया करेंगे। लेकिन दूसरे दिन ही पति ने ऑफिस से आते ही जल्दी से कपड़े बदले और बोले, इसे तैयार कर दो, जरा मैं घुमा कर ले आता हूँ। वो मन महसूस कर रह गई, हाँ उसे तो किचन देखना है, वो कैसे जा सकती है। जब देवर की भी शादी तय हो गई तो सबसे ज्यादा खुशी स्नेहा को ही। अब उसे एक सहेली मिल जाएगी, वो भी तो दूसरे घर से आएगी, यहाँ के तौर तरीके से अनभिज्ञ। तय कर लिया स्नेहा ने, उसे वो कभी अकेलापन नहीं महसूस होने देगी। पर स्नेहा ने पाया देवरानी ने तो इस घर में घुलने मिलने की कोई कोशिश ही नहीं की। पहले दिन ही इतनी देर तक सोती रही कि सासू जी को उसे जगाने के लिए ननद को भेजना पड़ा। और जब देवरानी से नहा धोकर नाश्ते के लिए बाहर आने के लिए कहा गया तो उसने कह दिया, अभी तो तैयार होने में बहुत समय लगेगा, दोनों जन का नाश्ता कमरे में ही भिजवा दी जाए। ननद पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली गई। मेरे हाथों नाश्ता भिजवाने की तो सोचना भी मत। सासू जी ने असहाय हो स्नेहा की तरफ देखा तो वो भागकर कामवाली को बुला लाई। शुक्र है स्नेहा ने उसे अतिरिक्त पैसे का वायदा कर दिन भर के लिए रोक लिया था, वरना स्नेहा को ही देवर देवरानी की सेवा में हाजिर होना पड़ता। देवरानी ने बाद में भी कभी जल्दी उठने की कोशिश नहीं की, बल्कि स्नेहा से ही कहती, आप कैसे इतनी जल्दी उठ जाती हैं, मेरी तो आंख ही नहीं खुलती। क्या बताए स्नेहा, मायके में वो भी तो देर तक सोया करती थी। देवर के ऑफिस जाने के बाद ही देवरानी नहा धोकर बाहर आती, सासू माँ को कुछ टोकने का मौका ही नहीं मिलता, और तब तक किचन का सारा काम सिमट गया होता। थोड़ी देर इधर उधर घूम फिर वो अपने कमरे में चली जाती, अपने कपड़े जेवर चूड़ियां संभालती रहती, कमरे को सजाती रहती। सास नंदे भी तारीफ करती, कितने सुंदर ढंग से सजाकर अपना कमरा रखती है। स्नेहा इशारा समझ जाती पर कह नहीं पाती, मैं तो सारा घर ही संभालती रहती हूँ, अपने कमरे की बारी ही नहीं आती। देवरानी दिन में सो जाती और सोकर उठते ही तैयार होना शुरू कर देती। देवर ऑफिस से आ बमुश्किल चाय पीते और पत्नी श्री को लेकर घूमने निकल जाते। सास भी स्नेह से निहारते हुए कहती, एक

एकदम राम सीता सी जोड़ी है। दोनों के ही एक से शौक, नीले घूमने फिरने का शौकीन, बहू भी वैसे ही मिली है। निशांत तो अपने भोले राम है, उसे कभी भी घूमने फिरने का शौक नहीं रहा। उनके लाड़ले के कोई शौक ना होने की वजह से स्नेहा कितनी घुटती रही, इस पर किसी का ध्यान नहीं जाता।

देवरानी किसी दिन घूमने नहीं जाती और किचन में आ कभी सब्जी बना देती तो पूरे घर में शोर हो जाता। खाने के टेबल पर सासू जी इंगित करती, आज तो सब्जी छोटी बहू ने बनाई है। और हमेशा मौन रहकर खाना खाने वाले ससुर जी भी बोल पड़ते, अच्छा थोड़ी और तो बहुत बढ़िया बनी है। पतिदेव को लगता उन्हें भी हाँ में हाँ मिलानी चाहिए। वे भी स्वाद लेते हुए बोलते, सचमुच बहुत बढ़िया बनी है। देवर इस प्रशंसा पर ऐसे फूलते जैसे उनकी ही तारीफ हो रही हो। आज सिंहा बेटे को थपकते थपकते खुद भी लेट गई थी, पर नींद आंखों से कोसों दूर थी। शारीरिक थकान से ज्यादा मानसिक थकान थी शायद। वह अपने दिन याद कर रही थी जब नई नई इस घर में आई थी, सबके आसपास मंडराती रहती पर कोई नोटिस भी नहीं लेता, बल्कि अक्सर उपेक्षा ही झेलनी पड़ती। और आज यही देवरानी अपने कमरे में ही बनी रहती है तो पति ससुर सब पूछ लेते हैं, अंकिता नहीं दिख रही, उसकी तबीयत तो ठीक है? स्नेहा से तो किसी ने नहीं पूछा कभी, पर उसने कभी पूछने का मौका भी तो नहीं दिया। बुखार में भी गोलियां लेकर काम में लगी रहती, क्या ये ठीक किया उसने? मायके में किसी ने उसे कभी सामने बिठाकर नहीं समझाया, पर उम्र की सीढ़ियां पार करते हुए कहानियों में, धर्म ग्रंथों में पढ़कर, फिल्मों में देखकर, अपनी दादी नानी बुआ मौसी माँ को देखकर यह एहसास अपने आप मन में घर करता गया कि लड़की को त्याग करना चाहिए, अपनी इच्छा के ऊपर दूसरों की इच्छा सर्वोपरि रखनी चाहिए, सबको खुश रखना चाहिए, सारा दुख हंसते हंसते सह जाना चाहिए, ससुराल के नियम कायदे बिना ना नुकुर के अपना लेने चाहिए। और स्नेहा ने इन सब में कुछ ज्यादा ही बहादुरी दिखाई, खुद आगे बढ़कर सारे काम अपने ऊपर ले लिए। और अब 2 साल में तो ससुर जी की दवाई, सासू जी की धूप अगरबत्ती, देवर की जीन्स, पति की तो कोई भी चीज अगर ना मिले तो सब एक ही पुकार लगाते, और वो भी दौड़ दौड़ कर सबकी जरूरतें पूरी करती रहती। पर इन सब में इसकी स्थिति इस अदृश्य हवा की तरह हो गई जिसके बिना कोई जी नहीं सकता। सबको उसकी जरूरत है पर हवा दिखाई नहीं देती, हवा के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं महसूस होती, उसका ख्याल रखने की जरूरत नहीं पड़ती, ना ही उसकी अहमियत समझ में आती है, क्योंकि वो तो हमेशा अपने आसपास बनी हुई है। खुद को मिटाकर वह उस घर में इस तरह घुल मिल गई है कि उसका कोई अस्तित्व ही नहीं बचा। आज जब अंकिता अलग थलग बनी हुई है तो सब उसका अस्तित्व महसूस तो कर रहे हैं। क्या जग की यही रीत है? सामने झुके लोगों की ही उपेक्षा की जाती है, और अगर कोई आपकी ही उपेक्षा करने लगे तब जाकर उसका अस्तित्व महसूस होता है।

अचानक घड़ी पर जो नजर गई तो देखा 5 बज गए हैं। एकदम से हड़बड़ा कर उठ बैठी। अभी तो पानी आने वाला होगा, सब जगह उसे पानी स्टोर करना है। घर में आते ही उसने ये काम सासू जी से अपने हाथों में ले लिया था। दौड़ दौड़ कर किचन, बाथरूम सब जगह पानी भरती और ये जिम्मेवारी पूरी तरह उसी पर आ पड़ी। ननद और सासू दोनों अपने अपने कमरे में आराम करती रहती और पानी आने के समय का ख्याल स्नेहा को ही रखना पड़ता। स्नेहा सोचती, चलो सासू जी ने तो इतने वर्षों तक ये सब किया है, ननद तो छोटी है, कॉलेज से थकी हुई आई है, ये सारे काम स्नेहा को ही करने चाहिए। पर अब तो घर में देवरानी भी है, वो भी कर सकती है। और स्नेहा दोबारा लेट गई। जाने दो, आज देखती है पानी भरने कोई और उठता है या नहीं। अगर कोई पानी नहीं भरता तो होने दो थोड़ी मुश्किल, कह देगी उसकी आंख लग गई, आखिर वो भी इंसान ही है, कोई मशीन नहीं। स्नेहा ने तय कर लिया, आहान को तैयार कर पति के आने से पहले ही पार्क में ले जाएगी, कह देगी।

कर पति के आने से पहले ही पार्क में ले जाएगी, कह देगी, रो रहा था, बहलाने को ले गई। जब पति को नहीं महसूस होता कि ऑफिस से आकर कुछ समय पत्नी के साथ बिताएं, तो वो ही क्यों पानी का ग्लास और चाय का कप पकड़ाने का इंतजार करती रहे। खुद से लेकर पानी पी सकते हैं, बहन, माँ, अंकिता कोई भी चाय बनाकर दे सकती है। चाहे तो बाद में पार्क में आ सकते हैं, और ना तो ना सही। अब स्नेहा को थोड़ा समय खुद के लिए भी निकालना ही होगा, वरना उसका वजूद ही मिटता जा रहा है। वो सिर्फ किसी की बेटी, बहू, माँ बनकर ही रह जाएगी। आखिर कब तक? आखिर कब तक वह दूसरों की चाकरी करती रहेगी? उसे अपने लिए जीना भी सीखना होगा। जब किसी को उसकी परवाह नहीं, तो उसे ही स्वयं के लिए सोचना होगा। वो यूं अपना वजूद नहीं मिटने दे सकती। आहान थोड़ा बड़ा हो जाए, फिर वो किसी स्कूल में टीचर बन जाएगी। यह फैसला करते ही उसका मन एकदम हल्का हो आया, और सालों बाद भूला हुआ सा पसंदीदा गीत होठों पर आ गया। गुनगुना उठी।

आखिर कब तक, रश्मि वर्मा उर्फ रश्मि रविजा की लिखी कहानी आप सुन रहे थे। प्रस्तुति सहायक आकांक्षा सिंह, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।

0: सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गटले
0: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी न कोई संदेश।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध

जी बहादुर सन, क्योंकि उन्होंने हारां, असफलतावां, घाटियां, मायूसियां, विपतावां, विछोड़ियां दे बावजूद हार नहीं सी मन्नी। इसे अवस्था नूं तां गुरी आपां चढ़दी कला आखदे आं।

0: जी श्रोतियो, प्रोग्राम श्रोता मंच लेके हाजिर हाँ जी। मैं तुहाड़ी अपनी दोस्त होस्ट विजय लक्ष्मी। प्यार भरी सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब ते गुड इवनिंग। जिवें कि प्रोग्राम श्रोता मंच है और श्रोता मंच दे विच साडे सारे श्रोते इस प्रोग्राम दे विच साडा जिहड़ा वट्सएप नंबर है 7171 7340 ते सानू कॉल्स नहीं मिलांदे, वट्सएप करदे ने। प्रोग्रामर प्रति राय सुझाव शिकवे शिकायतां ते नाल नाल 0164-2443-331 डायल करदे ने। सो तुसी अज ए नंबर डायल कर सकदे हो 0164-2443-331 ते 7171-7340 ते मैं विजय लक्ष्मी श्रोतिया दे मुखातिब हुई हाँ। ते अज तुहाडियां फोन कॉल्स दा जवाब देने दे लई प्रोग्राम दे विच मेरे नाल शिरकत कर रहे ने मनदीप रजौरा जी। मनदीप जी, प्यार भरी सत श्री अकाल
1: जी। विजय जी सत श्री अकाल, ते साडे प्यारे श्रोतियां नूं वी मेरे वल्लों नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। असीं दोनों ही साडे सारे ही श्रोतियां दा स्वागत करदे हां। ते ओ जरिए तुहानूं पहले पहल दस्सांगे जिन्हां दे जरिए तुसीं इस प्रोग्राम दे विच जुड़ना है, साडा वट्सएप नंबर अते साडा लैंडलाइन नंबर, अते सानूं अगाऊं अगले हफ्ते

0: तगड़, कमलप्रीत सिंह तगड़, काकू जसल पिंड शेखपुरा, गुरजीत मलकीत धरमे ते मंगू राजस्थानी मौड़ मंडी तो ते पूरी तगड़ फैमिली कहिंदे गल करदे आ जी प्रोग्रामा दी। प्रोग्रामा दी गल करिए ते प्रोग्राम बहुत वधिया चल रहे ने
1: जी।
0: अज दुपहरे श्री मान बलजीत शर्मा जी ने प्रोग्राम पेश किया श्री कृष्ण जी की जन्माष्टमी के मौके ते, कहते बहुत सोहना चानना पाया, धन्यवाद कर रहे जी शर्मा जी का
1: जी। शुक्रिया जी शर्मा जी वालों तुहाडा शुक्रिया
0: जी। और 2:30 बजे सुरीली दोपहर प्रोग्राम पेश किया, मैडम ने बहुत सोहने गीता की चोण की, बड़े मैसेज शामिल किए। अमरजीत कौर सी अज ड्यूटी ते
1: जी। शुक्रिया जी अमरजीत कौर होर वालों भी तुहाडा। अगे की लिखते ने
0: अगे कहते कोई भी कमी पेशी नहीं है, सारे प्रोग्राम बहुत वधिया चल रहे ने। बलजीत शर्मा जी का इन्ना बहुत सोहना कहते लहजा हैगा, कहते ने कि प्रोग्राम इन्ना भैन जिया ने तैयार किया, अनाउंसर बीबिया नू जां अनाउंसर वीरां नू अपने वर्गा डायरेक्टर वर्गा रुतबा दे के कह देंदे ने कि प्रोग्राम असी अते इन्हां ने पेश किया। बलजीत शर्मा जी का यह बहुत वड्डा वड़प्पन है। धन्नवाद शर्मा जी, सानू बहुत चंगा लगता है, परमात्मा बलजीत शर्मा जी नू लम्मी उम्र दे। धन्नवाद इन्ना कहते हुए खिमादा जाचक तगड़ राम सिंह तगड़ पिंड बुरज
1: जी, तुसी इन्हां दा नां जिक्र कीता पहला पिंड दा, शुक्रिया तुहाडा शर्मा जी वल्लों तुहाडा उचेचा धन्नवाद। तुसी इन्नियां दुआवां उन्हां नूं दित्तियां, उन्हां वल्लों उन्हां दे परिवार वल्लों उन्हां दी सारी ही टीम वल्लों तुहाडा शुक्रिया जी
0: जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। और अगे जिहड़ा है, अच्छा जी इशारा हो गया साडे कोल फोन कॉल्स दा
1: जी,
0: कॉलर इक नाल ने। हैलो
2: प्यार ते सत्कार प्रीत सत श्री अकाल जी।
0: सत श्री अकाल, आई थिंक ये अमनदीप जी ने
2: जी, अमनदीप सिंह पिंड हठूर
0: तो जी। अमनदीप जी स्वागत है।
2: बहुत शुक्रिया जी, रजौरा जी नु भी सत श्री अकाल। सर बड़ा वधिया लग्या मेनू, मैं जिक्र कीता सी पिछे जे कि तुसीं प्रोग्राम दे विच दोबारा आगे श्रोता मंच दे विच
1: जी,
2: ते इस तो बिना पैगाम प्रोग्राम भी जो मतलब हुण चल रहा जी, लक्ष्मी जी बहुत वधिया पेश करदे ने
1: जी, शुक्रिया
0: शुक्रिया जी।
2: युवाणी प्रोग्राम तुहाडा बहुत वधिया चल रहा,
1: बड़ी मेहरबानी।
2: शाम सोहानी दे विच नवे अनाउंसर आ रहे ने, सानू वधिया लग रहा, पर एक थोड़ा जा मतलब गिला ला लो कि साडे जिहड़े पुराने भी बहुत वधिया काम कर रहे सीगे
1: जी जी,
2: उहनां दीआं ड्यूटीआं मेरे ख्याल नाल बहुत ज्यादा घटातीआं जां नामात्री ने
1: जी। इस दा कारण एक तां इह है कि जो साडे नवे साथी है उहनां नूं ट्रेनिंग दी लगातारता दे विच जरूरत है, जे असीं उहनां नूं थोड़े दिन बुला के ते उहनां नूं नहीं उह करांगे, समझ सकते हो मैं की कहना चाह रहे हैं, लगातार
2: हरमन प्यारे ने उन्हां नूं जरूर मतलब मौका दिया करो
1: जी। असीं सुझाव नोट कर लैने आ, फिर भी उन्हां दी ट्रेनिंग दे नाल नाल असीं इस तरह भी करया करांगे, सुझाव तुहाडा मन लैने आ कि पुराने साथी भी असीं शामिल करांगे।
2: वैसे तां पहलां भी कई वार होया कि जिहड़े प्रोमोस ने ना ਉਹ ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 10 ਤੋਂ 15 ਸਕਿੰਟ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਉਣਾ
1: ਜੀ,
2: ਪਰ ਉਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜਾ ਗੀਤ ਚੱਲਦਾ
1: ਜੀ
2: ਉਹ ਮਤਲਬ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬਾ ਚੱਲਦਾ
1: ਜੀ,
2: ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਲੀਜ਼ ਗੌਰ ਕਰੋ।
1: ਪ੍ਰੋਮੋ
2: ਜੇ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਓ, ਪਰ ਉਹ ਚ ਸੀਮਤ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਾਓ ਜੀ
1: ਜੀ। ਇਹ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੂੰ
2: ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ,
1: ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਝਾਅ ਇਹ ਸਬਮਿਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਮੋ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਆਪਣੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਝਾਅ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ
2: ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ,
1: ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ,
0: ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਮਨਦੀਪ ਜੀ। ਸਰ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਨੇਹਾ ਆਇਆ 7013773143 ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਆਰ ਜੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਿੱਠੀ ਮਿੱਠੀ ਪਿਆਰੀ ਪਿਆਰੀ ਕੂਲ ਕੂਲ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ
1: ਜੀ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ
0: ਜੀ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਰੋਤਾ ਮੰਚ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬੰਸੀ ਲਾਲ ਸੰਧੂ ਪਿੰਡ ਤੇਜਾ ਮੋਹਦੀ ਅੰਬਾਲਾ ਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ,
1: ਤੇਜਾ ਮੋੜੀ,
0: ਤੇਜਾ ਮੋੜੀ ਓਕੇ,
1: ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ,
0: ਹਾਂ ਹਾਂ ਹਾਂ ਹਾਂ ਰੋਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇਜਾ ਮੋੜੀ ਅੰਬਾਲਾ ਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਭਜਨ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ
1: ਜੀ,
0: ਸੀਮਾ ਮਹਿਰਾ ਮੈਡਮ ਤੇ ਸੰਦੀਪ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਦੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,
1: ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ,
0: ਮਮਤਾ ਅਰੋੜਾ ਮੈਡਮ ਤੇ ਬਲਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
1: ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ,
0: ਆਪਣੀ ਵਿਰਸਤ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹਾਰਡਵਰਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਡਮ ਕਿਰਨਪਾਲ ਕੌਰ ਦੀ ਬੋਲੀ ਮਿਸ਼ਰੀ ਵਰਗੀ ਮਿੱਠੀ ਹੈ
1: ਜੀ,
0: ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੈਗਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੈਡਮ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ
1: ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਿਰਨਪਾਲ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਪੈਗਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੈਡਮ ਵਿਜੇ ਲਕਸ਼ਮੀ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।
0: ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ

0: जी स्टूडियो की घड़ी ते समा 5:53 ते 44 सेकेंड प्रोग्राम चल रहे गल्लां चो गल हफ्तावारी सिलसिला सोता मंच विजय लक्ष्मी ते मनदीप रजौरा जी स्टूडियो दे विच हाजिर है और
1: साडा व्हाट्सएप नंबर है 7173।

0: हर महीने और 6 महीने ट्रेनिंग करने के बाद नौकरी नहीं मांगे पर अपना व्यवसाय स्वयं खड़ा करके अपने पैरों पर खड़े होने की ताकत रख।
1: इस मौके यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर अध्यापक विद्यार्थी ते होर पतवंते भी मौजूद रहे। पंजाब सरकार ने 17 जुलाई 2020 तो बाद भर्ती हुए करीब 85,000 पंजाब सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते डीए नूं मौजूदा 42% तो वधा के 60% करन दा फैसला कीता है। ये वो राज्य सरकारी कर्मचारी ने जिन्हां नूं जुलाई 2020 तो बाद केंद्रीय तनखाह स्केल से भर्ती किया गया सी। ये ऐलान पंजाब के उद्योग मंत्री अमन अरोड़ा ने अज चंडीगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान किया। इन्हां कर्मचारियों के महंगाई भत्ते च वाधे की सिफारिश सरकार वालों कर्मचारियों की शिकायतों की जांच लई बनाई गई 3 मैंबरी कैबिनेट सब कमेटी वालों की गई है। इस कमेटी च वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा, समाजिक सुरक्षा मंत्री डॉ. बलजीत कौर ते अमन अरोड़ा शामिल ने। वीरवे सांझे करदियां श्री अरोड़ा ने दस्या,
2: अज उन्हां 85,000 दे करीब एम्पलॉइज जिहड़े कि 17 जुलाई 2020 तो बाद पंजाब सरकार दे विच जिन्हां नूं नौकरियां मिलियां ने उन्हां नूं जन्माष्टमी दे तोहफे दे रूप दे विच सरकार वल्लों फैसला होया कि इन्हां 85,000 एम्पलॉइज नूं जिहड़े कि सेंट्रल पे स्केल दे उपर ने बेसिक पे स्केल दे उपर पर उन्हां नूं जो डीए है उह केंद्र सरकार वाला 60% ना मिल के पंजाब दा 42% मिल रहा है। उन्हां
1: हालांकि इस फैसले नाल 2020 तो पहला भर्ती किए गए लगभग 3,15,000 कर्मचारियों नूं उन्हां दियां लंबे समय तो बकाया मंगा, खास करके उन्हां दियां बकाया डीए दियां किश्तां जारी होण ते राहत दी उड़ीक करन दी संभावना है। इस तो पहला कर्मचारियों ने 27 अगस्त नूं पेंशनरां नाल मिल के समूहिक छुट्टी की सी तां जो अपनियां मंगां जिस विच बकाया डीए दी जारी करन नूं लैके दबा पाया जा सके। सरकार ने बाद विच विभागां नूं 27 अगस्त नूं गैर हाजर रहे कर्मचारियों नूं कारण दसो नोटिस जारी करन दे निर्देश दिते सन। ये खबरां तुसीं आकाशवाणी तो सुन रहे हो। साडा एक्स हैंडल है @TIRRNU जलंधर अते यूट्यूब ते साडा चैनल है @TIR जलंधर। अज जन्माष्टमी पंजाब समेत देश भर में श्रद्धा और उत्साह नाल मनाई जा रही है। उत्तर प्रदेश में भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा वृंदावन च खास तौर पर खुशियां मनाई जा रही ने। पंजाब च भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी की पूरी धूम है। पेश है एक रिपोर्ट।
3: भगवान कृष्ण की श्रद्धा विच डुबे भगत खुशियां ते चावां नाल जन्माष्टमी मना रहे ने। जलंधर समेत पंजाब भर विच एक विशाल जश्न दियां तैयारियां चल रही ने। सूबे दे सारे मंदिरां खास करके कृष्ण मंदिरां नूं फुल्लां ते होर सजावट नाल सोहनी तरह सजाया गया है। रंग बिरंगियां लाइटां भी लाईयां गईयां ने। वड्डी गिनती श्रद्धालु सवेर तो ही दर्शनां अते पूजा लई मंदिर च पहुंच रहे ने। शाम नूं झाकियां सजाईयां जाणगियां जिथे छोटे बच्चे श्री कृष्ण राधा राणी अते गोपियां ते सखा बन के उस समय दे दृश्य सजाउंदे ने। श्रद्धालुओं दा चाह देखदियां ही बन रहा है। राजेश बाली, आकाशवाणी खबरां, जलंधर।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन्माष्टमी मौके देशवासियों नूं निघियां शुभकामनावां दित्तियां ने। इधर पंजाब विधानसभा दे स्पीकर कुलतार सिंह संधवां ते मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने भी सारियां नूं शुभकामनावां दिंदियां कामना कीती कि हर घर विच खुशियां दा वास होवे। उधर अमृतसर के प्रसिद्ध दुर्गयाना मंदिर विच भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी नूं लैके विशेष तैयारियां कीतियां गईयां ने। दुर्गयाना मंदिर के पुजारी पंडित मेगा शाम लाल ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण के दर्शनां ते पूजा अर्चना लई दूर दुराडे के इलाकों तो वड्डी गिनती विच श्रद्धालु मंदिर पहुंच रहे ने। भारतीय जनता पार्टी के एसी मोर्चा के नवनियुक्त सूबा प्रधान शीतल अंगुराल ने अज पंजाब बीजेपी दफ्तर विखे अपना अहुदा संभाल लिया। इस मौके पंजाब बीजेपी के सूबा प्रधान केवल सिंह ढिल्लों विशेष तौर पर मौजूद रहे। पंजाब सरकार समाज के कमजोर लोड़वंद वांछित वर्गों की भलाई को सर्वोच्च तरजीह दिंदिया उन्होंने समाजिक ते आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने लई पूरी तरह वचनबद्धता नाल काम कर रही है। कैबिनेट मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि इसका उद्देश हर योग नागरिक नूं सन्मान, आत्मनिर्भरता ते आर्थिक सुरक्षा नाल जीवन जीवन दे योग बनाउणा है। डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि बुढ़ापा पेंशन योजना समेत वख-वख सरकारी सुरक्षा योजनावां तहत सूबा सरकार वल्लों हुण तक सीधे लाभ तबादले राही 2,697 करोड़ 44 लाख तों वध दी रकम सीधी लाभपात्रियां दे बैंक खात्यां विच जमा करवाई जा चुकी है। जलंधर कमिश्नरेट पुलिस ने अमरीका आधारित लाभ धोखाधड़ी दे मामले नाल जुड़े एक लोड़ींदे भगौड़े मनजीत सिंह बेदी नूं जलंधर तो गिरफ्तार किया है। पंजाब पुलिस मुखी गौरव यादव ने दसिया कि बेदी नूं कथित तौर पर अमरीका च पूर्व पोषण सहायता प्रोग्राम लाभ धोखाधड़ी

0: हाँ जी, डायल हो चुके हैं 0164-2240-3131 नंबर ते। आओ सुनते हाँ, देखते हाँ कि केड़ा श्रोता साढ़े नाल जुड़िया है।
1: हेलो
0: सत
1: जी,
0: श्रीकाल जी, कौन बोलते हो ते कितों बोलते हो, ना दस
1: मैं
0: दो।
1: मुखनी बोल रहा था। गोलियां टाइम थोड़ा ही है, तो एक तो जी मन करता सुना दो गीत लंबी चौड़ का जी।
0: जी, सुना देने हैं जी हुनी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया थोड़ा फोन करने के लिए।
1: धन्यवाद।

प्रोग्राम दी वाचक मैं यानी गुरदीप गिल, निर्माता निर्देशक श्री बलजीत शर्मा। सुनना ना भूलना शनिवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम हर अकाल उस्तत।

0: तो हो जाए सब दंग।
1: CIET प्रस्तुत करता है
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: नमस्कार श्रोताओ, मैं विमलेश
1: और मैं अजीत। महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से राम कुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल, दीपक पटेल और टेकलाल पटेल जी ने सुविचार भेजा है।
3: लिखते हैं, रिश्ते अनमोल होते हैं, इन्हें शब्दों से नहीं प्यार, विश्वास और सम्मान से निभाएं, क्योंकि सच्चे रिश्ते ही जीवन की सबसे बड़ी दौलत होते हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस सुंदर संदेश के लिए। आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल।
3: धमदा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजनी जंघेल जी ने हमारे परिवार वाले संवाद पर स्लोगन भेजा है। लिखते हैं,
1: शिक्षित परिवार बच्चों को केवल पढ़ना नहीं लेकिन अच्छा इंसान बनना भी सिखाता है।
3: इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से। कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू लिखते हैं,
1: नमस्कार। पेड़ की बात कार्यक्रम सुनते समय जब माइक्रोस्कोप पर तने और पत्ती को बच्चों को दिखाया गया तो हमें अपने छात्र जीवन के वो दिन याद आ गए जब हमने भी बायो लैब में इसी तरह दिन गुजारे थे
3: जी।
1: कार्यक्रम दिलचस्प और जिज्ञासा को शांत करने वाला रहा। उमंग की पूरी टीम को धन्यवाद और आभार।
3: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम पर प्रतिक्रिया देने के लिए।
1: मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला सुरलकर जी लिखते हैं, सपने वही पूरे होते हैं जिन्हें मेहनत का सहारा मिलता है। भाग्य भी उसी का साथ देता है जो कर्म से नाता रखता है, उसके लिए हर नया दिन एक नया अवसर लेकर आता है। बस विश्वास के साथ पहला कदम बढ़ाइए।
3: जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए।
1: धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने AI से संबंधित हमारी बातचीत पर एक विशेष प्रतिक्रिया भेजी है, आइए सुनते हैं।
3: विमलेश जी, अजीत जी नमस्कार, जय जोहार। 4 तारीख को कार्यक्रम उमंग में कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI के बारे में आप दोनों की बातचीत सुनने को मिली। आपने बहुत ही उपयोगी जानकारी दी जिसमें AI के फायदे और नुकसान के बारे में बताया गया, सुनकर बहुत अच्छा लगा। उमंग टीम के साथ विमलेश जी और अजीत जी को बहुत बहुत बधाई।
1: आप सभी श्रोताओं को हम धन्यवाद देना चाहते हैं उमंग कार्यक्रम से जुड़े रहकर संदेश भेजने के लिए
3: जी।
1: तो करते हैं शुरुआत हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी की
3: जी।
1: तो विमलेश जी, पहले दिन हमने भारत की बात की
3: जी,
1: आज का क्या कार्यक्रम है?
3: हाँ जी जी, आज हम चलेंगे हिमाचल प्रदेश की वादियों में। मुझे तो हिमाचल सुनते ही वहाँ की सुंदर सुरम्य घाटियाँ, सेबों से लदे बगान और हिमालय की चोटियाँ याद आ जाती हैं। हमारी आज की चर्चा का विषय होगा एक अमेरिकी व्यक्ति जिसने भारत में सेब को नई पहचान दी।
1: विमलेश जी, हमारे श्रोता सोच रहे होंगे कि आज एक अमेरिकी व्यक्ति की विशेष चर्चा क्यों, इसका औचित्य तो समझाइए।
3: जी जी जी जरूर। देखिए, हमारे भारत की विरासत इतनी समृद्ध है कि इससे प्रभावित होकर बहुत से विदेशी यहाँ आए और यहीं के होकर रह गए, जैसे स्वीडन की मिस मार्गरेट नोबेल जो स्वामी विवेकानंद जी की शिष्या बनकर बाद में सिस्टर निवेदिता कहलाई, और बंगाल की स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया।
1: जी बिल्कुल विमलेश जी, मुझे तो फ्रांस की मिस मिर्रा अल्फांसा की याद आ रही
3: जी,
1: जो श्री अरविंद की शिष्या बनी और बाद में मदर कहलाई
3: जी,
1: और साथ ही साथ मदर टेरेसा भी मुझे याद आती है।
3: तो अजीत जी, इसी क्रम में आज हम श्रोताओं को एक ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनाना चाहेंगे जिसने भारत में आकर न सिर्फ यहाँ का जीवन जिया बल्कि पूरे प्रदेश की तकदीर बदल दी। अजीत जी, अब आपकी बारी कहानी को आगे बढ़ाने की
1: जी। श्रोताओ जरा सोचिए, एक विदेशी युवक जिसने हिमाचल की पहाड़ियों में नए तरीके से सेब की खेती शुरू की
3: जी,
1: और उस खेती से लाखों किसानों की आजीविका चलने लगी।
3: वाह, ये तो सच में अद्भुत है। कौन था वो युवक?
1: विमलेश जी, उस युवक का नाम था सत्यानंद स्टोक्स
3: जी।
1: उसका मूल नाम सैमुअल इवांस स्टोक जूनियर था। उसका जन्म अमेरिका के एक समृद्ध परिवार में हुआ था। आराम की जिंदगी उनके सामने थी, लेकिन उन्होंने एक बिल्कुल अलग रास्ता चुना।
3: तो वे भारत क्यों आए?
1: युवावस्था में वे मात्र 22 वर्ष की आयु में अमेरिका के फिलाडेल्फिया से कुष्ठ रोगियों की सेवा की भावना से भारत आए
3: जी,
1: और हिमाचल प्रदेश के कोटगढ़ क्षेत्र में रहने लगे। उन दिनों वहाँ के लोगों का जीवन बहुत कठिन था।
3: श्रोताओ, वो एक ऐसे व्यक्ति नहीं थे जो सिर्फ दूर खड़े होकर केवल सलाह देते हैं, वे लोगों के सुख दुख में सहभागी बने।
1: बिल्कुल, यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी। बाद में उन्होंने भारतीय संस्कृति को अपनाया और अपना नाम सत्यानंद रख लिया। उन्होंने भारतीय जीवन पद्धति को भी सम्मान दिया।
3: अजीत जी, हम बात कर रहे थे सेब की खेती के बारे में
1: जी। देखिए, ऐसा नहीं था कि उन दिनों हिमाचल में सेब की खेती नहीं होती थी, समस्या थी गुणवत्ता की
3: जी।
1: तो उन्होंने, यानी सत्यानंद जी ने, अमेरिका के लुसियाना प्रांत से उच्च गुणवत्ता वाले सेब

0: के पौधे मंगवाए और हिमाचल में लगाए।
1: जी
0: शुरुआत आसान नहीं थी, लोगों को विश्वास ही नहीं था कि इससे कोई बड़ा परिवर्तन आएगा,
1: लेकिन धीरे धीरे जब उन पौधों ने फल देना शुरू किया तो इन उच्च गुणवत्ता वाले सेब के फलों ने बाजारों में धूम मचा दी। उनकी भारी मांग होने लगी और इससे हजारों किसानों के जीवन में भारी परिवर्तन आया।
0: और हम सब जानते हैं कि आज हिमाचल के सेब पूरे देश में ही नहीं लेकिन पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं।
1: जी
0: न जाने कितने किसानों का जीवन बदल गया, एक व्यक्ति का दूरदर्शी निर्णय लाखों लोगों के लिए आशीर्वाद और वरदान बन गया। इसलिए तो उन्हें यानी सत्यानंद स्टोक्स को हिमाचल का एप्पल मैन भी कहा जाता है।
1: जी हाँ, फलों का व्यापार बढ़ा तो सड़कें भी बनी, बागवानी का विस्तार हुआ, फलों की खेती में नवाचार शुरू हुए, धीरे धीरे उस क्षेत्र का कायाकल्प हो गया। लेकिन श्रोताओ, उनका योगदान केवल खेती तक ही सीमित नहीं था, है ना जी? जी
0: जी हाँ बिमलेश जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। सच्चाई ये है कि सत्यानंद जी भारत के स्वतंत्रता आंदोलन से भी जुड़े, उन्होंने महात्मा गांधी के विचारों का समर्थन किया और अंग्रेजी शासन के विरुद्ध आवाज उठाई।
1: जी
0: जिसके कारण उन्हें जेल भी जाना पड़ा।
1: यानी जिस व्यक्ति ने पहाड़ों में पौधे लगाए थे उसी व्यक्ति ने अन्याय के विरुद्ध भी आवाज उठाई, उन्हें जेल भी जाना पड़ा। उनकी कहानी हमें एक बहुत बड़ी शिक्षा देती है, देशभक्ति केवल जन्म से नहीं होती, कभी कभी सेवा से भी पैदा होती है। अजीत जी तो अब करते हैं समापन कुछ विचारों के साथ।
0: जी जरूर।
1: श्रोताओ कल्पना कीजिए, एक दिन था जब उस युवक के हाथ में कुछ पौधे थे और उन पौधों ने वहाँ के लोगों के जीवन की दिशा बदल दी। शायद हमारे पास हजारों एकड़ जमीन नहीं है लेकिन हमारे हाथों में भी कोई न कोई पौधा तो अवश्य ही है, कोई विचार, कोई सेवा।
0: जी शायद कोई प्रतिभा या आंखों के सामने कोई ऐसा बच्चा जिसे हम शिक्षा दे सकते हैं, तो इसीलिए
1: कभी किसी काम को छोटा मत समझिए, क्योंकि विशाल वृक्ष भी एक छोटे से बीज या पौधे से आरंभ होते हैं। इसलिए हम जहाँ भी रहें यूं ही जीवन व्यतीत न करें, कुछ ऐसा रोप कर जाएं जिसकी छाया आने वाली पीढ़ियां पा सकें।
0: जी बहुत अच्छा विचार। तो साथियों, ये थी एक अमेरिकी युवक की भारत से प्रेम की कहानी। आज कभी यदि आप हिमाचल जाएं तो वहाँ के सेबों से लदे बागों को देखकर इस व्यक्ति को जरूर याद करें जो सैमुअल इवांस स्टोक्स जूनियर से अब सत्यानंद स्टोक्स के नाम से इतिहास में जाना जाता है।
1: जी और आपको सूचना दे दें कि एनसीईआरटी के पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करने के लिए आप किसी भी सर्च इंजन में जाकर एनसीईआरटी बुक्स पीडीएफ टाइप कीजिए, विकल्पों का अनुसरण कीजिए और पुस्तकों का लाभ उठाइए।
0: जी इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप एनसीईआरटी के बारे में अद्यतन जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और यदि हमारे कार्यक्रमों को आप सुनना चाहते हैं या पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं तो एनसीईआरटी यूट्यूब चैनल पर जाइए, आपको वहाँ कक्षा 9 तक की सारी पुस्तकें ध्वनि रूप में उपलब्ध हो जाएंगी।
1: तो प्रस्तुत है आज का प्रश्न।
0: प्रश्न है, सत्यानंद स्टोक्स किस देश के किस शहर के निवासी थे? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: सत्यानंद स्टोक्स किस देश के किस शहर के निवासी थे?
0: आप अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। तो अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की। पहला कार्यक्रम है मेरे तो गिरधर गोपाल।
1: इस कार्यक्रम में भक्ति मीराबाई के जीवन और उनकी कृष्ण भक्ति का विशेष उल्लेख किया गया है और चर्चा की गई है कि आज भी आधुनिक साहित्य उनकी कृतियों के प्रति आभारी है।
2: मेरे तो गिरधर गोपाल।

मीराबाई श्री कृष्ण की परम भक्त। उन्हें भक्ति काल के प्रमुख संतों में गिना जाता है। जन जन में प्रचलित मीरा के भजन उनकी सरल आस्था का सीधा साधा चित्रण है।

मीराबाई का जन्म राजस्थान में हुआ था। वो जोधपुर की एक रियासत मेड़ता के महाराज राव रतन सिंह की बेटी थी। बचपन में ही माता पिता का साया उनके सर से उठ गया था, इसलिए मीरा का पालन पोषण उनके दादाजी राव दूदा ने किया। शिक्षा के साथ साथ मीरा ने

0: प्रशासन, राजनीति और संगीत में भी कुशलता प्राप्त की।
1: राव दूदा मीरा को बहुत लाड़ प्यार से पालते। नन्ही मीरा की भोली भाली बातों पर वो मोहित हुए रहते।
0: एक दिन की बात है, राव दूदा कृष्ण की मूर्ति के आगे पूजा कर रहे थे। तभी बाहर किसी की बारात को देख मीरा अपने दादाजी के पास आई।
2: बाबा, ओ बाबा, देखो तो घोड़े पर चढ़कर कौन जा रहा है?
3: अरे देखूं तो, अरे ये तो बारात जा रही है।
2: देखो चमचम वस्त्र पहने हैं, कैसी सुंदर पगड़ी है। ये कौन है बाबा, ये कहाँ जा रहा है?
3: अरे ये दूल्हा है बिटिया, शादी करने जा रहा है। अभी उसकी बारात जा रही है, फिर किसी लड़की से शादी करके उसे पालकी में लेकर वापस आ जाएगा।
2: और मेरा दूल्हा कौन होगा बाबा?
3: अरे होगा बेटी, वो भी हो जाएगा रानी बिटिया, पर अब तू मुझे पूजा पूरी कर लेने दे।
2: नहीं, पहले आप मुझे बताइए मेरा दूल्हा कौन है, वरना मैं आपको गिरधर गोपाल का शिंगार नहीं करने दूंगी।
3: भाई बता दूंगा ना बेटी।
2: नहीं, पहले आप मुझे बताइए।
3: बेटी ये शिंगार इसीलिए तो कर रहा हूँ, यही है तेरा दूल्हा।
2: सच पापा, ये है मेरा दूल्हा।
3: सच्ची भाई?
2: मेरा दूल्हा गिरधर गोपाल।
0: बचपन की इस भोली घटना के बाद से ही मीरा जैसे जैसे बड़ी होती गई कृष्ण भक्ति में रमती गई।

0: चित्तौड़ के राजा राणा सांगा के बड़े बेटे भोजराज से मीरा का विवाह हुआ। लेकिन मीरा मन ही मन श्री कृष्ण को अपना पति मानती थी और उनके ध्यान में खोई रहती थी।
1: पति भोजराज और ससुर राणा सांगा मीरा के इस निश्चल व्यवहार को बहुत सहजता से लेते,
0: परंतु ससुराल के अन्य लोगों को मीरा का ये रूप पसंद ना आता था।
2: उदा भाई, देखो तो मीरा तैयार हुई या नहीं।
3: भाभी की बातें मेरी समझ में नहीं आती माँ साहब। मैंने तो सुबह ही उनसे कह दिया था कि शक्ति माँ के दर्शन करने जाना है।
2: हाँ, तो फिर?
3: पर वो ना तो कुछ बोली और ना ही चली। हाँ, बस बैठी उस कृष्ण की मूर्ति की तरफ देखती रही।
2: हाय हाय,
3: जिसे अपने मायके से लाई है।
2: तो क्या अब तक तैयार नहीं हुई?
3: नहीं जी, तैयार होना तो दूर, वहाँ तो गाना बजाना चल रहा है।
4: नैनन में नंदलाल।
1: एक के बाद एक पति भोजराज और ससुर राणा सांगा की मृत्यु के बाद मीरा पर तो जैसे दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा।
0: अब राणा सांगा का छोटा बेटा राणा विक्रमादित्य राजा बन चुका था।
1: विधवा मीरा का यूं गिरधर गोपाल के ध्यान में खोए रहना, नाचना गाना उसे राजघराने की परंपरा के अनुकूल न लगता था। वो अनेक तरीकों से मीरा को डराता धमकाता, मीरा को मारने के षड्यंत्र करता।
5: विष अवश्य ही हमारा काम करेगा। भाभी सा, तैयार है ना आप? ये आपके गिरधर गोपाल का चरणामृत है भाभी सा।

0: आपको गिरधर गोपाल में विलीन कर देगा। दासी, दासी।
1: जी राणा जी महाराज।
0: जाओ ये कटोरा मीरा भाभी सा को दे आओ, उनसे कहना ये उनके कान्हा का प्रसाद है। क्या कहा? कान्हा का प्रसाद, चरणामृत।
1: जी महाराज।
0: जाओ जल्दी पहुंचा दो इसे, कहीं देर ना हो जाए।
1: जो आज्ञा महाराज।
0: गिरधर गोपाल का चरणामृत।
1: रानी सा की जय हो।
2: आओ सखी, भीतर आओ।
1: जी वो
2: क्या हुआ सखी, तनिक चिंतित सी लग रही हो।
1: वो कुछ नहीं।
2: कहो ना सखी, क्या बात है?
1: वो रानी सा, वो महाराज राणा ने आपके लिए कान्हा का प्रसाद भेजा है। ये चरणामृत।
2: क्या? मेरे कान्हा का प्रसाद?
1: पर हमें तनिक शंका होती है।
2: दो दो हमें, हम अभी पियेंगे।
1: रुकिए रानी सा जरा ठहरिए। रानी सा, क्या मालूम विश्वत हो?
3: राणा भेजा विष का प्याला, पीवत मस्त होई। दास मीरा लाल गिरधर, होनी हो सो हो।

माना जाता है कि राणा ने कभी टोकरी में सांप भेजा, कभी मीरा के बिस्तर पर कांटे बिछवाए, लेकिन कृष्ण के प्रति आस्था मीरा को हर कष्ट से बचाती रही।

0: और एक दिन वो भी आया जब मीरा महल के सारे सुख और आराम छोड़कर मेवाड़ त्याग कर वृंदावन की ओर चलती।
1: हाथ में एक तारा लिए जोगन बनी मीरा को यूं रास्तों में नाचते गाते देख लोग हैरान हो जाते।
0: कुछ लोगों को मीरा का ये दिव्य रूप मोहित करता, लेकिन मीरा का यूं नाचना गाना उस समय के कुछ अंधविश्वासी लोगों के लिए बहुत असहनीय था। रास्ते में लोग तरह तरह की बातें करते।
2: भाई साहब, सुना है कि रानी मीरा ने महल छोड़ दिया।
3: अरे छोड़ना ही था
4: और कहीं, विधवा होकर नाचनो गानो
3: और क्या।
2: अरे भाई, पर ऐसी भक्त को भला कोई दीवारों में बांध सकता है क्या।
1: चेहरे पर कैसा दिव्य तेज है।
5: हाँ, कितनी भली है रानी सा।
6: गाती भी बहुत अच्छा है।
2: हाँ, बहुत अच्छा। मैं मिला हूँ एक बार उनसे।
7: वो देखो, वो आ रही हैं, तुम्हारी रानी सा।
8: प्रणाम रानी सा।
9: प्रणाम रानी सा।
10: प्रणाम। जय श्री कृष्ण भाई। जय श्री कृष्ण।
6: ऐसे पैदल कहाँ जा रही हैं रानी सा।
10: अपने कान्हा के पास वृंदावन।
8: यूँ अपने घर परिवार को छोड़कर।
10: मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई।
2: मगर लोग क्या कहेंगे रानी सा।
7: राजकुमार भोजराज की विधवा और
10: जाके सर मोर मुकुट मेरो पति सोई।
0: इस तरह समाज की और कुल की रीतियों को तोड़ती मीरा वृंदावन जा पहुंची।

0: इस समय की भी एक घटना बहुत प्रसिद्ध है।
1: कहा जाता है कि उस समय चैतन्य संप्रदाय के परम सिद्ध संत श्री रूप गोस्वामी वहाँ रहते थे।
2: गोविंद जय जय गोपाल जय जय
3: गोविंद जय जय गोपाल जय जय।
1: मीराबाई उनसे मिलना और उनके दर्शन करना चाहती थीं, परंतु गोस्वामी जी ने कहला भेजा,
4: हम स्त्रियों से नहीं मिलते हैं।
5: क्या सच? गोस्वामी जी ने ऐसा कहा?
6: जी हाँ माता, गोस्वामी जी स्त्रियों से भेंट नहीं करते, उन्होंने सदा इस नियम का पालन किया है।
5: हम तो समझते थे कि वृंदावन में श्री कृष्ण ही एकमात्र पुरुष है। ठीक है, जैसी हरी इच्छा, चलती हूँ। स्वामी जी से कहना, संत देख दौड़ी आई, जगत देख रोई, संत सदा शीश राखूं, राम हृदय होई।

कहते हैं, गोस्वामी जी मीराबाई की इस बात से इतने प्रभावित हुए कि स्वयं नंगे पांव बाहर तक आए और संत मीरा से मिले। मीरा वृंदावन की गलियों में, मंदिरों में नाचती गाती

0: एक दिन वो वृंदावन छोड़ द्वारिकापुरी चली गई।
1: वहां उन्होंने रणछोड़ जी के मंदिर में डेरा जमाया। यहां वो अपने कान्हा की चाकरी करती है।

0: मीरा अब तक बहुत ही प्रसिद्ध और जन जन की प्यारी बन चुकी थी।
1: उनकी ये लोकप्रियता उनके मायके मिड़ता और ससुराल मेवाड़ तक भी जा पहुंची। मीरा इस सब से अनजान कृष्ण की भक्ति में खोई रहती।

0: सुंदर।
1: मीरा बाई के दर्शन करके मैं तो धन्य हो गया।
2: कितनी मधुर आवाज।
3: हाँ।
2: सुना है मेड़ता और मेवाड़ दोनों राज्यों से उन्हें बुलावा आया है।
3: क्या?
4: हाँ, पर वो गई नहीं।
1: अरे सुना तो ये भी है कि उन्हें वापस ले जाने के लिए
5: ब्राह्मण भी भेजे गए।
2: तो क्या हमारी मीराबाई चली जाएंगी?
4: पता नहीं, उनके बिना तो सब कितना सोना सोना लगेगा।
1: हाँ भैया, बहुत सोना हो जाएगा
3: यार।
6: कहते हैं कि ब्राह्मणों के हठपूर्वक धरना देने पर मीराबाई श्री रणछोड़ जी से आज्ञा लेने मंदिर के भीतर गईं और वहीं मूर्ति में आत्मसात हो गईं।
7: विश्वास जो मानता हो, तर्क जो कहता हो, लेकिन ये सच है कि मीराबाई सीधी सुगढ़ और सपाट भाषा में कविता रचने वाली

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम मेरे तो गिरधर गोपाल, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम कुंजम्मा का जन्मदिन।
1: ये कार्यक्रम बच्चों में गणितीय और संख्या ज्ञान के कौशल को विकसित करने के उद्देश्य से बनाया गया है, जिसमें एक बच्ची के जन्मदिन की पार्टी में हुए मनोरंजक संवाद बच्चों में नवाचार को प्रोत्साहित करते हैं।

0: तुम भी लोग खाओ मिठाई। ये लो तुम भी लो।
1: मैं तो अपने जन्मदिन पर केक काटता हूँ।
2: मैं भी
3: मैं तो अपने जन्मदिन पे समोसे खिलाता हूँ।
0: मेरे घर पे तो जन्मदिन पे तो ढेर सारी मिठाई आती है।
4: हाँ, यहाँ पर रखी तो है कितनी सारी।
5: क्या हर साल इतनी मिठाई आती है?
0: हर साल जब मेरा जन्मदिन होता है तब मैं जितने किलोग्राम की होती हूँ उससे दुगनी मिठाई आती है हमारे घर पे।
5: इतनी ढेर सी मिठाई का क्या करते हो?
0: सबको बांटते और सबको खिलाते हैं। पता है जब मेरा जन्म हुआ था मैं 3 किलोग्राम की थी।
5: अच्छा, फिर तो तुम्हारे घर में 6 किलोग्राम मिठाई आई होगी।
1: हाँ, ये बात तो ठीक है,
5: हो गई दुगनी।
3: अब तुम कितने किलोग्राम की हो कुंजम्मा?
0: अब मैं 30 किलोग्राम की हूँ।
5: तो अब तुम्हारे घर में क्या 60 किलो मिठाई रखी है?
0: हाँ, 60 किलोग्राम है।
1: अगर तुम 30 किलोग्राम और 50 ग्राम की होती तो
0: अरे बस, किलोग्राम जितनी मिठाई लाते हैं। वैसे तो मैं अब भी 30 किलोग्राम और 500 ग्राम की हूँ।
3: इस हिसाब से तो तुम्हारे घर में 61 किलोग्राम मिठाई आनी चाहिए।
1: हाँ, 61 किलोग्राम। अगर ऐसे तो हाथी की मम्मी भी ऐसी मिठाइयाँ बांटती तो।
4: पता है, हाथी का बच्चा 300 किलोग्राम का होता है।
6: 300 किलोग्राम?
4: तो उसकी मम्मी क्या 600 किलोग्राम मिठाई लाती है?
1: और चीटी की मम्मी, उसका भार तो 1 मिलीग्राम होगा।
5: 2 मिलीग्राम की मिठाई कौन बनाएगा?
4: और अगर डायनासोर को मिठाई बांटनी होती तो?
0: तुम सोचो डायनासोर के बाद, हम तो मिठाई खाते हैं।
1: हाँ, कहीं 60 किलोग्राम मिठाई खत्म ना हो जाए।
7: श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम कुंजम्मा का जन्मदिन, और इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यही समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत को
8: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी चेतना, जगबंधु और कुसुमलता के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
7: नमस्कार।

ओ जदों लौंग लिशकाउण हरे डोरिए उडाउण ओ जदों

जी श्रोतियों की फरमाइश ते उन्हां दे गीत सुनाने की फरमाइश ते पढ़ते हाँ कुछ खत, फिर उन्हां दी फरमाइश सुनाने हाँ थोनू जी। प्रगट सिंह ढिल्लों, जथेदार प्यारा सिंह, कोट शमीर, जनक राज कोट शमीर, नछत्तर सिंह, लालवाई, दर्शन सिंह पथराला, बलदेव सिंह भुख्यावाली, सुखदीप सिंह गिल, गुरदीप सिंह लैपो, पिंड ढिल्लवां, जिला बरनाला, तहसील तपा मंडी, रावर करनाल से ज्ञान भूषण शर्मा, सोमनाथ कालिया, पिंड कोट शमीर नेड़े पार्क माखा पत्ती, जथेदार प्यारा सिंह, मेजर सिंह पंजू, सुखबाल सिंह, प्रगट सिंह ढिल्लों, पप्पू शर्मा, गुरमेल सिंह दलेर, सब दा ये दिलों धन्नवाद करते हैं। ते पिंड मूलियां वाली, जिला फाजिलका, लिखण वाले विनोद काठवाल, परवीन काठवाल।

दीक्षा, जन्नत काठवाल, हनी काठवाल, चौधरी प्रेम सिंह, है ना, सब दी मिली फरमाइश ते गीत पेश कर रहे हाँ। जिन्होंने एक फरमाइश पेश की है कि वह सानू गीत सुना दो, उन्होंने फरमाइश ते गीत सुना रहे हैं जी। सुनो सुनो फिर सारी।

0: जी अगला खाता है सटकोलो हरदीप सिंह जोगा तो कमलदीप सिंह बागा पुराना नमनदीप कौर पिंड ढड्डे रणजीत सिंह बदन कला गुरदेव सिंह पखो कला हरदीप मिलाप बरनाला गुरदयाल सिंह भगता भाई का सीताराम शेरी रावा लंबरदार परगट डॉक्टर रूप सर्विस स्टेशन ब्राड़ सुखा सरपंच कोठे ढाबा तो नीला सरा पिंड गहरा तो नेड़े धर्मशाला पिंड कोटली अबलू सीताराम केसरी सुखा सरपंच कोठे ढाबा वाले नीला सरा पिंड गग्गा गंगा ब्राड़ मोटरा वाला रूप सर्विस स्टेशन किद्दा कुंडा फार्म बलकीरत सिंह बल्लू इन्हां दी रली मिली फरमाइश ते सुनदे हां ये गीत पहला उस तो कुछ एक संदेश
1: आकाशवाणी एफ एम बठिंडा दे सूझवान ते सत्कारयोग स्रोतियो मिति 5 सितंबर दिन शनिवार शाम 5 बजे तुसी सुनोगे प्रोग्राम किसान वाणी जिस दे तहत विशा रहेगा झोने अते नरमे दीआं मुख बीमारियां ते उन्हां दी रोकथाम अते इस विषय ते जानकारी देण लई स्टूडियो विच मौजूद होणगे माहिर डॉक्टर हरप्रीत सिंह जो के खेतीबाड़ी विकास अफसर ने चक फतेह सिंह वाला विखे ते उन्हां नाल गलबात करांगी मैं जानी वीरपाल कौर धालीवाल स्रोतियो जेकर तुसी इस विषय संबंधी होर जानकारी लैणा चाहुंदे हो तां साडे स्टूडियो दे नंबर 0164-2240-331 ते प्रोग्राम दौरान संपर्क कर सकते हो इस प्रोग्राम दे निर्माता निर्देशक ने बलजीत शर्मा सो सुनना जरूर मिति 5 सितंबर दिन शनिवार शाम 5 बजे प्रोग्राम किसान वाणी

0: का 3 दिन का सम्मेलन नई दिल्ली में शुरू। न्याय वितरण और विवाद समाधान से संबंधित मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद दिया। कहा, भारत इटली संबंध पहले से कहीं अधिक मजबूत हुए। विदेश मंत्रालय ने बताया, नेपाल बाढ़ के बाद अब तक 166 भारतीय नागरिक बचाए गए, 275 अब भी लापता। बिहार में सभी प्रमुख नदियां उफान पर होने से बाढ़ की स्थिति गंभीर, प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य जारी। जन्माष्टमी आज देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स सेमीफाइनल में पहुंचे। ब्रिक्स देशों के मुख्य न्यायाधीशों का 3 दिन का सम्मेलन आज नई दिल्ली में शुरू हुआ। हमारी संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन में ब्रिक्स सदस्य देश और सहयोगी देशों के मुख्य न्यायाधीश और वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी भाग ले रहे हैं।
1: भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज रूस, चीन, संयुक्त अरब अमीरात, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान सहित कई देशों के न्यायिक प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। इन बैठकों में देशों के बीच न्यायिक सहयोग को मजबूत करने, न्यायपालिका की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को एकीकृत करने, तेजी सैनिक प्रक्रियाएं पूरी करके लोगों के बीच संबंध बेहतर करने और अलग अलग देशों के बेहतरीन कानूनी तौर तरीकों पर चर्चा की गई। यह सम्मेलन न्यायपालिकाओं के लिए न्याय प्रदान करने, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने, मौजूदा मुद्दों पर चर्चा करने का मंच है। अनुपम मिश्र के साथ ऋषु जायसवाल, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने 7 राज्यों को न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष करने का निर्देश दिया है। एक रिपोर्ट।
2: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने छत्तीसगढ़, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, सिक्किम, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल राज्यों को संबंधित सेवा नियमों में संशोधन करके सेवानिवृत्ति आयु को औपचारिक रूप से 62 वर्ष करने का निर्देश दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने ये शर्त रखी है कि 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके न्यायिक अधिकारियों को 62 वर्ष की आयु तक सेवा जारी रखने की अनुमति मिलने से पहले संबंधित उच्च न्यायालय के योग्यता और प्रदर्शन मूल्यांकन से गुजरना होगा। न्यायालय ने इन राज्यों में इस वर्ष 31 मार्च को या उसके बाद सेवानिवृत्त हुए न्यायिक अधिकारियों के लिए भी सीमित अवसर खोला ताकि वे न्यायिक सेवा में पुनः प्रवेश के लिए आवेदन कर सकें। सर्वोच्च न्यायालय ने इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 2 सप्ताह के भीतर इस मुद्दे पर निर्णय लेने और अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि भारत इटली संबंध पहले से कहीं अधिक मजबूत हुए हैं। श्री मोदी ने इटली के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सरकार का नेतृत्व करने के लिए प्रधानमंत्री मेलोनी को शुभकामनाएं दी थी। प्रधानमंत्री मेलोनी ने कहा कि भारत और इटली दोनों महाद्वीपों के बीच रिश्ते मजबूत करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि दोनों देश भारत, मध्य पूर्व, यूरोप आर्थिक गलियारे को विकसित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में भाग लेंगे। इस अवसर पर श्री मोदी एक जनसभा को संबोधित करेंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय का ये कॉलेज भारत के प्रमुख उच्च शिक्षा संस्थानों में से एक है। यहाँ कॉमर्स, अर्थशास्त्र और प्रबंधन के क्षेत्र में विशिष्ट शिक्षा दी जाती है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under

0: India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प.
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको.
1: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं. अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें.
3: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान. आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए. इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन. उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान. नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 10 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की. आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर. राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी.
4: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है. विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नेपाल बाढ़ के बाद अब तक 166 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है. नई दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाताओं को बताया कि 275 भारतीय नागरिक अब भी लापता हैं. उन्होंने कहा कि भारत नेपाल में पुनर्निर्माण और राहत कार्यों में लगातार सहयोग कर रहा है.
5: We have extended our solidarity and support to the government and people of Nepal.
6: हमने नेपाल सरकार और वहाँ की जनता के प्रति अपनी एकजुटता और समर्थन व्यक्त किया है. एक करीबी मित्र और साझेदार के रूप में भारत ने तुरंत सहायता पहुँचाई और हम नेपाल के पुनर्निर्माण और राहत के प्रयासों में लगातार सहयोग करते रहेंगे.
5: And recovery efforts in the country.
4: श्री जायसवाल ने कहा कि मंत्रालय बचाए गए भारतीयों के नाम नियमित रूप से जारी कर रहा है. उन्होंने कहा कि 1907 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और चीन से नेपाल पहुंच चुके हैं. उन्होंने कहा कि चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में कोई भी भारतीय यात्री फंसा नहीं है. श्री जायसवाल ने कहा कि आने वाले दिनों में भारत नेपाल सरकार के अनुरोध पर और अधिक फॉरेंसिक किट, बेली ब्रिज और अन्य सामग्री भेजने की योजना बना रहा है. नेपाल में भीषण बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 1287 हो गई है. नेपाल पुलिस के अनुसार चितवन में सबसे अधिक 359 लोगों की मौत हुई. इसके बाद नवलपरासी पूर्व में 218, नवलपरासी पश्चिम में 208, नुवाकोट में 185, रसुआ में 140, गोरखा में 72, धाडिंग में 60 और तनहू में 38 लोगों की मृत्यु हुई. काठमांडू के अस्पतालों में इलाज के दौरान 2 और लोगों की मृत्यु हुई. विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और पोलैंड साइबर सुरक्षा, अंतरिक्ष, स्वच्छ ऊर्जा और महत्वपूर्ण खनिजों जैसे क्षेत्रों में कई समझौतों पर काम कर रहे हैं. उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इन समझौतों से द्विपक्षीय संबंधों में अधिक गहराई और मजबूती आएगी. वॉर्सो में आज पोलैंड के उप प्रधानमंत्री रादोस्लाव सिकोरस्की के साथ वार्ता के बाद डॉक्टर जयशंकर ने ये बात कही. बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाख द वेवर ने कहा है कि बेल्जियम भारत के साथ समुद्री सहयोग को मजबूत करने की दिशा में काम करेगा. उन्होंने बताया कि बेल्जियम से समुद्री और पत्तन क्षेत्र का प्रतिनिधिमंडल अगले वर्ष फरवरी में भारत आएगा ताकि इस क्षेत्र में ठोस कदम उठाए जा सकें. श्री वेवर आज मुंबई में भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर भारत बेल्जियम उच्च स्तरीय वार्ता को संबोधित कर रहे थे. भारत ने अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है. भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज तड़के श्रीहरिकोटा से GSLV-F17 रॉकेट से पृथ्वी अपलोकन उपग्रह EOS-05 का सफल प्रक्षेपण किया. उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने इस सफलता पर इसरो के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को बधाई दी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये राष्ट्र के लिए गर्व का क्षण है. श्री मोदी ने कहा कि ये सफलता भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की उत्कृष्टता, नवाचार और बढ़ती क्षमताएं दर्शाती है. इसरो अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा कि मिशन भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को और मजबूत करेगा. ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध

0: हैं।
1: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
2: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और पीबी शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: ये आकाशवाणी है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने आज डिजिटल अरेस्ट के तीन बड़े मामलों में देश भर में कार्रवाई की है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ब्यूरो ने ऑपरेशन चक्र 6 के अंतर्गत तीन लोगों को हिरासत में लिया।
3: देश भर में लगातार बढ़ रहे डिजिटल अरेस्ट के मामलों के खिलाफ सख्त कदम

0: अंतर्गत 3 लोगों को हिरासत में लिया।
1: देशभर में लगातार बढ़ रहे डिजिटल अरेस्ट के मामलों के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए देश के 20 राज्यों में 89 स्थानों पर छानबीन का अभियान चलाया गया। इस ऑपरेशन की योजना बहुत सावधानी से बनाई गई थी। राजस्थान के जालसाज ने 7 करोड़ 67 लाख रुपए, गुजरात के जालसाज ने 19 करोड़ 24 लाख रुपए और राजस्थान के ही एक अन्य जालसाज ने 15 करोड़ 45 लाख रुपए की धोखाधड़ी की। एजेंसी ने डिजिटल अरेस्ट के संगठित अपराध से निपटने का संकल्प भी दोहराया। यह ऐसी समस्या है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी देश भर के नागरिकों के लिए गंभीर खतरा बताया है। अभिनव की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं हिमांशु कांडपाल।
0: जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने आज बडगाम जिले में एक आतंकी को मार गिराया। सेना के प्रवक्ता ने बताया कि क्षेत्र में आतंकियों की खुफिया जानकारी मिलने के बाद सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने अभियान शुरू किया। मुठभेड़ में मारे गए आतंकी से एक राइफल और गोला बारूद बरामद हुआ। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव आज देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जन्माष्टमी का पावन पर्व पूरे गुजरात में भी धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है।
2: द्वारका के जगत मंदिर में फल, दाल चावल, मिठाई और 56 भोग के खास प्रसाद के चढ़ावे के साथ जन्माष्टमी मनाई जा रही है। मंदिर और पुलिस अधिकारियों ने भक्तों के लिए बैरिकेडिंग, सीसीटीवी सर्वेलेंस और ड्रोन मॉनिटरिंग जैसे इंतजाम किए हैं। डाकोर के राजा रणछोजी मंदिर में सजावट आरती के दौरान मंदिर परिसर में भक्तों की भारी भीड़ देखी गई। दूसरी ओर अहमदाबाद के इस्कॉन और भारत के हरे कृष्ण मंदिर समेत कई कृष्ण मंदिरों में जन्माष्टमी के मौके पर युवाओं ने खास रासलीला का आयोजन किया। मयूर सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, केरलम में भी जन्माष्टमी का पर्व धार्मिक उत्साह और भक्ति के साथ मनाया गया। श्रीनगर में कश्मीरी पंडितों ने हब्बा कदल से गणपत्यार मंदिर से लाल चौक तक शोभा यात्रा निकाली। कुलगाम के वेसु क्षेत्र में कश्मीरी पंडितों ने भी जन्माष्टमी के अवसर पर रंगारंग झांकी और शोभा यात्रा निकाली। बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि गंगा, पुनपुन, गंडक, बूढ़ी गंडक, सोन और कोसी सहित सभी प्रमुख नदियों का जल स्तर बढ़ रहा है।
3: पटना, भोजपुर, भागलपुर और पश्चिम चंपारण समेत बिहार के 16 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों में आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से राहत और बचाव कार्य चलाए जा रहे हैं। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए एनडीआरएफ की 9 और एसडीआरएफ की 27 टीमों की तैनाती की गई है। प्रभावित परिवारों के बीच राशन का वितरण किया जा रहा है। साथ ही बाढ़ प्रभावित इलाकों में स्वास्थ्य विभाग की टीमें कैंप कर रही हैं। मुख्यमंत्री ने पटना में अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक कर बाढ़ सुरक्षात्मक कार्यों के साथ साथ राहत और बचाव अभियान में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल सेमीफाइनल में पहुंच गई है। भारतीय जोड़ी ने क्वार्टर फाइनल में डेनमार्क के किम एस्ट्रुप और एंडर्स स्कारूप रासमुसेन को 21-13, 16-21, 21-18 से हराया। इससे पहले पुरुष सिंगल्स में किदाम्बी श्रीकांत को हांगकांग के ली चेक यू से हार का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कल मूसलाधार वर्षा की चेतावनी दी है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न हिस्सों में आज हल्की से तेज वर्षा हुई। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ब्रिक्स देशों के मुख्य न्यायाधीशों का 3 दिन का सम्मेलन नई दिल्ली में शुरू। न्याय वितरण और विवाद समाधान से संबंधित मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद दिया। कहा, भारत इटली संबंध पहले से कहीं अधिक मजबूत। विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल बाढ़ के बाद अब तक 166 भारतीय नागरिक बचाए गए, 275 अब भी लापता। बिहार में सभी प्रमुख नदियां उफान पर होने से बाढ़ की स्थिति गंभीर। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य जारी। और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल सेमीफाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय विद द न्यूज एट 9। The headlines. Three-day BRICS Chief Justices Forum begins in New Delhi to deliberate upon contemporary issues concerning justice delivery and dispute resolution. Italian Prime Minister Giorgia Meloni thanks Prime Minister Narendra Modi for wishes, says India-Italy ties are stronger than ever. Eastern Affairs Ministry says 166 Indian nationals rescued in flash floods.

ये विविध भारती है और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके लिए। तो अगला गीत है आपके लिए किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में। इस गीत को लिखा है जावेद अख्तर ने, संगीत है राहुल देव बर्मन का, फिल्म का नाम है सागर।

अगला गीत आपको सुनवाते हैं किशोर कुमार की आवाज में। इस गीत को लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने, तर्ज है राहुल देव बर्मन की, फिल्म का नाम है जहरीला इंसान।

साथियों, कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश आपको सुनवाते हैं कंचन और शैलेंद्र सिंह की आवाजों में। गीत को लिखा है गुलशन बावरा ने, संगीत है कल्याण जी आनंद जी का और फिल्म का नाम है रफू चक्कर।

साथियों, कार्यक्रम आपके लिए अब समाप्त होता है। सलमा सैयद को दीजिए इजाजत और आप सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़।

0: जीवन कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत।
1: डायरेक्टर ने आओ देखना ना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार, तो बस सिर्फ दिल बहलाने गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में, सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में बल्लम कोई करता चमर होगा। वाह वाह वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: कहानी के किसी सीन के रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया।
0: जाने माने चरित्र अभिनेता

आज एक ऐसा कलाकार जिसने कई फिल्मों में बैकग्राउंड संगीत दिया, कई फिल्मों में गाया और बहुत सी फिल्मों के संगीतकार रहे। 1990 और 2000 के दशक के एक लोकप्रिय कलाकार का जिक्र है आज। आइए सबसे पहले रूना लैला के साथ इनका गाया फिल्म अग्निपथ का ये गीत आपको सुनवाएं।

शाहरुख खान रानी मुखर्जी अभिनीत 2003 की चलते चलते फिल्म में संगीत जतिन ललित और आदेश श्रीवास्तव का था। फिल्म संसार में कटनी मध्य प्रदेश से आए आदेश का जन्म 4 सितंबर 1964 को हुआ था। आदेश ने शुरुआत में आरडी बर्मन, राजेश रोशन जैसे संगीतकारों के साथ एक ड्रमर की हैसियत से काम किया, फिर एक स्वतंत्र संगीतकार के रूप में आपने अमिट छाप छोड़ी। राजनीति फिल्म का उनका संगीतबद्ध ये गीत बहुत लोकप्रिय हुआ। आइए सुनते हैं आदेश श्रीवास्तव की आवाज में ये गाना।

आदेश श्रीवास्तव का विवाह जतिन ललित और अभिनेत्री सुलक्षणा पंडित की अभिनेत्री बहन विजयता पंडित से हुआ। बात 1993 की है, जब आदेश श्रीवास्तव को एक बड़ा ब्रेक फिल्म कन्यादान के लिए मिला। लता मंगेशकर ने इनका संगीतबद्ध गीत उदित नारायण के साथ गाया था, जो लोकप्रिय हुआ, पर यह फिल्म और इसके बाकी के नगमे उतने नहीं चले। फिलहाल ओ सजना दिलबर कन्यादान का ये गीत हम आपको सुनवाते हैं।

जैसा कि हमने कहा कि कन्यादान फिल्म के गीत बाकी के नहीं चले या उतने लोकप्रिय नहीं हुए, ऐसा ही फिल्म जाने तमन्ना के साथ भी हुआ। इसके गीत भी उस तरह से नहीं लोकप्रिय हुए जैसा उनको होना था, जैसी उम्मीद आदेश को थी। लेकिन आदेश ने इन असफलताओं से हार नहीं मानी। बाउंस बैक करते हुए इन्होंने जिस फिल्म में अपनी पुनः वापसी की उसकी चर्चा करेंगे, जरूर करेंगे। लेकिन फिलहाल 2004 की फिल्म दीवार के गीत के साथ आइए हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं।

सन 1994 की बात है। फिल्म आई आओ प्यार करें। आदेश श्रीवास्तव अपने श्रोता दर्शकों के बीच मधुर कर्णप्रिय संगीत के साथ

सलमा से दिल आ गया। ये फिल्म और शस्त्र के गीत ने दर्शकों को आकर्षित तो किया, लेकिन शस्त्र के इस गीत ने विशेष ध्यान खींचा। क्या अदा क्या जलवे तेरे पारू।

जाएगी अब जान भी मेरी।

आदेश श्रीवास्तव ने कई हिट गाने गाए, जैसे सोना सोना, शावा शावा, गुस्ताखियां, फिर कुंवारा के गीतों के माध्यम से फिर एक बार सफलतापूर्वक पहुंचा आदेश का संगीत, जिसे दर्शकों ने सराहा। ये गाना है फिल्म आंखें का, आदेश श्रीवास्तव और वसुंधरा की आवाज में।

0: छाई है मदहोशियां।
1: सन 2000 में आदेश के संगीत से सजी फिल्म आई शिकारी, आइए इसका गीत सुनते हैं।

0: जैसा कि हम जानते हैं, एक गायक संगीतकार के साथ साथ एक अभिनेता के रूप में भी आदेश श्रीवास्तव ने अपनी पहचान बनाई। 1992 की अंगार में इनका एक्टिंग डेब्यू हुआ था और 1991 की फिल्म प्रहार में आपने एक रोल अदा किया था, छोटा सा वायलिन वादक बने थे आप। सन 2016 की मराठी फिल्म फैमिली कथा में भी आपने काम किया। वैसे तो इस बहुमुखी प्रतिभा के धनी कलाकार का अपने साथियों के साथ मित्रतापूर्वक व्यवहार रहा ही होगा, पर कहते हैं कि अमिताभ बच्चन के साथ आदेश श्रीवास्तव के संबंध काफी अच्छे रहे। आइए सुनते हैं कभी खुशी कभी गम का ये गाना।
1: अजी बादशाह की देख रहे हो तुसी, चलो शुरू हो जाओ।

आदेश श्रीवास्तव की आखिरी फिल्म थी जिसमें आपने म्यूजिक स्कोर किया था वेलकम बैक, जो इनके जन्मदिन 4 सितंबर 2015 को रिलीज हुई थी और 5 सितंबर को कैंसर ने

आदेश श्रीवास्तव को संगीत प्रेमियों से यकायक छीन लिया। ये क्षति अपूर्णीय है, लेकिन उनका संगीत और उनकी शख्सियत श्रोता, दर्शकों और करीबियों के बीच एक याद बनकर हमेशा रहेगी।

0: आज के फनकार ये कार्यक्रम केंद्रित था गायक संगीतकार आदेश श्रीवास्तव पर, आलेख और स्वर जी श्याम का, और प्रस्तुतकर्ता थे रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: हम जो गाना बनाते हैं उसमें 50% 50% हाथ जो है सिर्फ सॉन्ग राइटर का है।
0: संगीतकार ओपी नैयर।
1: ये हकीकत है, इसको बाकी लोग नहीं मानेंगे। जिगरा चाहिए ये मानने के लिए कि ओपी नैयर कुछ नहीं बगैर सॉन्ग राइटर के। मैं दूसरों की बात नहीं करता। आप 50% तो शायर हो गए और 25% जो काम है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है ऑर्केस्ट्रेशन में और सिंगर में। बाकी आप 25% अगर बोले तो क्रेडिट कंपोजर का है, ज्यादा कुछ।
0: ऐसी अद्भुत यादें।

0: शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गटिले
0: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी हुई थी।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी न कोई संदेश।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध

0: प्रस्तुत है छाया गीत। छाया गीत सुनने वाले सभी श्रोताओं को पूजा नारायणिया का नमस्कार।
1: वो जब याद आए,
0: किसी की याद इतनी गहरी होती है कि आंखें बंद करो तो सामने वही चेहरा उतर आता है। यादों का दर्द भी उतना ही गहरा होता है। वो हंसी सुनाई देती है, वो बातें याद आती हैं, दिल फिर उसी बीते हुए पल में लौट जाता है। समय आगे बढ़ जाता है मगर मन वहीं ठहरा रह जाता है जहां आखिरी बार साथ थे। ये रिश्ते खत्म होकर भी खत्म नहीं होते, यादों में सांस लेते रहते हैं और यादें रात की खामोशी में एक दर्द भरी धुन बन जाती हैं।
1: बहुत

उसके जाने के बाद भी जैसे घर की दीवारों पर उसकी आहट ठहरी हुई है। हर शाम दरवाजे की ओर देखता ये मन, जाने क्यों आज भी उसकी राह तकता है। बहुत कुछ कहना था उससे, मगर शब्द होठों तक आकर लौट गए।

अब वही अधूरी बातें रातों में साथ जागती हैं और उसका इंतजार धीरे धीरे एक गीत बनकर भीतर गूंजता रहता है।

0: उसके बिना सब कुछ तो है, मगर फिर भी कुछ भी पूरा नहीं लगता। आंगन वही है, मौसम वही है, जान भी वही है, बस उसे देखने वाली आंखों में अब पहले सी चमक नहीं। कभी लगता है उससे बिछड़कर उसे नहीं, अपने भीतर का एक हिस्सा खो दिया है। जो बातें उससे करनी थी, अब वह होठों की खामोशी में कैद है। और यही अधूरापन हर रात दिल से एक नया गीत लिखवाता है।
1: कुछ दिल ने सुना, कुछ भी।

0: ही होती है जिसमें कोई शिकायत नहीं होती, फिर भी हर सांस किसी दर्द की कहानी कहती है। मन बार बार पूछता है, क्या उसे भी कभी महसूस होती होगी? क्या किसी शाम उसका दिल भी अचानक उदास होकर याद करता होगा? इन अनकहे सवालों के बीच सिर्फ तन्हाई एक जवाब बनकर सामने आ बैठती है।
1: वो शाम कुछ

दिल जानता है कि बीता हुआ पल लौट कर नहीं आता, फिर भी आंखें किसी चमत्कार की उम्मीद करती हैं। कभी लगता है अचानक वो सामने आ जाएगा और कहेगा, मैं वापस आ गया हूं। लेकिन फिर यह मन अपनी ही कल्पना पर मुस्कुरा देता है और आंखें चुपचाप भीग जाती हैं। प्रेम में किसी को भूलना उतना मुश्किल नहीं होता जितना उसके लौटने की उम्मीद को छोड़ना।

उम्मीद कभी थकती नहीं, आंखें पथराने लगती हैं, चांदनी रातें भी और गहरी होती जाती हैं। आखिरी मुलाकात की हर बात उम्र भर के लिए दिल में याद बनकर रह जाती है। उसका आखिरी बार मुड़कर देखना आज भी आंखों में एक मंजर की तरह ठहरा हुआ है। तब कहां पता था कि वह पल हमारी कहानी का आखिरी पन्ना बन जाएगा। काश उस पल को वहीं रोक लेते हम, काश आज साथ होते हम।

गीत का आज का सफर आपने तय किया पूजा नारायणिया के साथ। छाया गीत के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। अब आज्ञा दीजिए, नमस्कार।

0: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गटिले
0: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी न कोई संदेश।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध

सूरत छुपा सकता नहीं। कितनी दिलकश है मोहब्बत की जवान,